शास्त्र वेद सिमरत सब सोदे, सब एका बात पुकारी, बिन गुर मुक्त ना को उपावे, मन वेखो कर बिचारी। आठ साठ मज्जन कर इसनाना, भ्रम आए तर सारी, अनक सोच करै दिन राती, बिन सतगुर अंधियारी। तावत तावत सब जगत आयो, अब आए हर द्वारी, दुरमत मेट बुद्ध परगासी, जन नानक गुरमुख तारी। गुजरी महला पंजवा, हर तन जाप हर तन ताप, हर तन भोजन पाया, निमख ना बिसरा।

हर तन इशनान, हर तन ज्ञान, हर संग लाए ध्याना, हर तन तुल्हा, हर तन बेड़ी, हर हर तार प्राणा, हर तन मेरी चिंत विसारी, हर तन लाया धोखा, हर तन ते मैं नवनिध पाई, हाथ चरियो हर थोका, खावो खर्चो तोट न आवै, हलत पलत कै संगे लाद खजाना गुरु नानक दिया, एहो मन हर रंग रंगे। गुजरी महला पंजवा, जिस सिमरत सब किले विख नासै, पितरी होए उधारो, सो हर हर तुम सधी जापो, जां कांत न पारो, पूता माता की आसीस, निमख न बिसराओ, तुम कहो हर हर, सदा भजहो जगदीश रहाओ, सतगुर तुम कहो होए दयाला, संत संग तेरी प्रीत, कापड़ पत परमेश्वर राखी, भोजन कीर्तन नीत, अमृत पीवो सदा चिर जीवो, हर सिमरत अनद अनंता, रंग तमासा पूर्ण आसा, कबह ना व्यापै चिंता, भवर तुम्हारा एहो मन होवो, हर चरणा हो कौला, नानक दास उन संग लपटायो, ज्यों बूंदे चात्रक मौला, गुजरी महला पंजवा, मता करे पछम कै ताई, पूर्व ही ले जात, खिन मै थापो थाप नहारा, अपन हाथ मतात, स्यानप काहू कामनायात, जो अनरूपयो ठाकर मेरा, होए रही ओ बात रहाओ, देश कमावनो तन जोरन की, मनसा बीचे निकसे सास, लस्कर नेव खवास सब त्यागे, जंपरी उठ सिदास, होया नान मन हठ की दृढ़ता, आपस कौ जानात, जो अनिंद निंद कर छोड़ियो, सोई फिर खात, सहे सुभाए पय कृपाला, ते जनकी काटी फास, कहो नानक गुर पूरा भेटिया, प्रवान ग्रस्त उदास, गुजरी महला पंजवा, नाम निधान जिन जन जपयो, तिनके बंधन काटे, काम क्रोध माया बिख ममता, ए ब्याह ते हटे, हर जस साध संग मिल गायो, गुर प्रसाद पयो मन निर्मल, सर्व सुखा सुख पायो रहाओ, जो किश कियो सोई पल माने, ऐसी भगत कमानी, मित्र सत्र सब एक समाने, जो जुगत निशानी, पूर्ण पूर्ण रहो सर्व थाई, आ नकत हूं जाता, घट घट अंतर सर्व निरंतर, रंग रवेओ रंग राता, पय कृपाल दयाल गोपाला, ता निरपै कै कर आया, काल कलेश मिटे खन भीतर, नानक सहि समाया, गुजरी महला पंजवा, जिस मानुख पै करो बेनती, सो अपने दुख भरिया, पार ब्रह्म जिन हृदय आराध्या, तिन पौ सागर तरिया, गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटै, प्रभ तज अवर सेवक जे होई है, तित मान महत जस घटै रहाओ, माया के संबंध सहन साक, कित ही काम ना आया, हर का

प्रथमे गर्भ माता कै वासा ऊहा छोड़ धरन मैं आया। चित्रसाल सुंदर बाग मंदिर संग न कछ हूं जाया। अवर सब मिथ्या लोभ लभी गुर पूरे दियो हर नामा जी को एहा वस्त फब्बी रहाओ। इष्टमीत बंद पसुत पाई संग बंता रच हसया। जब अंति अवसर आए बनयो है उन पेखत ही काल ग्रसया। कर कर अनर्थ बिहाजी संपै सोइना रूपा दामा। पहाड़ी को ओह पहाड़ा मिलया होर सगल पयो बेराना। हैवर गैवर रथ संभाहे गहो कर कीने मेरे। जब ते होई लामी ताई चले नाही एक पैरे। नाम तानो नाम सुख राजा नाम कुटम सहाई। नाम संपत गुर नानक कौ दी ओह मरे ना आवै जाई। गुजरी महला पंजवां ते पदे कर दूजा एको अंकार। सतगुर प्रसाद दुख बिन से सुख किया निवासा। तृष्णा जलन बुझाई नाम निधान सतगुरु दरडाया बिनसना आवै जाई। हर जप माया बंधन टूटे भय कृपाल। दयाल प्रभ मेरे साध संगत मिल छूटे रहाओ। आठ पहर हर के गुण गावे भगत प्रेम रस माता। हर सोग दोह माहे निराला करण हर पिछाता। जिसका साथ इन्हीं रख लिया सगल जुगत बन आई। कहो नानक प्रभु पुरख दयाला कीमत कहन ना जाई। गुजरी महला पंजवां दो पदे कर दूजा एको ओंकार। सतगुर प्रसाद पतत पवित्र लिए कर अपने सगल करत नमस्कारो। वर्ण जात को पूछे नाही बाछे चरण रवारो। ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो सगल श्रेष्ठ को तनी कही जय। जन को अंग निरारो रहाओ। साध संग नानक बुद्ध पाई हर कीर्तन आधारो। नाम देव त्रिलोचन कबीर दास रो मुक्त पयो चमियारो। गुजरी महला पंजवां है नाही को बूझन हारो। जाने कवन पता शिव बिरंच यार सगन मोहन जानो गह ना सकाहे गता। प्रभ की अगम अगाध कथा सुनिया अवर अवर बिद बुचिया बकन कथन रहता रहाओ। आपे भगता आप स्वामी अपन संगरता। नानक को प्रभ पूर रहे हुए पेख्यो जतर कथा। गुजरी महला पंजवां मता मसूरत अवर सियानप जन को कछु ना आयो। जह जह अवसर आए बनयो है तहां तहां हर त्यायो। प्रभ को भगत वच्छल बिरदायो करे प्रतपाल। बार की न्याई जन को लाड लड़ायो रहाओ। जप तप संजम कर्म धर्म हर कीर्तन जन गायो। शरण पर्यो नानक ठाकर की अपैदान सुख पायो। गुजरी महला पंजवां दिन रातियां रादो प्यारो निमख ना की जय ढीला। संत सेवा कर भावनी लाई है त्याग मान हर ठीला। मोहन प्राण मान रंगीला बास रहो हियर कै संग पेख मोहयो मन लीला रहाओ। जिस सिमरत मन होत आनंदा उतरे मनोह जंगीला। मिलबे की महिमा वर्ण ना साकौ नानक परे परीला। गुजरी महला पंजवां मन जोगी शास्त्रक कहावत सब कीने बस अपने ही। तीन देव अर कोड़ते तीसा तिनकी हैरत कछ ना रही। बलवंत ब्याप रही सब मही अवर न जान सको मरमा गुर कृपा ते लही रहाओ। जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही। कहो नानक साते भागी ओए चेरी चरण गही। गुजरी महला पंजवां दोए कर जोड़ करी बेनंती ठाकरे अपना।

आया, हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया। ठाकर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाओ। मिलवर नारी मंगल गाया ठाकर का जयकार कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार। गुजरी महला पंजवा मात पिता भाई सुतबंध पो तिनका बल है थोरा। अनक रंग माया के पेखे किछ साथ ना चल है पोरा। ठाकरो तुझ बिन आहे ना मोरा मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही मैं आहयो तुमरा तोरा रहाओ। बल बल बल बल चरण तुम्हारे इहां उहां तुम्हारा जोरा। साध संग नानक दर्स पायो बिन सो सगल निहोरा। गुजरी महला पंजवा आल जाल प्रम होत जावै प्रभ से तीरंग लाई। मन को एह उपदेश दृढ़ावै सहज सहज गुण गाई। साजन ऐसो संत सहाई जिस पेटे टूटे माया बंद बिसरना कम हू जाई रहाओ। करत करत अनक बहु भांति नीकी ए ठहराई। मिल साधु हर जस गावै नानक पवजल पार पराई। गुजरी महला पंजवा खिन मैं थापो था पनहारा कीमत जाए ना करी। राजा रंक करै खिन पीतर नीचे जो तरी। त्याई अपनो सदा हरी सो जन देसा ताका कहां करिए जा मैं करी रहाओ। तुमरी टेक पूरे मेरे सतगुर मन सरन तुम्हारे परी। अचेत याने बारक नानक हम तुमरा खोतार करी। गुजरी महला पंजवा तू दाता जिया सबना का बसो मेरे मन माही। चरण कमल रिदमाए समाए तै परमा देरा नाही। ठाकुर जा सिमरा तू ताही कर कृपा सर प्रतपालक प्रभ को सदा सलाही रहाओ। सास सास तेरा नाम समाराओ तुम ही को प्रभ आही। नानक टेक पई करते की होर आस बिडाणी लाही। गुजरी महला पंजवा कर कृपा अपना दर्श दीजै। जस गावो निस्यार पोर केस संग दास पग चारो एह मनोरथ मोर। ठाकुर तुझ बिन बिया ना होर चित चित वो हर रस न्यारा दो निरखो तुमरी ओर रहाओ। दयाल पुरख सर्व के ठाकर बिनो करो कर जोर। नाम जपै नानक दास तुमरो उधर से आखी फोर। गुजरी महला पंजवा ब्रह्म लोक अर रुद्र लोक आई इंद्र लोक ते ताए। साध संगत को जोहे ना सकै मल मल धोवै पाए। अब मोहे आए परयो शरणाए। गुहज पाव को बहुत पर जा रहे मोको सदगुर दियो है बताए रहाओ। सिद्ध साधक अर जख किन्नर नर रही कंठ उर जाए। जन नानक अंग किया प्रभ करता जा कै कोट ऐसी दास आए। गुजरी महला पंजवा आप जस मिटै होवै जग कीर्त उंदर गै बैसन पाई है। जम की त्रास नास होए खिन मैं सुख अंध सेती कर जाई है। जाते काल न बिरथी जाइए आठ पहर सिमरो प्रभ अपना मंत्र सदा त्याइए रहाओ। मोहे सरन दीन दुख भंजन तू देह सोई प्रभ पाइए। चरण कमल नानक रंग राते हर दास पैज रखाइए। गुजरी महला पंजवा विश्वंपर जीवन को दाता भगत परे भंडार। जाकी सेवा निफल ना होवत खिन मैं करे उधार। मन मेरे चरण कमल संगराज सगल जी जाको वारा दै ताहू को तू जाच रहाओ। नानक शरण तुम्हारी करते तू प्रभ प्राण आधार। हुए सहाय जिस तू राखै तिस कहां करे संसार। गुजरी महला पंजवा जन की पै सवारी आप हर हर नाम दियो गुरे अवखद उतर गयो सब ताप रहाओ।
ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰੱਖਿਓ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਮਿਟੀ ਵਿਆਦ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਹਰ ਗੁਣ ਸਦਾ ਵਿਚਾਰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਓ ਮੇਰਾ ਕਰਤਾ।

कलयुग में नाम निदान भक्ति खटिया, हरि उत्तम पद पाया, सतगुर सेव हर नाम मन वसाया, अंदर नाम पियाया, विचे ग्रह गुरबचन उदासी, हम मैं मोह जलाया, आप तरिया कुल जगत तराया, तन जने दी माया, ऐसा सतगुर सोई पाए, जिस तुर मस्तक हर लिख पाया, जन नानक बलिहारी गुरे अपने विटा, जिन भ्रम पुला मार्ग पाया, महला तीजा, त्रै गुण माया वेख पुले, जो देख दीपक पतंग पजाया, पंडित पुल पुल माया वेख, दिखा के नै केहो आन चढ़ाया, दूजे पाए पड़े नित बिखया, नाम दईए खुआया, जोगी जंगम सन्यासी पुले, ओना अहंकार बहु गर्भ वधाया, शादन भोजन ना लही सत पिखया, मन अठ जन्म गवाया, एतड़िया विचों सो जन समदा, जिन गुरमुख नाम ते आया, जन नानक किसनो आख सुनाइए, जा कर दे सब कराया, पौड़ी माया मोह प्रेत है, काम क्रोध अहंकारा, एह जम की सरकार है, इना उपर जम का डंड करारा, मनमुख जम मग पाईयन, जिन दूजा पाओ प्यारा, जम पर बदे मारियन, को सुने ना पुकारा, जिसनो कृपा करे तिस गुर मिले, गुरमुख निस्तारा, श्लोक महला तीजा, हौ मैं ममता मोहनी, मनमुखा नो गई खाए, जो मोहे दूजे चित लाएं दे, तिन्ना व्याप रही लपटाए, गुर कै शब्द पर जाली है, ता एह विच्चों जाए, तन मन हो वै उजला, नाम वसै मन आए, नानक माया का मारन हर नाम है, गुरमुख पाया जाए, महला तीजा, एहो मन के तड़िया, जुग भरमिया, थिर रहे ना आवै जाए, हर पाणा ता परमायन, कर परपंच खेलियो पाए, जा हर बख्से ता गुर मिले, अस्थिर रहे समाए, नानक मन ही ते मन मानिया, नाक्ष मरे ना जाए, पौड़ी काया कोटिया पार है, मिलना संजोगी, काया अंदर आप वस रहया, आपे रस भोगी, आप अतीत अलिप्त है, निर्जोग हर जोगी, ज्योतिष पावे सो करे, हर करे सो होगी, हर गुरमुख नाम ते आई है, लह जाहे विजोगी, श्लोक महला तीजा, वाहो वाहो आपा खाइंदा, गुर शब्दी सच सोए, वाहो वाहो सिफत सलाह है, गुरमुख बूझै कोए, वाह वाह बाणी सच है, सच मिला वाहोए, नानक वाह वाह करत्या प्रपाया, कर्म प्राप्त होए, महला तीजा, वाह वाह करती रसना शब्द सुहाई, पूरे शब्द प्रमिलया आई, वडभागिया वाह वाह मोह हो कढ़ाई, वाह वाह करै सही जन सोहणे, तिनको परजा पूजने आई, वाह वाह कर्म प्राप्त होवै, नानक दर सच्चै सोभा पाई, पौड़ी बजर कपाट काया गढ़ पीतर, कूड़ कुसत अभिमानी, भरम भूले नदर नायावनी, मनमुख अंध अज्ञानी, उपाय कता न लभनी, कर पेख तखे पेखवानी, गुर शब्दी खो लाई अनु, हर नाम जपानी, हर जीव अमृत बिरख है, जिन पिया ते त्रिपतानी, श्लोक महला तीजा, वाह वाह करत्या रैन सुख विहाए, वाह वाह करत्या सदा आनंद होवै मेरी माए, वाह वाह करत्या हर स्यों ले लाए, वाह वाह करमी बोले बोलाए, वाह वाह करत्या शोभा पाए, नानक वाह वाह सत्र जाए, महला तीजा, वाह वाह बाणी सच है, गुरमुख लग

पंजवा जा तू तुसै मेहरवान वाचिंत वसै मन माहे जा तू तुसै मेहरवान नौनिध कर मैं पाहे जा तू तुसै मेहरवान ता गुर का मंत्र कमाहे जा तू तुसै मेहरवान ता नानक सच समाहे महला पंजवा किती बहन बहने मुच वजायन वज नानक सच्चे नामण किसै ना रहिया लज पौड़ी तुद त्यायन बेरकते बासन खड़े गणती गणी ना जाए तेरा दर्पड़े ब्रह्मे तुद त्यायन इंद्र इंद्रासना संकर बिसन अवतार हर जस मुख पणा पीर पैगंबर शेख मसाय के औलिए उत्पोत निरंकार कड़कड़ मौलिए कूड़ो करे विनाश धर्मे तगी है जित जित लाहे आप तित तित लगी है सलोक महला पंजवा चंगयाई आलक करे बुरयाई होए सेर नानक अज कल आपसी गफल फाही पेर महला पंजवा कितिया कुटंग गुजा थिया ना हित नानक तैं सै टकिया मन मैं सच्चा मित पौड़ी हाउ मांगो तुझे दयाल कर दासा गोलिया नौनिद पाई राज जीवा बोलिया अमृत नाम निधान दासा कर कणा तिन कै संग निहाल श्रवणी जा सुना कमावा तिन की कार शरीर पवित होए पखा पानी पीस बिकसा पैर धोए आपो कछु ना होए प्रभ नजर निहाली है मोहे निर्गुण जितै मोहे निर्गुण दिचै थाओ संत धर्मशाली है श्लोक महला पंजवा साजन तेरे चरण की होए रहा सद तूर नानक शरण तुहारिया पेखों सदा हजूर महला पंजवा पतत पुनीता संख हो हे हर चरणी मल लाग आठ साठ तीर्थ नाम प्रभ जिस नानक मस्तक भाग पौड़ी नित जपिय सास विरास नाव पर्वत गारदा जिसनो करे रहम तिस ना विसारदा आप पावन हार आपे ही मारदा सबके जाने जान बुझ विचारदा अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा जिसनो लाए सच तिसै उधारदा जिसद होवै वल सो कदे ना हारदा सदा अपग दीबाण है हाँ तिस नमस्कारदा श्लोक महला पंजवा काम क्रोध लोभ छोड़ीऐ दीजै अगन जलाए जीवन दे अनक जापीऐ नानक साचा नाओ महला पंजवा सिमरत सिमरत प्रभ अपना सफल पाए आहे नानक नाम आराध्या गुरपुरै दिया मिलाए पौड़ी सो मुक्ता संसार जे गुरु उपदेसिया तिसकी गई बुलाए मिट अंदेसिया तिसका दर्शन देख जगत निहाल होए जन कै संग निहाल पापा मैल तोए अमृत साचा नाओ उथै जापीऐ मन को होए संतोख भुखा तरापी है जिस कट वसिया ना तिस बंधन काटी है गुरप्रसाद किनै विरलै हर तन खाटी है श्लोक महला पंजवा मन मैं चितवाओ चितवनी उद्यम करो उठ नीत हर कीर्तन काया हरो हर देहो नानक के मीत महला पंजवा दृष्ट तार प्रभ राखिया मंत्र रत्ता मूल नानक जो प्रभानिया मरो विचारी सूल पौड़ी जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर छोड़ सियाण पसगल मंत्र अर्पत हर पूजो गुर के पैर दुरमत जाए जर साजना कै संग भवजल बिखम तर सेवो सतगुर देव अगे न मरो डर खिन मैं करे निहाल उने सुबर पर मन को होए संतोख त्याई सदा हर सो लगा सतगुर सेव जाको करम तोर सलोक महला पंजवा लगड़ी सुथान

पौड़ी सो सतगुर तन तन जिन परम गढ़ तोड़िया, सो सतगुर वाहो वाहो जिन हरस्यों जोड़िया, नाम निदान या खुट गुर दे दारुओ, महारोग बिकराल उतने बिदारुओ। पाया नाम निदान बहुत खजाने आ, जिता जन्मया पार आप पछाने आ, महिमा कही ना जाए गुर समर्थ देव, गुर पार ब्रह्म परमेश्वर अरम अपरंपरा लाखा पेव। सलोक महला पंजवा, उद्यम करेंदिया जियो तू कमावदे।

जो तेरे रंग रते से जोनना जोवना अंतर बाहर एक नैणा लोवना जिनी पछाता हुक्म तन कदे ना रोवना नाव नानक बख्शीस मन माहे प्रोवना। श्लोक महला पंजवा जीवन दया ना चेत्यो मुआ रल लंदड़ो खाक नानक दुनिया संग उदारिया सागत मूड़ नपाक। महला पंजवा जीवंदिया हर चेत्या मरंदिया हर रंग जन पदार्थ तारिया नानक साधु संग पौड़ी आदि जुगादी आप रखण वालिया सच नाम करतार सच पसारिया। ऊणा कही ना होए कटे कट सारिया मेहरवान समरथ आपे ही कालिया जिन मन उठा आप से सदा सुखा लिया आपे रचन रचाए आपे ही पालिया सब किश आपे आप बेअंत अपारिया गुरपुरे की टेक नानक संभालिया। श्लोक महला पंजवां आद मध अरअंत परमेश्वर रखिया सतगुर दिता हर नाम अमृत चखिया सादा संग अपार अंदन हर गुण रवै पाए मनोरथ सब जोनी नह पवै सब किश करते हथ करन जो करै नानक मंगै दान संता धूर तरै। महला पंजवां तिसनो मन वसाए जिन उपाया जिन जन त्याया खसम तिन सुख पाया सफल जन्म परवान गुरमुख आया हुक्मै बुझ निहाल खसम फुरमाया जिस होवा आप किरपाल सो नह परमाया जो जो दिता खसम सोई सुख पाया नानक जिसै दयाल बुझाए हुक्म मित जिसै भुलाए आप मर मर जमै नित पौड़ी निंद कुमारे तत्काल खिण टिकन ना दिते प्रभदास का दुख ना खप सकै फड़ जो नी जुते मथे वाल पछाड़िया नू जा मार्ग मुते दुख लगै बिल लाणिया नरक कोर सुते कंठ लाए दास रखिया नू नानक हर सते। श्लोक महला पंजवां राम जपो वड पागी हो जल थल पूर्ण सोए नानक नाम ते आया बिघन लागे कोए। महला पंजवा कोट बिघन तिस लागते जिसनो विसरै नाओ नानक अन दिन बिलपते ज्यो सुनै कर काओ पौड़ी सिमर सिमर दा तार मनोरथ पूरिया इच्छ पुन्नी मन आस गए विसूरिया पाया नाम निदान जिसनो पालदा जोत मिली संग जोत रहया कालदा सुख सहज आनंद उठे तित कर आवन जान रहे जन्म ना तहां मर साहेब एवक साहेब सेवक एक एक दृष्टाया गुरप्रसाद नानक सच समाया सुध राग गुजरी भगतां की बाणी एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्री कबीर जी ओका चौपदा कर दूजा दूजा चार पाव दोए सिंह गुंग मुख तब कैसे गुण गई है उठत बैठत ठेगा पर है तब कत मूंड लुकई है हर बिन बैल।

मूर्त बन महिया अजहो ना पेट अगई है। जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है। दुख सुख करत महाप्रम बूडो अनक जोन परमई है। रतन जन्म खोयो प्रभ विसरियो एहो अवसर कत पई है। प्रमत फिरत तेलक के कप ज्यो गत बिन रहन बहई है। कहत कबीर राम नाम बिन मूंड तुने पछतई है। गुजरी करती जा मुस मुस रोवे।

कहत कबीर सुनो मेरी माई, हमरा इनका दाता एक रग राई। गुजरी श्री नामदेव जी के पदे, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जौ राज देहे ता कमन वडाई, जो भीख मंगावै ता क्या कट जाई। तू हर भज मन मेरे पद निर्वाण, बहुर ना होए तेरा आवन जान। रहाओ सब तैं उपाई भरम भुलाई, जिस तू देवै तसै बुझाई। सतगुर मिलै ता से सजाई, किस हो पूजो दूजा नजर न आई। एक पाथर की जय पाओ, दूजे पाथर धरिए पाओ। जे ओ देओ ता ओ पी देवा, कहे नाम देओ हम हर की सेवा। गुजरी कर पहला मलै ना लाछै पार मलो, परम लियो बैठो री आई। आवत किने ना पेखियो, कमने जाने री बाई। कौन कहे किन बूझी है, रमैया या कुल री बाई। रहाओ ज्यो आकाश पंखिया लो, खोज निरखियो ना जाई। ज्यो जल माजै मछलो, मार्ग पेखणो ना जाई। ज्यो आकाश कड़ुवलो, मृग तृष्णा भरिया। नामे चे स्वामी बीठलो, जिनती ने जरिया। गुजरी श्री रविदास जी के पदे, करती जा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। दूता बछरे थनो बिटारियो, फूल पवर जलमीन बिगारियो। माई गोबिंद पूजा कहां लै चरावो, अवरना फूलिया नूपन पावो। रहाओ मैं लागर बेरे है भयंगा, बिखे अमृत बसै एक संगा। धूप दीप नहीं बेदै बासा, कैसे पूज करें तेरी दासा। तन मन अर्पाओ पूज चरावो, गुरप्रसाद निरंजन पावो। पूजा अर्चा आहे ना तोरी, कह रविदास कमन गत मोरी। गुजरी श्री त्रिलो

काहे भया सन्यासी भरमे पुली रे जय चंदा नहीं नहीं चीनिया परमानंदा रहाओ। घर घर खाया पिंड बधाया खिंथा मुंदा माया भूम मसान की पसम लगाई गुरबिन तत नाम पाया। काए जपोरे काए तपोरे काए बिलोवो पाणी लख चौरासी जिन पाई सो सिमरो निर्वाणी। कायक मंडल कापड़ी आरे अड़सठ काय फिराही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाहो के पाही। गुजरी अंतकाल जो लक्ष्मी सिमर

अंत काल जो स्त्री सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै बेसवा जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै। अंतकाल जो मंदिर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै।

गुजरी श्री जयदेव जियो का पदा कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद परमाद पुरख मनोपमं सत आद भावरतं परमद पुतं परकृत परं जद चिंत सर्वगतं केवल राम नाम मनोरमं बद अमृत तत्मयं ना दनोत जा स्मरणेन जन्म जराद मरण भयं रहाओ इच्छ सजमाद परा भयं जस स्वस्थ सुकृत कीर्तं भव भूत भाव समग्यं परमं प्रसन्न मिदं लोभाद दृष्ट पर गिरहं जद विद आचरणं तज सकल दोहकृत दुर्मति पज चक्कर तार शरणं हर भगत निज नेह केवला हृद कर्मणा बचसा जोगेन किं जगेन किं दानेन किं तपसा गोविंद गोविंदेत जप नर सकल सिद्ध पदं जय देव आयो तस सफटं भवभूत सर्वगतं एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहपं गुरप्रसाद राग देव गंधारी महला चौथा कर पहला सेवक जन बने ठाकर लिव लागे जो तुमरा जस कहते गुरमत तिन मुख भाग सुभागे रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिस्म भई मुख लागे सगली रहन सोई अंधारी गुर किंचित कृपा जागे जन नानक के प्रभ

पित गली हर के संत बतावो मार्ग हम पीछे लाल चली रहाओ। प्रे के बचन सुखाने ही अर एह चाल बनी है भली लटरी मदरी ठाकर पाई ओह सुंदर हर टोल मिली। एको प्रेओ सखिया सब प्रे की जो पावे पिरसा भली नानक गरीब क्या करे बिचारा हर पावे तितराहे चली। देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलू ले राती हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ। हाँ फिरों दीवानी आवल बावल तिस कारण हर टोली है कोई मिले मेरा प्रीतम प्यारा हम तिसकी गुलगुली है। सतगुर पुरख मनावो अपना हरे अमृत पी चोली है गुर प्रसाद जन नानक पाया हर लादा देह टोली है। देव गंधारी अब हम चली ठाकर पैहार जब हम शरण प्रभु की आई राख प्रभु पावे मार।

प्रेम रसाने जा को उपजी छोड़ न कतहूं जाता रहाओ। बैठत हर हर सोबत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीर्थ मज्जन कीनो साधु तूरी नाता। सफल जन्म हर जन का उपजया जन कीनो सौत बेदाता सगल समूह लै उदरे नानक पूर्ण ब्रह्म पछाता। देव गंधारी महला पंजवा माई गुरबिन ज्ञान ना पाई है अनक प्रकार फिलत बिललाते मिलत नहीं गोसाई है रहाओ। मोह रोग सोग तन बांधियो बोझो नी परमाई है टिकट ना पावै बिन सतसंगत किसे आगे जाई रुआई है। करे अनुग्रह स्वामी मेरा साध चरण चित लाई है संकट घोर कटे खिन भीतर नानक हर दर्श समाई है। देव गंधारी महल

जप तप वर्त कीने पेखन कहो चरनाराम, तपत नाकत बुझै बिन स्वामी सरनाराम। प्रभ शरण तेरी काट बेरी संसार सागर तारी है, अनाथ निर्गुण कश ना जाना मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है। दीन दयाल गोपाल प्रीतम समर्थ कारण करना, नानक चात्रक हर बूंद मांगे, जप जीवा हर हर चरना, अमें सरोवर पियो अमें सरोवरो पियो, हर हर नाम राम संत संग मिले, जप पूर्ण काम राम सब काम पूर्ण दुख बदीर्ण, हर निमुख मनो ना बिसरे, आनंद अंदन सदा साचा सर्व गुण जगदीसर। अगणत ऊच अपार ठाकर अगम जाको धामा, बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूर्ण मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला सुन गावन हरे राम, हर हर नाम जपत कुल सगले तारे राम। हर नाम जपत सोहंत प्राणी ताकि महिमा कित गना, हर बिसर नाही प्राण प्यारे चितवंत दर्शन सदमना। शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभ ऊचक मिया पारे, बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारे। बिहागड़ा महला पंजवां शंत अनकाए रातड़िया, वड़ दुहेली राम पाप कमाउंदिया, तेरा कोई ना बेली राम कोई ना बेली होए तेरा, सदा पछोता वहे गुण गोपाल न जपै रसना फिर कदो से देह आवे। तार वार विशुन्ने न पाप जुड़ते जाम्बा गौनिया केली, बिनवंत नानक बिन नाम हर के सदा फिरत दुहेली। तू वल वंच लूक करै सब जाने जानी राम, लेखा तरम पया तिल पीड़े कानी राम। किरत कमाणे दुख सहो प्राणी अनक जोन परमाया, महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया, एक सहर के नाम बाजो आन का सियाणी। बिनवंत नानक लेख लिखिया परम मोहे लोभाणी, बीच ना कोय करे अकिरत कान विछड़ पया, आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया, पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया। गुण गोविंद गुरमुख ना जपते जपया, तप तो थम गल लातिया, काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछता पिया। बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया, तुझ बिन को नाही प्रभ राखण हारा राम। पतत उदाहरण हर बिरद तुम्हारा राम, पतत उदाहरण शरण स्वामी कृपा निदयाला, अंध कूप ते उदर करते सगल कट प्रपाला, शरण तेरी कट महा बेड़ी एक नाम देह आधारा। बिनवंत नानक कर दे राखो गोबिंद दीन दयारा, सो दिन सफल गणिया हर प्रभु मिलाया राम, सब सुख प्रगटिया दुख दूर पराया राम। सुख सहज आनंद विनोद सदही गुण गोपाल नित गाइय, भज साध संगे मिले रंगे बहुड़ जोन ना ताइय। गह कंठ लाए सह सुभाए आदि अंकर आया, बिनवंत नानक आप मिलया बहुड़ कतु ना जाया। बिहागड़ा महला पंजवा शंत सुनो बिनंतिया, स्वामी मेरे राम कोट अपराध भरे पी तेरे चेरे राम। दुख हरण कृपा करन मोहन कल कले सह पंजना, शरण तेरी रख ले हो मेरी सर्व मैं निरंजना। सुनत पेखत संग सब कै प्रभ नेर हूं ते नेरे, अरदास नानक सुन स्वामी रख ले हो करके चेरे। तू समरथ सदा हम दीन पिखारी राम,
माया मोहे मगन कट लिहो मुरारी राम। लोभ मोहे बेकार बांधियो अनक दुख कमावने। अलिपत बंधन रहत करता किया अपना पावने। कार्य अनुग्रह पतत पावन बहुजोन प्रमते हारी। बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण आधारी। तू समर्थ वड्डा मेरी मत थोरी राम। पल है अकृत का नाम पूर्ण दृष्ट तेरी राम। अगाध बोध अपार करते मोहे नीच कछु ना जाना। रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच एयाना। त्याग चलती महा चंचल दोह कर कर जोरी। नानक शरण सम्राट स्वामी पैज रख मोरी। जां ते विछड़िया तिन आ मिलाया राम। साधु संग में हर गुण गाया राम। गुण गाए गोविंद सदा नीके कल्याण मैं प्रगट पए। सेजा सुहावी संग प्रभ कै अपने प्रभ कर ले। छोड़ चिंत अचिंत होए बहुड़ दुख ना पाया। नानक दर्श पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया। बिहागड़ा महला पंजवा शंत बोल सो तरमीड़िया। मोन का तारी राम तू नेत्री देख चलिया। माया ब्योहारी राम संग तेरे कश ना चले बिना गोविंद नामा। देश वेश स्वर्ण रूपा सगल ऊने कामा। पुत्र कलतरना संग सोबा हस्त कोर विकारी। बिनवंत नानक बिन साध संगम सब मिथ्या संसारी। राजन क्यों सोया तू नींद परे। जागत कत नाही राम। माया झूठ रुदन केते बिललाही राम। बिललाहे केते महामोहन बिन नाम हर के सुख नहीं। सहस सियाणप उपाव था के जय पाव तै जाई। आद अंते मद पूर्ण सर्वत्र कटकट आही। बिनवंत नानक जिन साध संगम से पत सेती कर जाही। नरपत जान ग्रहयो सेवक स्याणे राम। सर पर विछड़ना मोहे पछताणे राम। हर चंदौरी देख पूला कहां अस्थित पाई है। बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई है। हां हां करत ना तृष्ण बूझे न काम पूर्ण ज्ञाने। बिनवंत नानक बिन नाम हर के त्या पछताने। तार अनुग्रह अपना कर लीना राम। पूजा गह काढ़ लियो साधु संग दीना राम। साध संगम हरिया राधे सगल कलमल दुख जले। महा धर्म सो दान किरिया संग तेरे से चले। रसना अराधा एक स्वामी हर नाम मन तन पीना। नानक जिसनो हर मिलाए सो सर्व गुण परबीना। बिहागड़े की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। श्लोक महला तीजा गुर सेवा ते सुख पाई है होर थै सुख ना पाल। गुर कै शब्द मन भेदी है सदा वसै हर नाल। नानक नाम तिन्ना कौ मिलै जिन हर वेखै नजर निहाल। महला तीजा सिफत खजाना बख्स है जिस बख्सै सो खर्चै खाए। सतगुर बिन हथ ना आवई सब थके कर्म कुमाए। नानक मनमुख जगत तनहीन है अगै भुखा के खाए। पौड़ी सब तेरी तू।

जो हर प्रभाव है सो थिया, सब करन तेरा कराया, सालाह हो हर सब नाते वड्डा, जो संत जना की पैज रखदा आया। श्लोक महला तीजा। नानक ज्ञानी जगजीता, जगजीता सब कोए, नामे कार्ज सिद्ध है सहजे होए सो होए, गुरमत मत अचल है।

माया का संबंध। नानक सच्चे नाम बिन वर्तन वर्त अंध महला चौथा। अंधे चानन तां थीऐ जां सतगुर मिलै रजाए, बंधन तोड़ै सच वसै अज्ञाना दे राजाए। सब किश देखै तिसै का जिन किया तन साज। नानक शरण करतार की करता राखै लाज। पौड़ी जदों आपे थाट किया बै करतै तदों पुछना सेवक बिया। तदों क्या को लेवै क्या को देवै जां अवरना दूजा किया। फिर आपे जगतो पाया करतै दान सबना को दिया। आपे से बनाईयन गुरमुख आपे अमृत पिया। आप निरंकार आकार है आपे आपे करे सोथिया। सलोक महला तीजा गुरमुख प्रभ सेवै सद साचा। अंदन सहज प्यार सदा आनंद गावै गुण साचे अर्ध उर्ध उरतार। अंतर प्रीतम वसिया तुर कर्म लिखिया करतार। नानकिया मिलाया नू आपे कृपा तार। महला तीजा कहया कथया ना पाईऐ अंदर रह सदा गुण गाए। विणकर मैं कने ना पायो भौक मोए बिललाए। गुर कै शब्द मन तन भिजै आप वसै मन आए। नानक नदरी पाईऐ आपे ले मिलाए। पौड़ी आपे वेद प्राण सब शास्त्र आप कथा आप भीजै। आपे ही बै पूजे करता आप पर पंच करी जय। आप निर्विर तो आप निर्विरती आपे कथ कथी जय। आपे पुन सब आप कराए आप अलिप्त वर्ती जय। आपे दुख सुख देवै करता आपे बख्श करी जय। सलोक महला तीजा सेखा अंदरों जोर छड़ तू पाओ कर चल गवाए। गुर कै पै केते निस्तरे पै विच निरपाओ पाए। मन कठोर शब्द भे तू सांत वसै मन आए। शांति विचकार कमावणी सा खसम पाए थाए। नानक काम क्रोध किने ना पायो पुछो ज्ञानी जाए। महला तीजा मन मुख माया मोह है नाम ना लगो प्यार। कूड़ कमावै कूड़ संग्रह कूड़ करे आहार। बिख माया तन संच मरे अंते होए सब शार। कर्म धर्म सुच संयम करे अंतर लो विकार। नानक जे मन मुख कमावै सो थाए ना पवै दरगह होए खुआर। पौड़ी आपे खानी आपे बाणी आपे खंडवर पंड करे। आप समुंद आप है सागर आपे ही विचरतन तरे। आप लहाए करे जिस कृपा जिसनो गुरमुख करे हरे। आपे पवजल आप है बोए था आपे खेवट आप तरे। आपे करे कराए करता अवरना दूजा तुझे सरे। श्लोक महला तीजा सदगुर की सेवा सफल है जे को करे चित लाए। नाम पदार्थ पाई है अचंत वसै मन आए। जन्म मरण दुख कटी है हम मैं ममता जाए। उत्तम पदवी पाई है सच्चे रहे समाए। नानक पूर्व जिन कौ लिखिया तिन्ना सतगुर मिलिया आए। महला तीजा नाम रत्ता सतगुरु है कलयुग बोइथ होए। गुरमुख होवे सो पार परै जिन्ना अंदर सच्चा सोए। नाम संभाले नाम संग्रह नामे ही पत होए। नानक सतगुर पाया कर्म प्राप्त होए। पौड़ी आपे पारस आप तात है आप।

आपे सब कट भोगवै स्वामी, आपे ही सब अंजन, आप बेको आप सब बेता, आपे गुरमुख भंजन। जन नानक सालाहे नर जय, तुद करते तू हर सुखदाता वडन। श्लोक महला चौथा। बिन सतगुर सेवे जी के बंदना, जेते कर्म कुमाहे, बिन सतगुर सेवे ठवर ना पावही, मर जमै आवै जाहे। बिन सतगुर सेवे फिका बोलना, नाम ना वसै मन आए, नानक बिन सतगुर सेवे जमपुर बदे, मारी है मोहे काल उठ जाए। महला तीजा। एक सतगुर की सेवा कर है चाकरी, हर नामे लगे प्यार, नानक जन्म सवार ने अपना, कुल का करन उधार। पौड़ी। आपे चाड़ साल आप है पादा, आपे चाटड़े पण कौवाने, आपे मिता आपे पिता माता है आपे, आपे बालक करे सियाने। एक थै पड़ बुझे सब आपे, एक थै आपे करे आने, एक ना अंदर महल बुलाए, जा आप तेरे मन सच्चे पाने। जिन्ना आपे गुरमुख दे वड़ियाई, से जन सच्ची दरगे जाने। श्लोक मर्दाना पहला। कल कल वाली काम मद, मनुआ पीवन हार, क्रोध कटोरी।

सब कोए गुर प्रसादी जीवत मरै हुक्मै बूझै सोए। नानक ऐसी मरनी जो मरै तां सत जीवन होए पौड़ी। जाय आप किरपाल होवै हर स्वामी तां अपना नाम हर आप जपावै। आपे सतगुर मेल सुख देवै अपना सेवक आप हर पावै। अपनिया सेवकां की आप पैज रखै अपनिया भगतां की पैरी पावै। धर्म राय है हर का किया हर जन सेवक नेड़ ना आवै। जो हर का प्यारा सो सबना का प्यारा होर केती चख चख आवै जावै। श्लोक महला तीजा। राम राम करता सब जग फिरै राम ना पाया जाए। आगमा गोचर अत उड़ा अतुल ना तुलिया जाए। कीमत कने ना पाईया कितना लिया जाए। गुर कै शब्द भेदया इन विद वसिया मन आए। नानक आप अमेओ है गुर कृपा ते रहा समाए। आपे मिलिया मिल रहा आपे मिलिया आए। महला तीजा। ए मन एहो तन नाम है जित सदा सदा सुख होए। तोटा मूल ना होवई तोटा मूल ना होवई हानत कदे ना होए। नानक गुरमुख पाई है जा कौ नदर करे पौड़ी। आपे सब घट अंदरे आपे ही बाहर आपे गुप्त वरतदा आपे ही जाहर। जोग छत्ती गुबार कर वरतिया सुन्ना हर ओथे वेद पुराण ना सास्ता आपे हर नर हर। बैठा ताड़ी लाए आप सब दूही बाहर अपनी मित आप जानदा आपे ही गौहर। श्लोक महला तीजा।

जिन जेवा रस न चखियो सा जेवा जल जाओ, अनरस साधे लग रही दुख पाया दूजे पाए। सबना नदर एक है आपे फर्क करे, नानक सतगुर मिले फल पाया, नाम वढाई दे वढांस महला तीजा। माया मोह गुबार है गुरबिन ज्ञान ना होई, शब्द लगे तन बुझया दूजे परजवे गोई। मन मेरे गुरमत करनी सार, सदा सदा हर प्रभ रवै ता पावै मुख द्वार रहाओ। गुणा का निधान एक है आपे देता को पाए, बिना मैं सब विछड़ी गुर कै शब्द मिलाए। मेरी मेरी कर दे कट गए इतना हथ के हो ना आया, सतगुर मिले सच नाम समाया। आसा मनसा एहो शरीर है अंतर जो जगाए, नानक मनमुख बंद है गुरमुख मुक्त कराए। वढांस महला तीजा। सुहागणी सदा मुखी उजला गुर कै सहज सुभाए, सदा प्रदावे अपना विचों आप गवाए। मेरे मन तू हर हर नाम ते आए, सतगुर मोको हर दिया बुझाए रहाओ। दुहागणी खरिया बिल लांदिया तिन्ना महल ना पाए, दूजे पाए क्रूपी दुख पावै आगे जाए। गुणवंती नित गुण रवै हृदय नाम वसाए, औगुणवंती कामणी दुख लागे बिल लाए। सबना का पतार एक है स्वामी, कहना किशु ना जाए। नानक आपे वेख कीतियां नामे लयन लाए। वढांस महला तीजा। अमृत नाम सद मीठा लागा, गुर शब्दी साध आया। सच्ची बाणी सही समाणी हर जियो मन वसाया। हर कर कृपा सतगुरु मिलाया, पूरे सतगुरु हर

कार्य अपण तामस बहुत अहंकारा, किसन सदा अवतारी रूदा, कित लगत रह संसारा, गुरमुख ज्ञान रते जुग अंतर, चूकै मोह गुबारा, सतगुर सेवा ते निस्तारा, गुरमुख तरह संसारा, साचै नर ते बैरागी, पाए मुख द्वारा।

एको सच वरतै सब अंतर सबना करे प्रतपाला नानक इक सबन मैं अवर ना जाना सबना दीवान दयाला अवढांस महला तीजा गुरमुख सच संजम तत् ज्ञान गुरमुख सचै लगै ध्यान गुरमुख मन मेरे नाम संभाल सदा निभै चलै तेरे नाल रहाओ गुरमुख जात पात सच सोए गुरमुख अंतर सिखाई प्रभ होए गुरमुख जिसनो आप करे सो होए गुरमुख आप वडाई देवै सोए गुरमुख शब्द सच करनी सार गुरमुख नानक परवार साधार वढांस महला तीजा रसना हर साध लगी सहि सुभाए मन तृप्तिया हर नाम ते आए सदा सुख साचै शब्द विचारी अपने सतगुर विटों सदा बलिहारी रहाओ अखी संतोखियां एक लिव लाए मन संतोखिया दूजा पाओ गवाए देह शरीर सुख होवै शब्द हर नाए नाम परमल हृदय रया समाए नानक मस्तक जिस वड भाग गुर की बाणी सहज बैराग वढांस महला तीजा पूरे गुरते नाम पाया जाए सच्चा शब्द सच समाए ए मन नाम निधान तू पाए अपने गुर की मन लहर जाए रहाओ गुर कै शब्द विचों मैल गवाए निर्मल नाम वसै मन आए परमे पूला फिरै संसार मर जन्मै जम करे खुवार नानक सेवट भागी जिन हर नाम ते आया गुर प्रसादी मन वसाया।

रहाओ, हमें सब शरीर है, हमें उपत होए, हमें वड्डा गुबार है, हमें विच बुझ न सके कोए, हमें विच भगत ना हो वही, हुक्म ना बुझिया जाए, हमें विच जियो बंद है, नाम वसै मन आए, नानक सतगुर मिले हमें गई ता सच वसया मन आए, सच कमावे सच रहे, सच्चे सेव समाए, वडहंस महला चौथा कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सेज एक एको प्रभ ठाकर, गुरमुख हर रावे सुख सागर, मैं प्रभ मिलन प्रेम मन आसा, गुरपुरा मिलावे मेरा प्रीतम, हाँ वार वार अपने गुरु कौ जासा रहाओ, मैं अवगण

नानक गरीब राखो हर मेरे वढ़ंस महला चौथा। मेरा हर प्रभ सुंदर मैं सार ना जानी, हाँ हर प्रभ छोड़ दूजे लोभाणी, हाँ क्यों कर पिर कौ मिलो इयाणी। जो पिर भावे सा सुहागण, साई पिर कौ मिले सियाणी रहाओ। मैं विच दोस हाँ क्यों कर पिर पावा, तेरे अनेक प्यारे हाँ पिर चित ना आवा। जिन पिर रावे आ सा भली सुहागण, से मैं गुण नाही हाँ क्या करी दुहागण। नित सुहागण सदा

जल थल महियल रहया भरपूरे, निकट वसै नाही प्रभ दूरे। जिसनो नजर करे सो त्याए, आठ पैर हर के गुण गाए। जी जंत सगले प्रतपारे, सरन परयो नानक हर द्वारे। वढ़ंस महला पंजवा, तू वड़दाता अंतर जामी। सब मैं रावया पूर्ण प्रभ स्वामी। मेरे प्रभ प्रीतम नाम आधारा, हाँ सुन सुन जीवा नाम तुम्हारा रहाओ। तेरी शरण सतगुर मेरे पूरे, मन निर्मल होए संता तूरे। चरण कमल हृदय उतारे, तेरे दर्शन को जाई बलिहारे। कर कृपा तेरे गुण गावा, नानक नाम जपत सुख पावा। वढ़ंस महला पंजवा, साध संग हर अमृत पीजै।

रतन जवाहर हर मान कलाला, सिमर सिमर प्रपय निहला। जात कत पेखो साधु सरना, हर गुण गाए निर्मल मन करना। घट घट अंतर मेरा स्वामी उठा, नानक नाम पाया प्रभु।

जह चित आवै सो थान सुहावा, जित वेला विसरै तां लागै हवा। तेरे जी तू सद ही साथी, संसार सागर ते कढ़ दे हाथी। आवन जाना तुम ही किया, जिस तू राखै तिस दुख ना थिया। तू एको साहिब अवर ना होर, बिनों करै नानक कर जोर। बड़हंस महला पंजवां, तू जाना है ता कोई जाना, तेरा दिया नाम खाना। तू अचरज कुदरत तेरी बिस्मा रहाओ, तुझे आपे कारणू आपे करना, हुक्मे जमण हुक्मे मरना। नाम तेरा मंत्र आधारी, नानक दास बख्शीश तुम्हारी। वडहंस

सच कमाई है। जब साच अंदर होए साचा ताम साचा पाई है। लिखे बाजो सुरत नाही बोल बोल गवाई है। जिथे जाए बहिया भला कहिए सुरत शब्द लिखाई है। काया कूड़ विगाड़ काहे नाई है। ता मैं कहया कहन जत जय कहाया अमृत हर का नाम मेरे मन पाया।

नदर तुद अरदास मेरी जिन आप्यो पाया ता मैं कहया कहण जा तुझे कहाया वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना मंदा किसे ना आख झगड़ा पावना नह पाए झगड़ा स्वाम सेती आप आवना जिस नाल संगत कर श्री की जाए क्या रूवावना जो दे सहना मने कहना आख या आख नाही वावना वारी खसम कढ़ाए किरत कमावना साबियो पाईया ने आप आपे नजर करे कौड़ा कोई ना मांगे मीठा सब मांगे सब कोई मीठा मांग देखे खसम पावे सो करे किश पुन दान अनेक कर

नदर करै तां सच पछाणा, साचो पछाणा ताम तेरा, जाम आप बुझावै दुख भूख संसार किए सह हो चुकावै। बिनवंत नानक जाए सहसा, बुझै गुर विचारा, वड्डा साहिब है आप अलख अपारा।

जिन्नी आप गवाया तिन्नी फिर पाया रंग सिउं रलिया माणै सदा रंग राती सहजे माती अंदर नाम वखाणै कामण वड भागी अंतर लिव लागी हर का प्रेम सुभाया नानक कामण सहजे राती जिना सच सिंगार बनाया हमें मार मुइये तू चल गुर कै पाए हर वर रावै सदा मुइये नहीं कर वासा पाए नहीं कर वासा पाए शब्द बजाए सदा सुहागण नारी पर रली आला जुबन बाला अंधन कंध सवारी हर वार सुहागो मस्तक भागो सच्चा शब्द सुहाए नानक कामण हर रंग राती जा चले सतगुर पाए वडांस महला तीजा गुरमुख सब वा पार पला जे सहजे की जय राम अंधन नाम वखाणिया लाह हर रस पी जय राम लाह हर रस लीजय हर रावी जय अंधन नाम वखाणै गुण संग्रह अवगुण विकणै आपै आप पछाणै गुरमत पाई वड्डी वड्याई सच्चा शब्द रस पी जय नानक हर की भगत निराली गुरमुख विरलै की जय गुरमुख खेती हर अंतर बीजी हर लीजै शरीर जमाए राम अपने घर अंदर रस पुंच तू लाहा लै परथाए राम लाहा परथाए हर मन वसाए तन खेती वापारा हर नाम ते आए मन वसाए बूझै गुर बिचारा मनमुख खेती वणज कर थाके तृष्णा भुख न जाए नानक नाम बीज मन अंतर सच्चा शब्द सवाए हर वापार से जन लागे जिन्ना मस्तक मणि वड भागो राम गुरमती मन निकर वसिया सच्चा शब्द बैरागो राम मुख मस्तक पागो सच बैरागो साच रते विचारी नाम बिना सब जग बौराना शब्दे हमें मारी सच शब्द लाग मत उपजै गुरमुख नाम सुहागो नानक शब्द मिलै पौ पंजन हर रावै मस्तक भागो खेती वणज सब हुक्म है हुक्मे मन वड्याई राम गुरमति हुक्म बुझियै हुक्मे मिल मिलाई राम हुक्म मिलाई सहज समाई गुर का शब्द अपारा सच्ची वड्याई गुरते पाई सच सवरण हारा पौ पंजन पाया आप गवाया गुरमुख मेल मिलाई कहो नानक नाम निरंजन अगम्या गोचर हुक्मे रहा समाई वढांस महला तीजा मन मेरिया तू सदा सच संभाल जियो अपने घर तू सुख वसै पोहे ना सकै जमकाल जियो काल जाल जम जोहे ना सकै सचै शब्द लिवलाए सदा सच रता मन निर्मल आवन जान रहाए दूजे पाए परम विगुति मनमुख जोही जमकाल कह नानक सुन मन मेरे तू सदा सच संभाल मन मेरे आ अंतर तेरा निदान है बाहर वस्त ना पाल जो पावै सो पुंच तू गुरमुख नदर निहाल मन मेरे अंतर हर नाम सिखाई

मन मेरिया जन्म पदार्थ पाए कै एक सच लगे व्यापारा सतगुर सेवने अपना अंतर शब्द अपारा अंतर शब्द अपारा हर नाम प्यारा नामे नौनद पाई मनमुख माया मोहे व्यापे दुख संतापे दूजे पत गवाई हाउ मैं मार सच शब्द समाने सच रते अधकाई नानक मानस जन्म दुलंब है सतगुर बूझ बुझाई मन मेरे सतगुर सेवने अपना से जनवड़ पागी राम जो मन मारे अपना से पुरख बैरागी राम से जन बैरागी सच लिव लागी अपना आप पछाणिया मत नेह चलियत गूड़ी गुरमुख सहजे नाम वखाणिया एक कामन हितकारी माया मोहे प्यारी मनमुख सोए रहे अपागे नानक सहजे सेवै गुरे अपना से पूरे वडभागे वडहंस महला तीजा रतन पदार्थ वणजीऐ सतगुर दिया बुझाई राम लाहा लाभ हर भगत है गुणमय गुणी समाई राम गुणमय गुणी समाए जिस आप बुझाए लाहा भगत संसारे बिन भगती सुख ना होई दूजे पद खोई गुरमत नाम आधारे वखर नाम सदा लाभ है जिसनो एतवा पार लाए रतन पदार्थ वन जी है जा सतगुर दे बुझाए माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा राम कूड़ बोल वेखावनी बो वदै विकारा राम बो वदै विकारा सह सहो संसारा बिन नाम पत खोई पढ़ पढ़ पंडित वाद वखाणा बिन बूझे सुख ना होई आवन जाना कदे ना चूकै माया मोह प्यारा माया मोह सब दुख है खोटा होवा पारा खोटे खरे सब परखियां नु ते सच्चा कै दरबारा राम खोटे दरगह सुटियां नु उबे करन पुकारा राम उबे करन पुकारा मुद गवारा मनमुख जन्म गवाया बिखिया माया जिन जगत भुलाया साचा नाम ना पाया मनमुख संता नाल वैर कर दुखटे संसारा खोटे खरे परखिया नो ते सच्चा दरबारा राम आप करे किसे आखिया होर करना छूना जाई राम जित पावे ते तलाए सी जो तिसदी वड्याई राम जो तिसदी वड्याई आप कराई वरियाम ना फुसी कोई जग जीवन दाता कर्म विधाता आपे बख्शे सोई गुर प्रसादी आप गवाई है नानक नाम पत पाई आप करे किसे आखिए होर करना किछु ना जाई वड़हंस महला तीजा सच्चा सौदा हर नाम है सच्चा वापारा राम गुरमती हर नाम पाई है अतमोल अफारा राम अत मोलिया फारा सचवा पारा सचवा पार लगे वडभागी अंतर बाहर भगती राते सच नाम लिवलागी नदर करे सोई सच पाए गुर कै शब्द विचारा नानक नाम रते तिन्ही सुख पाया साचे के वा पारा हमें माया मैल है माया मैल पुरी जय राम गुरमति मन निर्मला रसना रस पी जय राम रसना हर रस पीजै अंतर पीजै साच शब्द बिचारी अंतर खूहटा अमृत भरिया शब्दे काढ़ पीए पनिहारी जिस नदर करे सोई सच लागै रसना राम रिविजै नानक नाम रते से निर्मल होर हमै मैल भरीजै पंडित जोत की सब पढ़ पढ़ कूक दे किस पे करै पुकारा राम माया मोह अंतर मल लागै माया

सरनाई राम अरदास करी गुरपुरै आगे। रख लेवो देहो वडाई राम रख लेवो सरनाई हर नाम वडाई। तो जेवड़े अवरना दाता सेवा लागे सेवड़ भागे जुजगु एको जाता। जत सत संयम कर्म कमावै बिन गुर गत नहीं पाई। नानक तिसनो शब्द बुझाए जो जाए पवै हर सरनाई। जो हर मत दे साई उपजै होर मत ना काई राम। अंतर बाहर एक तू आपे दे बुझाई राम। आपे दे बुझाई अवरना भाई गुरमुख हर चाखिया। दरसा चै सदा है साचा साचै शब्द सुपाखिया। घर मैं निज कर पाया सतगुर दे वडाई। नानक जो नाम रते सही महल पायन मत प्रवान सच साई। वडांस महला चौथा शंत एको अंकार सतगुर प्रसाद। मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई राम। हर हर नाम मेरा मन वसाई राम। हर हर नाम मेरा मन वसाई सब दुख विसार नहारा। वडभागी गुर दर्शन पाया तन तन सतगुरु हमारा। उठत बैठत सतगुर सेवो जित सेवै सांत पाई। मेरा मन सतगुर प्रीत लगाई। हौ जीवा सतगुर देख सर से राम। हर नाम दृढ़ाए जप हर हर नाम विगसे राम। जप हर हर नाम कमल परगासे हर नाम नवंग निद पाई। हौ मैं रोग गया दुख लाथा हर सह समाध लगाई। हर नाम वडाई सतगुर ते पाई सुख सतगुर देव मन परसे। हौ जीवा सतगुर देख सर से। कोई आन मिलावै मेरा सतगुर पूरा राम। हौ मन तन देवा तिस काट सरीरा राम। हौ मन तन काट काट तिस देई जो सतगुर बचन सुनाए। मेरा मन बैराग पाया बैरागी मिल गुर दर्शन सुख पाए। हर हर कृपा करो सुखदाते देहो सतगुर चरण हम धूरा। कोई आन मिलावै मेरा सतगुर पूरा। गुर जेवड़ दाता मैं अवर न कोई राम। हर दानो हर दान देवै हर पुरख निरंजन सोई राम। हर हर नाम जिन्नी आराध्या तिनका दुख परम पौ भागा। सेवक पाए मिले वडभागी जिन गुर चरनी मन लागा। कहो नानक हरिया मिलाए मिल सतगुर पुरख सुख होई। गुर जेवड़ दाता मैं अवर ना कोई। वडहंस महला चौथा हौ गुरबिन खरी निमाणी राम। जग जीवन दाता गुरमेल समाणी राम। सतगुर मेल हर नाम समाणी जप हर हर नाम ते आया। जिस कारण हौ टूंडेंदी सो सज्जन हर कर पाया। एक दृढ़ हर एको जाता हर आत्म राम पछाणी। हौ गुरबिन खरी निमाणी। जिन्ना सतगुर जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मिलाए राम। तिन चरण सरेवै हम लागै तिनकै पाए राम। हर हर चरण सरेवै तिनके जिन सतगुर पुरख प्रभ त्याया। तू वडदाता अंतर जामी मेरी सरदा पू हर राया। गुरसिख मेल मेरी सरदा पूरी आंदन राम गुण गाए। जिन सतगुर पाया तिन हर प्रभ मेल मिलाए। हौ वारी गुरसिख मीत प्यारे राम। हर नाम सुनाए मेरा प्रीतम नामा दारू राम। हर हर नाम मेरा प्राण सखाई तिस बिन कड़ी निमख नहीं जीवा। हर हर कृपा करे सुखदाता गुरमुख अमृत पीवा। हर आपे सरदा लाए मिलाए हर आपे आप सवारे। हौ वारी गुरसिख मीत प्यारे।
हरे आपे पुरख निरंजन सोई राम, हरे आपे मेले करे सोई राम, जो हर प्रभावे सोई होवे अवर न करना जाई, बहुत सियाणप लया ना जाई कर था के सब चतराई, गुर प्रसाद जन नानक देखिया मैं हर बने अवर ना कोई, हरे आपे पुरख निरंजन सोई। वडहंस महला चौथा, हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया राम, तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम, गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञाना देर बिनासे, सतगुर सेव परम पद पाया हर जपया सास गिरासे, जिन कौ हर प्रभ कृपा तारी ते सतगुर सेवा लाया, हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया, मेरा सतगुर प्यारा मैं गुर बिनु रहन न जाई राम, हर नाम देवे मेरा अंत सिखाई राम, हर हर नाम मेरा अंत सिखाई, गुर सतगुर नाम दृढ़ाया जिथे पुत्र कलत्र कोई बेली नाही, तिथे हर हर नाम छडाया, तन तन सतगुर पुरख निरंजन जित मिल।

तू दुख पंजन सर्व सुख दाता, हम पाथर तरे तराया। सतगुर पेट राम रस पाया, जन नानक नाम उदारे। हर तारो कृपा कर, कृपा लिहो उबारे राम। वडहंस महला चौथा, कोड़िया एक ओंकार। सतगुर प्रसाद देह तेजन जी, राम यो पाइया राम। तन मानस जन्म पुन पाइया राम, मानस जन्म वड पुन्ने पाया। देह सो कंचन चंगड़िया, गुरमुख रंग चलूला पावै। हर हर हर नवरंगड़िया, एह देह सो बांकी जित हर जापी। हर हर नाम सुहाविया, वडभागी पाई नाम सिखाई। जन नानक राम्यो पाइया।

बेखंपयंगा अंत तरंगा गुरमुख पार लंघाए हर बोहित चाड़ बड़ पागी लंगा गुर खेवट शब्द दराए आन देनो हर रंग हर गुण गावे हर रंगी हर रंगा जन नानक निर्वाण पद पाया हर उत्तम हर पद चंगा कड़ियाल मुखे गुर ज्ञान दृढ़ाया राम तन प्रेम हर चाबक लाया राम तन प्रेम हर हर लाए चाबक मन जिने गुरमुख जीतिया अगड़ो गड़ावे शब्द पावे अप्यो हर रस पीतिया सुन सरवण बाणी गुर बखाणी हर रंग तुरी चढ़ाया महा मार्ग पंथ बिखड़ा जन नानक पार लंघाया कोड़ी ते जिन दे राम पाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन तन तुखाइया राम जित हर प्रभ जापै सा तन सा बासै तुर पाया किरत जुड़ंदा चढ़ देहड़ कोड़ी बिखमन गाए मिल गुरमुख परमानंदा हर हर काज रचाया पूरा मिल संत जना जाने आई जन नानक हर वर पाया मंगल मिल संत जना वादाई वढांस महला चौथा देहे तेज नड़ी हर नवरंगिया राम गुर ज्ञान गुरु हर मंगिया राम ज्ञान मंगी हर कथा चंगी हर नाम गत मित जानिया सब जन्म सफलियो किया करता हर राम नाम खानिया हर राम नाम सलाहे हर जप हर भगत हर जन मंगिया जन कहे नानक सुनो संतो हर भगत गोविंद चंगिया देहे कंचन जीन सुविन आराम जड़ हर हर नाम रतन आराम जड़ नाम रतन गोविंद पाया हर मिले हर गुण सोकने गुर शब्द पाया हर नाम ते आया वड़ पागी हर रंग हर बने हर मिले सुमामी अंतर जामी हर नव तन हर नवरंगिया नानक वखाणे नाम जाने हर नाम हर प्रमंगिया कड़ियाल मुखे गुर अंकस पाया राम मन मैंगल गुर शब्द वस आया राम मन वसगत आया परम पद पाया सातन कंत प्यारी अंतर प्रेम लगा हर सेती कर सोह हर प्रभ नारी हर रंग राती सहजे माती हर प्रभ हर हर पाया नानक जन हरदास कहत है वड़पागी हर हर त्याया देह कोड़ी जी जित हर पाया राम मिल सतगुरु जी मंगल गाया राम हर गाए मंगल राम नामा हर सेव सेवक सेवकी प्रभ जाए पावे रंग महली हर रंग माने रंग की गुण राम गाए मन सुभाए हर गुरमति मन त्याया जन नानक हर कृपा तारी देह कोड़ी चढ़ हर पाया राग वड़हंस महला पंजवा शंत कर चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद

हर मने मीठा प्रभु तुठा अम्यो गुठा सुख पय दुख नाश परम विनाश तंते जप जगदीश ईसै जय जय मोह रहत विकार थाके पंच ते संग तूटा कहो नानक तन खनिए मन्या जिन कट मेरा हर प्रभु ठा सलोक जो लोड़ींदे राम सेवक सही कंडिया नानक जाने सत साई संतना बाहरा शंत मिल जल जलै खटाना।

दरगह माण पावै पत स्यों जावै आगै दुख न लागै कर एक ते आवै ता फल पावै जित सेवै पहु भागै ऊंचा नहीं कहना मन में रहना आपे जाने जानो मरण मुनसा सूर्या हक है जो होए मरे परवानो नानक किसनो बाबा रोई है बाजी है ओ संसारो कीता वेखै साहब अपना कुदरत करे बिचारो कुदरत बिचारे तारण तारे जिन किया सो जाने आपे वेखै आपे बूझै आपे हुक्म पछाणै जिन किश किया सोई जाणै तां का रूपया पारो नानक किसनो बाबा रोइयै बाजी है एहो संसारो बड़ा हंस महला पहला दखणी सच सरंदा सच्चा जानियै सचड़ा पर्वत गारो जिन आपी ने आप साजिया सचड़ा लाखिया पारो दोए पुड़ जोड़ विछोड़ियान गुरबिन कोरियां दारो सूरज चंद सिरजियान अहनिस चलत विचारो सचड़ा साहेब सच तू सचड़ा देह प्यारो रहाओ तुद सिरजनी मेदनी तुद सिरजी मेदनी दुख सुख देवन हारो नारी पुरख सिरजिया बिख माया मोह प्यारो खानी बाणी तेरिया देह जिया आधारो कुदरत तख्त रचाया सच नवेण नहारो आवागमन सिरजिया तू थिर करना हारो जमन मरना आए गया बदक जियो बिकारो पूंडड़ै नाम विसारिया बूढ़ड़ै क्या तिस्चारो गुण छोड़ बिखलदया अवगुण का वण जारो सदड़े आए तिना जानिया हुक्म सचे करतारो नारी पुरख विछुनिया विछड़िया मेलन हारो रूप ना जाने सोहनिया हुक्म बदी सरकारो बालक बिरत ना जाननी तो नहेत प्यारो नौदर ठाके हुक्म सच्चा हंस गया गैनारे सा तन छुट्टी मुठी झूठ विदनिया मृत कड़ा अंगनड़े बारे सुरत मुई मरमाइये महल रुनी दरबारे रवो कंत मेलिहो सच्चे के गुण सारे जल मल जाली ना वालिया कपड़ पटिया बारे वाजे वजे सच्ची बाणिया पंच मोए मन मारे जानी विछुनड़े मेरा मरण भया त्रिग जीवन संसारे जीवत मरे सो जानी है फिर सचड़ा हित प्यारे तुसी रोवो रोवन आई हो झूठ मुठी संसारे हाँ मुठड़ी तंदे तावनिया फिर छोड़ियाड़ी विदन कारे कर कर कंत महेलिया रूड़ै हित प्यारे मैं फिर सच सलाहना और ऐसी अड़िए नाम पतारे गुर मिलिया वेस पलटिया सा तन सच सिंगारो आवो मिलो सहेलियो सिमरो सिरजन हारो बैयर नाम सुहागणी सच सवारन हारो गावो गीत ना बिरहड़ा नानक ब्रह्म विचारो वड़हंस महला पहला जिन जग सिरज समाया सो साहेब कुदरत जानो वा सचड़ा दूर ना पालिया कड़कड़ शब्द पछाणो वा सच शब्द पछाणो दूर ना जानो जिन एह रचना राची नाम ते आए ता सुख पाए बिन नामे बिड़काची जिन थापी बिद जाने सोई क्या को कहे वखाणो जिन जग थाप वताया जालो सो साहेब परवाणो बाबा आया है उठ चलना अद पंद है संसारो वा सिर सिर सचड़ै लिखिया दुख सुख पर्व विचारो वा दुख सुख दिया जेहा किया सो नभै जी नाले जेहे कर्म कराए करता दूजी कार ना पाले आप निरालम तंदे बांधी कर हुक्म छडावन हारो अज कल करदिया काल व्यापै दूजे पाए विकारो जम मार्ग पंथ ना सुजई उजड़े अंध गवारो वा ना जल लेप तो लाइया ना भोजन प्रकारो वा भोजन पाओ ना ठंडा पानी ना कापड़ सिंगारो गल संगल सिर मारे उबो ना दिसै कर बारो इबके राहे जमन नाही पछताने सिर पारो बिन साचे को बे

रोवै कंत संभाल सदा गुण सार ना फिर मरे ना जाए गुरमुख जाता शब्द पछाता साचा प्रेम समाए जिन अपना पिर नहीं जाता कर्म विधाता कूड मुठी कूड़ आरे सुनियो कंत महेलियो पिर सेवो शब्द विचारे सब जग आप्यो पायो न।

ज्ञान में होनी मुठी, बिन शब्द पिर ना पायो जन्म गवायो, रोवै उगणियारी झूठी, पिर जग जीवन किसनो रोई है, रोवै कंत विसारे, सब जग आपो पायो नो आमन जान संसारे, सो पिर सच्चा सद ही साचा है, ना यो मरे ना जाए, भूली फिरै तन अणिया, रंड बैठी दूजे पाए, रंड बैठी दूजे पाए, माया मोहे दुख पाए, आव कटै तन शीजै, जो किश आया सब किश जासी, दुख लागा पाए दूजै, जमकाल ना सूजै, माया जग लूजै, लब लोभ चित लाए, सो पिर साचा सद ही साचा, ना एहो मरै ना जाए, एक रोवै पिरै विशुनिया, अंधी ना जाने पिर नाले, गुरप्रसादी साचा पिर मिलै, अंतर सदा समाले, पिर अंतर समाले, सदा है नाले, मनमुख जाता दूरे, एहो तन रुलै रुलाया, काम ना आया, जिन खसम ना जाता हदूरे, नानक सातन मिलै मिलाई, पिर अंतर सदा समाले, एक रोवै पिरै विशुनिया, अंधी ना जाने पिर है नाले, वडहंस महला तीजा, रोवै पिरै विशुनिया, मैं पिर सचड़ा है सदा नाले, जिन्नी चलन सही जानिया, सतगुर सेवै नाम समाले, सदा नाम समाले, सतगुर है नाले, सतगुर सेव सुख पाया, सबदे काल मार साची वरतार, फिर आवन जान ना होया, सच्चा साहेब सच्ची नाई, वेखै नजर निहाले, रोवै पिरो विशुनिया, मैं पिर सचड़ा है सदा नाले, प्रभ मेरा साहब शब्द ऊंचा है, के मिला प्रीतम प्यारे, सतगुर मिली ता सहज मिली, पिर राखिया उरतारे, सदा उरतारे नेहो नाल प्यारे, सतगुर ते पिर दिसै, माया मोह का कच्चा चोला, तिद पैदै पग खिसै, पिर रंग नहीं पिर रंग राता, सो सच्चा चोला, तित पैदै तिखा निवारे, प्रभ मेरा साहेब शब्द ऊंचा है, क्यों मिला प्रीतम प्यारे, मैं प्रभ सच पछाणिया, होर पुली अवगण यारे, मैं सदा रावे पिरे अपना, सचड़ै

ससरै चित्र जवाई, बाल कन्या कहो बा प्यारा, भाई कहो अत भाई। हुक्म भया बाहर घर छोड़िया, खिर मैं पई पराई। नामदान इशनान ना मनमुख, तित तन तूड़ तुम्हाई। मन मानिया नाम सिखाई, पाए परो गुर कै बलिहार। जिन साची बूझ बुझाई रहाओ, जग स्यों झूठ प्रीत मन बेदिया। जन स्यों वाद रिचाई, माया मगन अहनस मग जो है। नाम ना लेवै मरै बिख खाई, गंदन वैन रता हितकारी। शब्द सुरत ना आई, रंग ना राता रस नहीं बेदया। मनमुख पत गवाई, साध सवा मैं सहज ना चाखिया। जेबा रस नहीं आई, मन तन तन अपना कर जानिया। दर की खबर ना पाई, अखी मीट चलिया अंधियारा। घर दर दिसै ना पाई, जमदर बाधा ठौर ना पावै। अपना किया कमाई, नजर करे ता अखी वेखा। कहना कथन न जाई, कन्नी सुन सुन शब्द सलाही। अमृत हृदय वसाई, निरपौ निरंकार निरवैर। पूर्ण जो समाई, नानक गुरविन परम ना भागै। सच नाम वडियाई, सोरठ महला पहला। दो तुके पुड़ धरती पुड़ पानी आसन, चार कुंड चौबारा। सगल पवन की मूर्त एका, मुख तेरे टकसाला। मेरे साहेबा तेरे चोज विडाणा, जल थल महियल पर पुर लीना। आपे सर्ब समाणा रहाओ, जह जह देखा तै जो तुम्हारी। तेरा रूप कनेहा, एकत रूप फिर प्रसन्ना। कोई न किसी जेहा, अंडज जेरज उत्पुज सेतज। तेरे कीते जनता, एक पुरु मैं तेरा देखिया। तू सबना माहिरवंता, तेरे गुण बहुते मैं एक न जानिया। मैं मूर्ख किश दीजै, प्रणवत नानक सुन मेरे साहिबा। डुबदा पत्थर लीजै, सोरठ महला पहला। हाँ पापी पतत परम पाखंडी, तू निर्मल निरंकारी। अमृत चाख परम रसराते, ठाकर शरण तुम्हारी। करता तू मैं मान निमाने, मान महत नाम तन पल्ले। साचे शब्द समाने रहाओ, तू पूरा हम ऊरे ओछे। तू गौरा हम हौरे, तुझ ही मन राते। अहनस प्रभाते, हर रसना जाप मन रे। तुम साचे हम तुम ही रचे, शब्द भेद फुन साचे। अहनस नाम रते से सूचे, मर जन्मे से काचे। अवर ना दिसे किसा लाही, तिसे शरीक ना कोई। प्रणवत नानक दासन दासा, गुरमत जानिया सोई। सोरठ महला पहला, अलाख्या पारिया गाम्या गोचर। ना तिस काल ना करमा, जात्या जाता जोनी संपो। ना तिस पाओ ना परमा, साचे सच्यार विटों कुर्बान। ना तिस रूप वर्ण नहीं रेखिया, साचे शब्द निशान रहाओ। ना तिस मात पिता सुध बंधप, ना तिस कामना नारी। अकुल निरंजन अपर अपंप्र, सगली जो तुम्हारी। घट घट अंतर ब्रह्म लुकाया, घट घट जोत सबाई। बजर कपाट मुक्ते गुरमती, निरपै ताड़ी लाई। जंतो पाए काल सिर जनता, वसगत जुगत सबाई। सतगुर से पदार्थ पावै, छूटै शब्द कमाई। सोचे पांडै ऐसा समावै, विरला सूचे चारी। तंतै को परम तंत मिलाया, नानक शरण तुम्हारी। सोरठ महला पहला, ज्यो मीना बिन पानी है, त्यों सागत मरै प्यास। त्यों हर बिन मरियै रे मना, जो बिरथा जावै सास। मन रे राम नाम जस ले, बिन गुर एहो रस क्यों लहो। गुर मिलै हर दे रहाओ, संत जना मिल संगति। गुरमुख तीर्थ होए, आठ सठ तीर्थ मजना। गुरदर्श प्राप्त होए, ज्यों जोगी जत बाहरा। तप नाही सत संतोख,
ਤਿਉ ਨਾਮੈ ਬਿਨ ਦੇਹੁਰੀ ਜਮ ਮਾਰੈ ਅੰਤਰ ਦੋਖ ਸਾਗਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਪਾਈਐ ਹਰ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਭਾਏ ਸੁਖ ਦੁਖ ਦਾਤਾ ਗੁਰ ਮਿਲੈ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਸਮਾਏ ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਤੂੰ ਪ੍ਰਭ ਦਾਤਾ ਦਾਨ ਮਤ ਪੂਰਾ ਹਮ ਥਾਰੇ ਪੇਖਾਰੀ ਜੀਉ ਮੈਂ ਕਿਆ ਮਾਂਗਾ ਕਿਛ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਈ ਹਰ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਪਿਆਰੀ ਜੀਉ ਘਟ ਘਟ ਰਵ ਰਿਆ ਬਨਵਾਰੀ ਜਲ ਥਲ ਮਹੀਅਲ ਗੁਪਤੋ ਵਰਤੈ ਗੁਰਸਬਦੀ ਦੇਖ ਨਿਹਾਰੀ ਜੀਉ ਰਹਾਓ ਮਰਤ ਭਇਆਲ ਆਕਾਸ਼ ਦਿਖਾਇਓ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ

बिन गुर प्रीत ना उपजै भाई, मनमुख दूजै पाए। तोह कुटै मनमुख कर्म करै भाई, पल्ले किछु ना पाए। गुर मिलै ना मन रव्या भाई, साची प्रीत प्यार। सदा हर के गुण रवै भाई, गुर कै हित अपार। आया सो प्रमाण है भाई, जे गुर सेवा चित लाए। नानक नाम हर पाई है भाई, गुर सबदी मेलाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, तिही गुणी त्रिपवन व्यापिया पाई। गुरमुख बूझ बुझाए, राम नाम लग छुटिया पाई। पूछो ज्ञानिया जाए, मन रे त्रै गुण छोड़ चौथे चित लाए। हर जियो तेरे मन वसै भाई, सदा हर के गुण गाए रहाओ। नामै ते सब उपजै भाई, नाए विसरिया मर जाए। अज्ञानी जगत अंध है भाई, सूते गए मुहाए। गुरमुख जागे से उबरे भाई, पवजल पार उतार। जग में लाहा हर नाम है भाई, हृदय रखिया उरतार। गुर सरनाई उबरे भाई, राम नाम लिव लाए। नानक नाव बेड़ा नाव तुलहड़ा भाई, जित लग पार जन पाए। सोरठ महला तीजा कर पहला, सतगुर सुख सागर जग अंतर। होर थै सुख नाही, हौ मैं जगत दुख रोग व्यापिया। मरजन मैं रोवै ताही, प्राणी सतगुर सेव सुख पाए। सतगुर सेवै ता सुख पावै, नाहे ता जाहेगा जन्म गवाए। रहाओ त्रै गुण तात बहु कर्म कमावै। हर रा साधना आया, संध्या तर्पण करै गायत्री। बिन बूझे दुख पाया, सतगुर सेवे सोवड भागी। जिसनो आप मिलाए, हर रस पी जन सदा तृप्ता से। विचों आप गवाए, एहो जग अंदा सब अंद कमावै। बिन गुर मग ना पाए, नानक सतगुर मिलै ता अखी वेखै। करै अंदर सच पाए, सोरठ महला तीजा। बिन सतगुर सेव

हर नाम देवहो आधारे रहाओ। मनसा मार दुबदा सह सुमाणी पाया नाम अपारा। हर रस चाख मन निर्मल होवा किलबिख काटणु हारा। शब्द मरो फिर जीवो सद ही ता फिर मरना होई। अमृत नाम सदा मन मीठा शब्दे पावै कोई। दात है दात रखी हथ अपने जिस पावै तिस देई। नानक नाम रते सुख पाया दरगह जा पैसे ही। सोरठ महला तीजा सतगुर सेवे ता सहज तुन उपजे। गत मत तद ही पाए हर का नाम सच्चा मन वसिया नामे नाम समाए। बिन सतगुर सब जग बौराना मन मुखियन दा शब्द ना जाने। झूठे परम भुलाना रहाओ त्रै गुण माया परम भुलाया। हौ मैं बंधन कमाए जमन मरन शरी उपर उबो गर्भ जौन दुख पाए। त्रै गुण वरतै सगल संसारा हौ मैं विच पत खोई। गुरमुख होवै चौथा पद चीनै राम नाम सुख होई। त्रै गुण सब तेरे तू आपे करता जो तू करै सो होई। नानक राम नाम निस्तारा शब्दे हम मैं खोई। सोरठ

हर जन को ही सुहावै पेख निकट कर सेवा सतगुरु हर कीर्तन ही तृप्तावै रहाओ अमलन स्यों अमली लपटायो पूमन पूम प्यारी खीर संग बार कह लीना प्रभ संत ऐसे हितकारी विद्या मैं विद्यंसी रचिया नैन देख सुख पावै जैसे रसना साध लुभानी त्यों हर जन हर गुण गावै जैसी पूख तैसी का पूरक सगल कटा का स्वामी नानक प्यास लगी दर्शन की प्रभ मिलिया अंतर जामी सोरठ महला पंजवां हम मैले तुम यूजल करते हम निर्गुण तू दाता हम मूर्ख तुम चतर सियाने तू सर्व कला का ज्ञाता माधो हम ऐसे तू ऐसा हम पापी तुम पाप खंडन निकोठा कर दे सारा हो तुम सब साजे साज निवाजे जियो पिंड दे प्राणा निर्गुण यारे गुण नहीं कोई तुम दान दे हो मेरवाना तुम करो भला हम पलो ना जाने तुम सदा सदा दयाला तुम सुखदाई पुरख विदाते तुम राखो अपने बाला तुम निधान अटल सुल्तान जी जंत सब जाचे कहो नानक हम एह हवाला राख संतन कै पाछे सोरठ महला पंजवा कर दूजा मात गर्भ मैं अपन सिमरन दे तह तुम रखन हारे पावक सागर।

कीते कहो मेरे सम्मान करनहार तरन जान तू दाता मांगन कहो सगली दान दे प्रभ पान खिन मैं अवर खिन मैं अवरा अचरज चलत तुम्हारे रूडो गूडो गहर गंभीर ऊंचो अगम अपारे साध संग जो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद भया पेखत ही नानक प्रताप पुरख निर्वाणी सोरठ महला पंजवा हम संतन की रेन प्यारे हम संतन की सरना संत हमारी ओट सतानी संत हमारा गहना हम संतन स्यों बने आई पूर्व लिखिया पाई एहो मन तेरा पाई रहाओ संतन स्यों मेरी लेवा देवी संतन स्यों ब्योहारा संतन स्यों हम लाह खाटिया हर भगत भरे भंडारा संतन मौका पूंजी सौंपी तो उतरिया मन का धोखा धर्म राय अब कहां करे गो जो फाट्यो सगलो लेखा महा आनंद भय सुख पाया संतन कह प्रसादे कहो नानक हर स्यो मन मानिया रंग रते बिस्मादे सोरठ महला पंजवा जेती

गुरपुरै दिया उपदेशा तुम ही संग पराता रहाओ। काम क्रोध लोभ मोह अवमाना ता मैं सुख नहीं पाई है। हो रेन तू सगल की मेरे मन तो अंध मंगल सुख पाई है। काल ना पाने अंतर्विद जाने ताकि कर मन सेवा। कर पूजा होम एहो मनुआ अकाल मूर्त गुरुदेवा। गोविंद दामोदर दयाल माधवे पार ब्रह्म निरंकारा। नाम वर्तन नामो वालेवा नाम नानक प्राण आधारा। सोरठ महला पंजवा मृत का पायो तन सासा। बिशरत आन मिलाया पशु प्रेत मुग्ध पै स्रोते। हर नामा मुख गाया पूरे गुर की देख बढ़ाई। ता की कीमत कहन न जाई रहाओ। दुख सो काटायो डेरा अंध मंगल बिश्रामा। मन बाइथ

जां कै सिमरन सब कछ पाई है बिरथी काल ना जाई तिस प्रभ त्याग अवर कत राचो जो समय रहा समाई। हर हर सिमरो संत गोपाला साध संग मिल नाम ते आवो पूर्ण हो वै काला रहाओ। सार संभालै नित प्रतपालै प्रेम सहित गल लावै कहो नानक प्रभ तुमरे बिसरत जगत जीवन कैसे पावै। सोरठ महला पंजवां अबनासी जियन को दाता सिमरत सब मल खोई गुण निदान भगतन को बर्तन बिरला पावै कोई। मेरे मन जप गुर गोपाल प्रभ सोई जाकी शरण पया सुख पाई है बाहुड़ दुख ना होई रहाओ। वड भागी साध संग प्राप्त तिन भेटत दुरमत खोई तिन की तूर नानक दास बंश है जिन हर नाम हृदय परोई। सोरठ महला पंजवां जन्म जन्म

जी जंत प्रभ सगले उदारे दर्शन देखण हारे गुरपुरे की अचरज वड्याई नानक सदबलिहारे। सोरठ महला पंजवा संचन करो नाम तन निर्मल थाती अगम अपार बिलश विनोद आनंद सुख माणो। खाए जीवो सिख परवार हर के चरण कमल आधार संत प्रसाद पायो सच बोयथ। चढ़ लंगो बिक संसार रहाओ पय कृपाल पूर्ण अविनाशी आपै कीनी सार। पेख पेख नानक बिकसानो नानक नाही सुमार सोरठ महला पंजवा। गुरपुरै अपनी कल तारी सब घट उपजी दया आपे मिल वडाई कीनी कुशल खेम सब भया। सतगुर पूरा मेरे नाल पार ब्रह्म जब सदा निहाल रहाओ। अंतर बार थान थनंतर जतगत पेखो सोई नानक गुर पायो वड भागी तिस जेवड़ अवर ना कोई। सोरठ महला पंजवा सुख मंगल कल्याण सहज तुन प्रभ के चरण निहारिया। रख न हारे राख्यो बारक सदगुर ताप उतारे उबरे सदगुर की शरण आई जा की सेवना।

सतगुर पूरै ताप गवाया अपनी कृपा धारी पार ब्रह्म प्रपय दयाला दुख मिटिया सब परवारी सर्ब निधान मंगल रस रूपा हर का नाम आधारो नानक पत राखी परमेसर उदरिया सब संसारो सोरठ महला पंजवा मेरा सतगुरु रखवाला होवा धार कृपा प्रभात दे राखिया हर गोविंद नवा नरोवा रहाओ ताप गया प्रभ आप मिटाया जनकी लाज रखाई साध संगत ते सब फल पाए सतगुर कै बल जाई हालत पलत प्रभ दोवै सवारे हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया अटल बचन नानक गुर तेरा सफल कर मस्तक धारिया सोरठ महला पंजवा जी जंतर सब तिसके किए सोई संत सहाई अपने सेव की आपे राखै पूर्ण पई बड़ाई पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुरपूरै पूरी सब राखी होए सर्व दयाल रहाओ आनदिन नानक नाम ते आए जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखै जो बारक पित माता सोरठ महला पंजवा कर तीजा चौपदे एको अंकार सतगुर प्रसाद मिल पंचो ने सहसा चुकाया सिकदारो ने पतियाया उमरावो आ गै चेरा मिल राजन राम नबेरा अब ढूंढन कतो ना जाई गोविंद पेटे गुर गोसाई रहाओ आया प्रभ दरबारा ता सगली मिट्टी पुकारा लभद अपनी पाई ता कत आवै कत जाई तै साच न्याय नबेरा ऊहा समठा कर समचेरा अंतर जामी जानै बिन बोलते आप पिछानै सर्व थान को राजा तै अनहद सब दिया गाजा तिस पै क्या चतराई मिल नानक आप गवाई सोरठ महला पंजवा हिरदय नाम वसायो घर बैठे गुरु ते आयो गुरपूरै सच कहया सो सुख साचा लया अपना हो

जिन जिन साध संग पाया सो प्रभु आप तराया, कर कृपा नाम रस दिया कुशल खेम सब थिया, होए प्रभु सहाई सब उठ लागी पाई, सास सास प्रभु त्याई है हर मंगल नानक गाई है, सोरठ महला पंजवा सुख सहज आनंदा, प्रभ मिलियो मन पावंदा, पूरे गुर कृपा तारी तांगत पई हमारी, हर की प्रेम भगत मन लीना, नित बाजे अनहत बीना रहाओ, हर चरण की ओट सतानी सब चूकी कान लुकानी, जग जीवन दाता पाया हर रसक रसक गुण गाया, प्रभ काटिया जम का फासा मन पूर्ण होई आसा, जै पेखा तै सोई हर प्रभ बिन अवर ना कोई, कर कृपा प्रभ राखे सब जन्म जन्म दुख लाथे, निरपव नाम ते आया अटल सुख नानक पाया, सोरठ महला पंजवा ठांड पाई करतारे, ताप छोड़ गया परवारे, गुरपूरा है राखी सरण सचे की ताकी, परमेसर आप हुआ रखवाला, सांत सहज सुखन मैं उपजे, मन हो

मिल साधु दुर्मत खोए, पतत पुनीत सब होए, रामदास सरोवर नाते, सब लाथे पाप कमाते, गुण गोबिंद नित गाइए, साध संग मिल त्याइए, मन बाइत फल पाए, गुरपुरा हृदय त्याए, गुर गोपाल आनंदा, जब जब जीवे परमानंदा, जन नानक नाम ते आया, प्रभ अपना बिरद रखाया, राग सोरठ महला पंजवा, दह दिस छतर मेघ कटा घट, दामन चमक डरायो, सेज अकेली नींद नौ नैना, पिर पर दे सिदायो, हुन नहीं संदेसरो मायो, एक कोसरो सिद्ध करत लाल, तब चतर पात्रो आयो रहाओ, क्यों बिसरे ओ लाल प्यारो, सर्व गुणा सुखदायो, मंदर चरके पंथ निहारो, नैन नीर पर आयो, हाँ हाँ पीत पयो है बीचो, सुनत देश निकटायो, पांबीरी के पात पर दो, बिन पेखे दूर आयो, पयो कृपाल सर्व को ठाकरो, सगरो दुख मिटायो, कहो नानक कहो मैं पीत गुर खोई, तौ दयार बीठ लो पायो, सब रहो अंदेसरो मायो, जो चाहत सो गुरु मिलायो, सर्व गुणा निदरायो, रहाओ दूजा सोरठ महला पंजवा, गई बहोड़ बंदी छोड़, निरंकार दुखदारी, कर्म ना जाना धर्म ना जाना, लोभी माया तारी, नाम पर्यो भगत गोविंद का, एह राखो पैज तुम्हारी,

जैसा बालक पाए सुभाई लख अपराध कमावै कर उपदेश चिड़के बहु भांति बहुड़ पिता गल लावै पिछले अवगुण बख्श लए प्रभु आगे मार्ग पावै हरियंत्र जामी सब जाणै ता किस पै आख सुनाई है कहना कथन ना पीजे गोविंद हर भावै पैज रखाई है अवर ओट मैं सगली देखी एक तेरी ओट रहाई है होए दयाल किरपाल प्रभ ठाकरो आपे सुने बेनंती पूरा सतगुर मेल मिलावै सब चूकै मन की चिंती हर हर नाम अवखद मुख पाया जन नानक सुख वसंती सोरठ महला पंजवा सिमर सिमर प्रभय आनंदा दुख कलेश सब नाठे गुण गावत त्यावत प्रभ अपना कार्य सगले संठे जग जीवन नाम तुम्हारा गुरपुरै दियो उपदेसा जा पौजल पार उतारा रहाओ।

क्या गुण तेरे आख वखाणी, कीमत कहण ना जाई, पेख पेख जीवै प्रभ अपना, अचरज तुम्हें वडाई, तार अनुग्रह आप प्रभ स्वामी, पत मत कीनी पूरी, सदा सदा नानक बलिहारी, बांचो संता तूरी, सोरठ महला पंजवां, गुरपुरा नमस्कारे, प्रभ सबे काज सवारे, हरे अपनी कृपा तारी, प्रपूर्ण पै सवारी, अपने दास को पयो सहाई, सगल मनोरथ कीने करते, ऊनी बात ना काई रहाओ, करते पुरख ताल देवाया, पिछे लग चली माया, तोट ना कतहू आवै, मेरे पूरे सदगुर पावै, सिमर सिमर दयाला, सब जी भय कृपाला, जय जयकार गोसाई, जिन पूरी बणत बनाई, तू पारो स्वामी मोरा, एहो पुन पदार्थ तेरा, जन नानक

सोरठ महला पंजवा गुर का शब्द रखवारे चौकी चौगर्द हमारे राम नाम लागा जमल जाए कर पागा प्रभ जी तू मेरो सुखदाता। बंधन काट करे मन निर्मल पूर्ण पुरख विधाता रहाओ नानक प्रभ अबनासी ता की सेवना बिरथी जासी अनंद करे तेरे दासा जप पूर्ण होई आसा। सोरठ महला पंजवा गुरे अपने बलिहारी जिन पूर्ण पै सवारी मन चंदिया फल पाया प्रभ अपना सदा त्याया। संतो तिस बिन अवरना कोई करण कारण प्रभ सोई रहाओ प्रभ अपने वर दीने सगल जीव असकीने जन नानक नाम ते आया ता सगले दुख मिटाया। सोरठ महला पंजवा ताप गवाया गुरपुरे वाजे अनहद तूरे सर्ब कल्याण प्रभ कीने कर कृपा आप दीने। बेदन सतगुरे आप गवाई सिख संत सब सरसे होए हर हर नाम ते आई रहाओ। ज्यो मंगे सो लेवे प्रभ अपने संता देवे हर गोविंद प्रभ राखिया जन नानक साज सुपाखिया। सोरठ महला पंजवा सोई कराए जोत पावे मुहे सियाणप कछु ना आवै हम बारक तौ शरण आई प्रभ आपे पैज रखाई मेरा मात पिता हर राया। कर कृपा प्रतपालन लागा करी तेरा कराया रहाओ जी जंत तेरे तारे प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे जेकरा वैसो करना नानक दास तेरी सरना। सोरठ महला पंजवा हर नाम हृदय परोया सब काज हमारा होया प्रभ चरणी मन लागा पूर्ण जाके भागा मिल साध संग हर त्याया। आठ पहरिया राध्यो हर हर मन चिंदिया फल पाया रहाओ परा पुरबला अंकर जागया राम नाम मन लागया मन तन हर दर्श समावै। नानक दास सच्चे गुण गावै सोरठ महला पंजवा गुरमिल प्रभु चितारिया कारज सब सवारिया मंदा को नाया लाए सब जय जयकार सुनाए। संतो साची शरण स्वामी जी जंत सब हाथ सहकै सुप्रभ अंतर जामी रहाओ। करतब सब सवारे प्रभ अपना बिरद समारे पतत पावन प्रभ नामा जन नानक सतगुरबाना। सोरठ महला पंजवा पार ब्रह्म साज सवारिया एहो लहोड़ा गुरु उबारिया आनंद करो पित माता परमेश्वर जी का दाता। शुभ चितवन दास।

दयाल पुरख मेहरबाना, हर नानक साच बखाना, सोरठ महला पंजवा, ऐथै उथै रखवाला, प्रभ सतगुर दीन दयाला, दास अपने आप राखे, घट घट शब्द सुभाखे, गुर के चरण ऊपर बल जाई, दिन सरहण सा सा संभाली, पूर्ण सबनी थाई रहाओ, आप सहाई होवा, सच्चे दा सच्चा टोवा, तेरी भगत वड्याई, पाई नानक प्रभ सरनाई, सोरठ महला पंजवा, सतगुर पूरे पाणा, ता जपया नाम रमाणा, गोविंद कृपा तारी, प्रभ राखी पैज हमारी, हर के चरण सदा सुखदाई, जो इच्छा सोई फल पावै, बिरथी आस ना जाई रहाओ, कृपा करे जिस प्राण पा दाता, सोई संत गुण गावै, प्रेम भगत ता का मन लीना, पार ब्रह्मन पावै, आठ पहरो हर का जस रमणा, बिखैठ गौरी लाथी, संग मिलाए लिया मेरा करतै, संत साध पए साथी, कर कहली ने सरबस दीने, आपै आप मिलाया, कहो नानक सर्व थोक पूर्ण, पूरा सतगुर पाया, सोरठ महला पंजवा, गरीबी गदा हमारी, खन्ना सगले नशारी, इस आगे को ना टिकै बेकारी, गुरपूरे एह गल सारी, हर हर नाम संतन की ओटा, जो सिमरै तिसकी गत होवै, उदरै सगले कोटा रहाओ, संत संग जस गाया, एहो पूर्ण हर तन पाया, कहो नानक आ मिटाया, सब पार ब्रह्म नदरी आया, सोरठ महला पंजवा, गुरपूरै पूरी कीनी, बख्श अपनी कर दीनी, नित्यानंद सुख पाया, थाव सगले सुखी वसाया, हर की भगत फल दाती, गुरपूरै कृपा कर दीनी, विरलै किन्ही जाती रहाओ, गुरबाणी गावो पाई, गुरबाणी गावे पाई, ओ सफल सदा सुखदाई, नानक नाम ते आया, पूर्व लिखिया पाया, सोरठ महला पंजवा, गुरपूरा आरा दे, कार्ज सगले सादे, सगल मनोरथ पूरे, बाजे अनहद तूरे, संतो राम जपत सुख पाया, संत अस्थान बसे सुख सहजे, सगले दुख मिटाया रहाओ, गुरपूरे की बाणी, पार ब्रह्मन पाणी, नानक दास बखाणी, निर्मला कथ कहानी, सोरठ महला पंजवा, भूखे खावत लाज ना आवै, त्यों हर जन हर गुण गावै, अपने काज कहो क्यों अलकाई है, जे सिमरन दर गै मुखी उज्जल, सदा सदा सुख पाई है रहाओ, ज्यों कामी काम लुभावै, त्यों हर दास हर जस पावै, ज्यों माता बाल लपटावै, त्यों ज्ञानी नाम कमावै, गुरपूरे ते पावै, जन नानक नाम ते आवै, सोरठ महला पंजवा, सुख सांद कर आया, निंद कै मुखशाया, पूरे गुर पहराया, बिनसे दुख सवाया, संतो साचे की वड्याई, जिन अचरज सो बनाई रहाओ, बोले साहेब कै पाणे, दास बाणी ब्रह्म वखाणे, नानक प्रभ सुखदाई, जिन पूरी बणत बनाई, सोरठ महला पंजवा, प्रभ अपना हृदय ते आए, कर सही सलामत आए, संतोख भया संसारे, गुरपूरै लै तारे, संतो प्रभ मेरा सदा दयाला, अपने भगत की गणत न गणई, राखै बाल गोपाला रहाओ, हर नाम हृदय और तारे, तन सबे थोक सवारे, गुरपूरै तुस दिया, फिर नानक दुख ना थिया, सोरठ महला पंजवा,
हर मन तन वसिया सोई, जय जयकार करे सब कोई। गुरपूरे की वडियाई, ता की कीमत कही ना जाई। हाँ कुर्बान जाई तेरे नाम, जिसनों बख्श लह मेरे प्यारे, सो जस तेरा गावै रहाओ। तू पारो स्वामी मेरा, संता परवासा तेरा, नानक प्रभ शरण आई, मुख निंदक कै शाई। सोरठ महला पंजवा, आगे सुख मेरे मीता, पाछे आनंद प्रभ कीता, परमेश्वर बणत बनाई, फिर डोलत कतहू नाही। साचे साहेब स्यो मन मान्या, हर सर्व निरंतर जान्या रहाओ। सब जी तेरे दयाला, अपने भगत करें प्रतपाला, अचरज तेरी वडियाई, नित नानक नाम ते आई। सोरठ महला पंजवा, नाल नारायण मेरा, जमदूत ना आवै नेरा। कंठ लाए प्रभ राखे, सतगुर की सच साखे, गुर पूरे पूरी कीती, दुश्मन मार विडारे सगले, दास को समत दीती रहाओ। प्रभ सगले थान वसाए, सुख सांद फिर आए, नानक प्रभ पहरा, नानक प्रभ शरण आए, जन सगले रोग मिटाए। सोरठ महला पंजवा, सर्व सुखा का दाता सतगुरु, ताकी सरनी पाई है। दर्शन भेटत होत आनंदा, दुख गया हर गाई है। हर रस पीवो पाई, नाम जपो नामो आरादो, गुरपूरे की सरनाई रहाओ। तिसै प्राप्त जिस तुर लिखिया, सोई पूर्ण पाई, नानकी बेनंती प्रभ जी नाम रहा लिवलाई। सोरठ महला पंजवा, करण करावन हर अंतर जामी, जन अपने की रखै, जय जयकार होत जग पीतर, शब्द गुरु रस चाखै।

सुनी पुकार समरथ स्वामी बंधन काट सवारे तहर सिर पाओ सेवक जन मेले नानक प्रगट पहारे सोरठ महला पंजवा जी जंत सब वस कर दीने सेवक सब दरबारे अंगीकार कियो प्रभ अपने पवनित पहारे उतारे।

आओ बैठ आदर सब थाई ऊ न कतहु बाता भगत सिर पाओ दियो जन अपने प्रताप नानक प्रभ जाता सोरठ महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हरे मन राम स्यों कर प्रीत सर्वन गोविंद गुण सुनाओ वर गाओ रसना गीत रहाओ कर साध संगत सिमर माधो हो हे पतत पुनीत काल ब्याल ज्यों पर्यो डोले मुख पसारे मीत आज काल फुन तो हे ग्रस है समझ राखो चीत कह नानक राम भज लै जात अवसर बीत सोरठ महला नावा मन की मन ही माहे रही ना हर भजे ना तीर्थ सेवे चोटी काल गही रहाओ दारा मीत पूत रथ संपत धन पूर्ण सब मही अवर सगल मिथ्या ए जानो भजन राम को सही फिरत फिरत बहुते जुगहार्यो मानस देह लही नानक कहत मिलन की बरिया सिमरत कहा नहीं सोरठ महला नावा मन रे कौन कुमत लीनी परदारा निंदिया रस रचियो राम भगत ने कीनी रहाओ मुक्त पंथ जान्यो तै नाहन तन जोरन को ताया अंत संग काहू नहीं दीना बिरथा आप बंधाया ना हर भजियो ना गुरजन सेवियो नह उपजियो कछ ज्ञाना कट ही माहे निरंजन तेरे तै खोजत उद्याना बहुत जन्म परमत तै हारियो अस्त्र मत नहीं पाई मानस देह पाए पद हर भज नानक बात बताई सोरठ महला नावा मन रे प्रभ की शरण बिचारो जय सिमरत गण काशी उदरी ताको जस उर तारो रहाओ अटल पयो त्रुजा कै सिमरन अर निरपै पद पाया दुख हरता ए बिद को स्वामी तै काहे बिसराया जब ही शरण गही कृपा निद गज ग्रह ते छूटा महिमा नाम कहां लो बरनाओ राम कहत बंधन ते टूटा अजा मल पापी जग जाने निमख माहे निस्तारा नानक कहत चेत चिंता मन तैं पी उतरै पारा।

करई। कौन नाम गुरजा कै सिमरै पव सागर कौ तरई। कल मैं एक नाम कृपा निध जाहे जपै गत पावै। और धर्म ताकै समनाहन एह बिद बेद बतावै। दुख सुख रहत सदा निरलेपी जा को कहत गोसाई। सो तुम ही मैं बसै निरंतर नानक दर्पण न्याई। सोरठ महला नावा माई मैं कह बिद लखो गोसाई। महामोह अज्ञान तिमर मो मन रहो उरजाई रहाओ। सगल जन्म परम ही परम खोयो ने असर मत पाई। बिख्या सकत रहो निस्बासर ने छूटी अदमाई। साध संग कबू नहीं कीना ने कीर्त प्रभ गाई। जन नानक मैं नाहे को गुण राख लेहो सरनाई। सोरठ महला नावा माई मन मेरो बस ना है। निस्बासर बिख्यान कौतावत कह बिदरो कौताहे रहाओ। वेद पुराण सिमरत के मत सोनो निमख ना हिये बसावै। पर तन परधारा सिं रचियो बिरथा जन्म सिरावै। मद माया कै पयो बावरो सूजित ने कछ ज्ञाना। कट ही पीतर बस्त निरंजन ताको मर्म ना जाना। जब ही शरण साध की आयो दुर्मत सगल बिनासी। तब नानक चेत्यो चिंता मन काटी जमकी फासी। सोरठ महला नावा अरे नर एह साची जी तार। सगल जगत है जैसे सुपना बिनसत लगत ना बार रहाओ। बारू पीत बनाई रच पच रहत नहीं दिन चार। तैसे ही ए सुख माया के उर्जो कहां गवार। अजहू समझ कश बिगड़ो नाहन पजले ना मुरार। कहो नानक निज मत साधन कहो पाख्यो तोहे पुकार। सोरठ महला नावा एह जग मीत ना देखियो कोई। सगल जगत अपने सुख लागयो दुख में संग ना होई रहाओ। दारा मीत पूत सन बंदी सगरे तन स्यों लागे। जब ही निरतन देखियो नरकाओ संग शाड़ सब भागे।

लोभ मोह अवमानना, हर सोग ते रह न्यारो, नाहे मान अपमाना। आसा मनसा सगल त्याग, जगते रह निरासा, काम क्रोध जे परस नाहनो, ते कट ब्रह्म निवासा। गुर कृपा जेह नर कौ कीनी, तेह ए जुगत पछानी, नानक लीन भयो गोबिंद स्यों, ज्यों पानी संग पानी। सोरठ महला नावा, प्रीतम जान लेहो मन माही, अपने सुख स्यों ही जग फांदेओ, को काहू को नाही रहाओ। सुख में आन बहुत मिल बैठत, रहत चहू दिस घेरै, विपत परी सभी संग छाड़त, को न आवत नेरै। कर की नार बहुत हित जास्यों, सदा रहत संग लागी, जब ही हंस तजी एकाया, प्रेत प्रेत कर पागी। एह बिद को व्योहार बनयो है, जास्यो नेहो लगायो, अंत बार नानक बिन हर जी, को काम ना आयो। सोरठ महला पहला, कर पहला अष्टपदियां, चौथ की एको अंकार, सतगुर प्रसाद। दुबदा ना पड़ो, हर बिन होर ना पूजो, बड़े मसान ना जाई। तृष्णा राजना पर कर जावा, तृष्णा नाम बुझाई, कर पीतर कर गुरु दिखाया, सहज रते मन पाई।

बिख माया चित मोहया पाई, चतराई पत खोए, चित में ठाकर सच वसै पाई, जे गुर ज्ञान समोए। रूडो रूडो आखिए पाई, रूडो लाल चलूल, जे मन हर सिओ बैरागिए पाई, दर कर साच अकूल। पाताली आकाश तू पाई, कर कर तू गुण ज्ञान, गुर मिले सुख पाया पाई, जूका मनो गुमान। जल मल काया मांजिए पाई, पी मैला तन होए, ज्ञान महारस नाइए पाई, मन तन निर्मल होए। देवी देवा पूजिए पाई, क्या मांगो क्या देहे, पाहन नीर पखालिए पाई, जल में बुढ़े तेहे। गुर बिन अलख न लखिए पाई, जग बूढ़े पत खोए, मेरे ठाकर हाथ वड्याइया पाई, जय पावे तें दे। बैयर बोले मिठली पाई, साच कह पिर पाए, ब्रह बेदी सच वसी पाई, अदक रही हर नाए। सब को आखे अपना पाई, गुरते बुझे सुजान, जो भी दे से उबरे पाई, शब्द सच्चा निशान। ईंधन अदक सकेलिए पाई, पाव करन चक पाए, खिन पल नाम हृदय वसै पाई, नानक मिलन सुभाए। सोरठ महला तीजा, कर पहला ते तुकी एको अंकार, सतगुर प्रसाद। भगतां दी सदा तू रखदा हर जियो, तुर तू रखदा आया, प्रहलाद जन तुद राख लय हर जियो, हरनाक समार पजाया। गुरमुखां नूं प्रतीत है हर जियो, मनमुख भरम भुलाया, हर जी एह तेरी वडियाई। भगतां की पैज रख तू स्वामी, भगत तेरी सरनाई रहाओ। भगतां नूं जम जोहे ना साकै, काल ना नेड़ै जाई, केवल राम नाम मन वसिया, नामे ही मुक्त पाई। अरिद सिद्ध सब भगतां चरणी लागी, गुर कै सहज सुभाई। मन मुखां नूं प्रतीत ना आवई, अंतर लोभ सुवाओ, गुरमुख हिरदै शब्द ना भेदियो, हर नाम ना लागा पाओ। कूड कपट पाज लहि जासी, मनमुख फीका आ लाओ, भगतां विच आप वरतदा प्रभ जी, भगती हूं तू जाता। माया मोह सब लोक है तेरी, तू एको पुरख विधाता, हों मैं मार मन सामने समाणी, गुर कै शब्द पछाता। अचिंत कम करे प्रभ तिनके, जिन हर का नाम प्यारा, गुर प्रसाद सदा मन वसिया, सब

माया लालच अटिया प्यारे चेतन आवै मूल जिंतु विसरै पार ब्रह्म स्वामी सेतन होए तूड़ बिललाट करै बहुतेरिया प्यारे उतरै नाही सूल जो गुरमेल सवारिया प्यारे तिनका रहया मूल सात संग ना कीजई प्यारे जेका पार वसाए जिस मिलिया हर विसरै प्यारे सो मुह कल उठ जाए मन मुख टोई नह मिलै प्यारे दरगै मिलै सजाए जो गुरमिल सवारिया प्यारे तिन्ना पूरी पाए संजम सहस स्याण पां प्यारे एक न चली नाल जो बेमुख गोबिंद ते प्यारे तिन कुल लागै गाल होंदी वसना जातिया प्यारे कू न चली नाल सतगुर जिना मिलाय उन प्यारे साचा नाम समाल सत संतोख ज्ञान ध्यान प्यारे जिसनो नदर करे अंधन कीर्तन गुण रवै प्यारे अमृत पूर परे दुख सागर तिन लंघिया प्यारे पवजल पार परे जिस पावै तिस मेल लह प्यारे सही सदा खरे समर्थ पुरख दयाल देओ प्यारे भगता तिसका तान ते सरनाई टह पै प्यारे जे अंतर जामी जान हलत पलत सवारिया प्यारे मस्तक सच निशान सो प्रभ कदे न विसरै प्यारे नानक सत कुरबान सोरठ महला पंजवा कर दूजा अष्टपदियां एक ओंकार सतगुर प्रसाद पाठ पढ़ियो अरबेद विचारियो निवल पुवंग मसादे पंच जना स्यो संग न छुटक्यो अधिक अहंग बुद्ध बादे प्यारे इन बिद मिल न जाई मैं किए कर्म अनेका हार पर्यो स्वामी कै द्वारा दीजे बुद्ध बबेका रहाओ मोन पयो कर पाती रहो नगन फिरियो बन माही तड़ तीर्थ सब धरती प्रमयो दुबदा छुटकै नाही मन कामना तीर्थ जाए बसयो सिर करवत तराए मन की मैल न उतरै एह बिद जे लख जतन कराए कनक कामनी है वर गैवर बहु बिद दान दा तारा अन्न बस्त्र भूम बहु अर्पे न मिलिए हर द्वारा पूजा अर्चा बंधन डंडौत खटकर मारत रहता हाहो करत बंधन मैं परया न मिलिए एह जुगता जोग सिद्ध आसन चौरासी ए पी कर रहया वड्डी हार जा फिर जन्मै हर स्यो संग न गया राज लीला राजन की रचना करया हुक्म अफारा सेज सोहनी चंदन चोवा नरक कोर का द्वारा हर कीर्त साध संगत है सिर कर मन कह करमा कहो नानक तिस भयो प्राप्त जिस पुरब लिखे का लहना तेरो सेवक हे रंग माता पयो कृपाल दीन दुख भंजन हर हर कीर्तन एहो मन राता रहाओ दूजा राग सोरठ वार महले चौथे की एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक महला पहला सोरठ सदा सुहावनी जे सच्चा मन होए दंदी मैल न कत मन जीबै सच्चा सोए ससरै पेय पै वसी सतगुर सेवन संग पर हर कपड़ जे पिर मिलै खुशी रावै पिर संग सदा सिंगारी नाओ मन कदे ना मैल पतंग देवर जेठ मोए दुख ससु का डर किस जे पिर भावै नानका करम मणि सब सच महला चौथा सोरठ ताम सुहावनी जा हर नाम टंडोले गुरपुरख मनावै अपना गुरमती हर हर बोले
हर प्रेम कसाई दिन सरात, हर रत्ती हर रंग चोले, हर जैसा पुरख ना लबई, सब देखिया जगत मैं टोले। गुर सतगुर नाम दृढ़ाया, मन अंत ना काहूं डोले, जन नानक हर का दास है, गुर सतगुर के गोल गोले। पौड़ी तू आपे सिष्ट करता सृजन हारिया, तुद आपे खेल रचाए तुद आप सवारिया, दाता करता आप भोगन हारिया, सब तेरा शब्द वरत ओ पावन हारिया, हाँ गुरमुख सदा सलाही गुर को वारिया। श्लोक महला तीजा, हाँ मैं जल दे जल मोए, भ्रम आए दूजे पाए, पूरे सतगुर राख लिए अपने पन्ने पाए, एहो जग जलता नदरी आया, गुर कै शब्द सुभाए, शब्द रते से शीतल पए, नानक सच कमाए महला तीजा, सफल्यो सतगुर सेवया तन जन्म परवान, जिन्ना सतगुर जीवन दिया मोया ना विसरै सही पुरख सुजान, कुल उधारे अपना सोजन होवै परवान, गुरमुख मोए जीव दे प्रमाण है, मनमुख जन्म मराहे नानक मोए ना आखिए, जे गुर कै शब्द सुमाहे। पौड़ी हर पुरख निरंजन सेव, हर नाम ते आई है, सतसंगत साधु लग हर नाम सुमाई है, हर तेरी वड्डी कार मैं मूर्ख लाई है, हां गोला लाला तुद मैं हुकुम फरमाई है, हाँ गुरमुख कार कमावा जे गुर समझाइय, श्लोक महला तीजा, पूर्व लिखिया कमावना जे करता आप लिखियास, मोह ठगौली पाई अन विसरिया गुणतास, मत जानो जग जीवन दा दूजे पाए मोयास, जिनी गुरमुख नाम ना चेते ओ से बहन ना मिलनी पास, दुख लागा

वेद पुराण सब है मत सुन के करी कर्म की आसा। काल ग्रस्त सब लोग सियाने उठ पंडित पै चले निराशा। मन रे सरे ना एक काजा भजियो नारग पत राजा रहाओ। बन खंड जाए जोग तप कीनो कंद मूल चुन खाया। नादी बेदी सबदी मोनी जम के पटाए लिखाया। भगत नार दी हृदय न आई काश पूछ तन दीना। राग राग नी डिंब होए बैठा उन हर पै क्या लीना। परयो काल सबै जग उपर माहे लिखे परम ज्ञानी। कहो कबीर जन पहे खालसे प्रेम भगत जय जानी। कर

बाजीगर डंक बजाई सब खलक तमाशे आई, बाजीगर स्वांग सकेला अपने रंग रवाया अकेला। कथनी कह परम ना जाई सब कथ कथ रही लुकाई, जा कहो गुरमुख आप बुझाई ता कह हृदय रहा।

हृदय कपट मुख ज्ञानी झूठे कहां बिलोव सपानी काया मांजस कौन गुना जौ कट पीतर है मलना रहाओ लौकी अड़सठ तीर्थ नाई कौरा पंतऊ ना जाई कह कबीर बिचारी पवसागर तार मुरारी सोरठ एक ओंकार सतगुर प्रसाद बहु परपंच कर पर धन लियावै सुधारा बयान लुटावै मन मेरे पूले कपट ना कीजै अंत नबेरा तेरे जी पहली जह रहाओ छिन छिन तन छीजै जरा जनावै तब तेरी ओक कोई पानी ओ ना पावै कहत कबीर कोई नहीं तेरा हृदय राम की ना जपै सवेरा संत हो मन पवने सुख बनया कि जोग प्राप्त गनया रहाओ गुर दिखलाई मोरी जित मिर्ग पड़त है चोरी मूंदलिए दरवाजे बाजी आले अनहद बाजे कुंभ कमल जल भरिया जल मेटिया उबा करिया कहो कबीर जन जानिया जो जानिया तो मन मानिया राग सोरठ भूखे भगत ना कीजै यह माला अपनी लीजै हाउ मांगो संतन रेना मैं नाही किसी का देना माधो कैसी बने तुम संगे आप ना देहो ता ले वो मंगे रहाओ दोए शेर मांगो चूना पाओ की ओ संग लूना अध शेर मांगो दाले मोको दोनों वक्त जिवाले खाट मांगो चौपाई सरहाना अवर तुलाई ऊपर कौ मांगो खींदा तेरी भगत करे जन थींदा मैं नाही कीता लबो एक नाव तेरा मैं फबो कह कबीर मन मानिया तो हर जानिया राग सोरठ बाणी भगत नाम दे जी की कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जब देखा तब गावा तौ जन तीरज पावा नाद समाए लोरे सतगुर पेटले देवा रहाओ जह चिल मिलकार दिसंता तै अनहद शब्द बजंता ज्योति ज्योत समानी मैं गुर प्रसादी जानी रतन

जय अनहत सूर उजियारा, तह दीपक जलै शंशारा। गुर प्रसादी जानिया, जन नामा सहि समानिया, कर चौथा सोरठ। पाड़ पड़ोसन पूछले नामा, का पैशान शवाई हो। तो पै दुगनी मजूरी दहो, मोको बेडी देहो बताई हो। रिबाई बेडी देन न जाई, देख बेडी रे उसमाई। हमारे बेडी प्राण आधारा रहाओ। बेडी प्रीत मंजूरी मांगे, जौ को शान शवावे हो। लोग को टंब सबोते तोरे, तो अपन बेडी आवे हो। ऐसो बेडी बर्न ना सको, सब यंत्र सब ठाई हो। गुंगे महा अमृत रस चाखिया, पूछे कह न जाई हो। बेडी के गुण सुन री बाई, जल्द बांध तू थाप्यो हो। नामे के स्वामी सी बहोरी, लंकप भीखण आप्यो हो। सोरठ कर तीजा, अड़मड़िया मंदल बाजै, बिन सावन कन हर गाजै।

मेरी जात कमीनी पात कमीनी ओछा जन्म हमारा तुम शरणागत राजा रामचंद कह रविदास चुमारा चमरटा गांठ न जनई लोग गठावे पन ही रहाओ आर नहीं जे तो पो नहीं रामबी ठाओ रो पो लोग गंठ गंठ खरा बिगूचा हम बिन गंठे जाए पहुंचा रविदास जपै राम नामा मोहे जमस्यो नाही कामा राग सोरठ बाणी भगत पेखन की एक ओंकार सतगुर प्रसाद नैन

पूरे गुर की साची बाणी, सुख मने अंतर सह समाणी, एक आचार्य जन देखो पाई, दुबदा मार हर मन वसाई, नाम अमोलक ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, सब मैं वसै प्रवे को सोए, गुरमति घट प्रगट होए, सहजे जिन प्रभ जान पछाणिया, नानक नाम मिले मन मानिया, तनासरी महला तीजा, हर नाम तन निर्मल अत्या पारा, गुर कै शब्द भरे भंडारा, नाम तन बिन होर सब बिख जान, माया मोहे जले अभमान, गुरमुख हर रस चाखै कोए, तिसदा आनंद होवै दिन राती, पूरे भाग प्राप्त होए रहाओ, शब्द दीपक वरतै तिहो लोए, जो चाखै सो निर्मल होए, निर्मल नाम हौ मैं मल तोए, साची भगत सदा सुख होए, जिन हर रस चाखिया सो हर जन लोग, तिसदा हरख नाही कदे सोग, आप मुगत अवरा मुक्त करावै, हर नाम जपै हर ते सुख पावै, तिन सतगुरु सब मुई बिललाए, अंदंदा जय सांत ना पाए, सतगुर मिले सब तृष्ण बुझाए, नानक नाम सां सुख पाए, तनासरी महला तीजा, सदा तने अंतर नाम संभाले, जी जंत जिनै प्रतिपाले, मुक्त पदार्थ तिन कौ पाए, हर कै नाम रते लिवलाए, गुर सेवा ते हर नाम तन पावै, अंतर प्रगास हर नाम ते आवै रहाओ, एहो हर रंगूड़ा तन पिर होए, सांत सिंगार रावे प्रभ सोए, हाँ मैं विच प्रभ कोए ना पाए, मुल्लों पुल्ला जन्म गवाए, गुर ते सांत सहज सुख बाणी, सेवा साची नाम समाणी, शब्द मिलै प्रीतम सदा ते आए, सच नाम वड्याई पाए, आपे करता जो जुग सोए, नदर करे मेलावा होए, गुरबाणी ते हर मन वसाए, नानक साजर ते प्रभ्या मिलाए, तनासरी महला तीजा तीजा, जग मैला मैलो हो जाए, आवै जाए दूजे लोभाए, दूजे पाए सब पर जब गोई, मनमुख चोटा खाए, अपनी पद खोई, गुर सेवा ते जन निर्मल होए, अंतर नाम वसै पति उत्तम होए रहाओ, गुरमुख उबरे हर शरणाई, राम नाम राते भगत दरड़ाई, भगत करे जन वड्याई पाए, साच रते सुख सहि समाए, साचे का गाहक विरला को जान, गुर कै शब्द आप पछाण, साची रास साचा वापार, सो तन पुरख जिस नाम प्यार, तिन प्रभ साचा एक सच लाए, उत्तम बाणी शब्द सुनाए, प्रभ साचे की साची कार, नानक नाम सवारण हार, तनासरी महला तीजा, जो हर सेवै तिन बल जाओ, तिन हृदय साच सच्चा मुख नाओ, साचो सा संभाल्यो दुख जाए, साचै शब्द वसै मन आए, गुरबाणी सुन मैल गवाए, सहजे हर नाम मन वसाए रहाओ, कूड़ कुसत तृष्णा यगन बुझाए, अंतर सांत सहे सुख पाए, गुर कै पाणै चलै ताय आप जाए, साच महल पाए हर गुण गाए, ना शब्द बूझै ना जाणै बाणी, मन मुख अंदे दुख विहानी, सतगुर भेटे ता सुख पाए, हमें विचों ठाक रहाए, किसनो कहिया दाता एक सोए, कृपा करे शब्द मिलावा होए, मिल प्रीतम साचे गुण गावा, नानक साचे साचा पावा, तनासरी महला तीजा, मन मरे तात मर जाए, बिन मन मुए कैसे हर पाए, एहो मन मरे दारू जाने कोए, मन शब्द मरे बूझे जन सोए, जिसना बक्से हर दे वड्याई, गुर प्रसाद वसै मन आई रहाओ, गुरमुख करनी कार कमावै, ता इस मन की सोजी पावै, मन मैं मत मैंगल मिकदारा,
ਗੁਰ ਅੰਕਸ ਮਾਰ ਜੀਵਾ ਲਣਹਾਰਾ। ਮਨ ਅਸਾਧ ਸਾਧੈ ਜਨ ਕੋਈ, ਅਚਰ ਚਰੈ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਈ। ਗੁਰਮੁਖੇ ਹੋ ਮਨ ਲਿਆ ਸਵਾਰ, ਹਮੈ ਵਿੱਚੋਂ ਤਜੈ ਵਿਕਾਰ। ਜੋ ਤੁਰ ਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮੇਲ ਮਿਲਾਏ, ਕਦੇ ਨਾ ਵਿਛੜੈ ਸ਼ਬਦ ਸਮਾਏ। ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਆਪੇ ਪ੍ਰਭ ਜਾਣੈ, ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਪਛਾਣੈ। ਤਨਾ ਸ੍ਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਾਚਾ ਤਨ ਸੰਚੈ ਮੂਰਖ ਗਾਵਾਰ, ਮਨਮੁਖ ਪੂਲੇ ਅੰਧ ਗਵਾਰ। ਵਿਖਿਆ ਕਹਿ ਤਨ ਸਦਾ ਦੁਖ ਹੋਏ, ਨਾ ਸਾਥ ਜਾਏ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਾਚਾ ਤਨ ਗੁਰਮਤੀ ਪਾਏ, ਕਾਚਾ ਤਨ ਫੁਨਿਆਵੈ ਜਾਏ ਰਹਾਉ। ਮਨਮੁਖ ਪੂਲੇ ਸਮਰੈ ਗਵਾਰ, ਪਵਜਲ ਡੂਬੇ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਪੇਟੇ ਪੂਰੈ ਭਾਗ, ਸਾਚਰ ਤੇ ਅਹਿਨਸ ਬੈ ਰਾਗ। ਚਹੋ ਜੁਗ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਚੀ ਬਾਣੀ, ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੀ। ਸਿੱਧ ਸਾਧਕ ਤਰਸੈ ਸਭ ਲੋਏ, ਪੂਰੈ ਭਾਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ। ਸਭ ਕੇ ਸਾਚਾ ਸਾਚਾ ਹੈ ਸੋਏ, ਉਤਮ ਬ੍ਰਹਮ ਪਛਾਣੈ ਕੋਏ। ਸੱਚ ਸਾਚਾ ਸੱਚ ਆਪ ਦਿਰੜਾਏ, ਨਾਨਕ ਆਪੇ ਵੇਖੈ ਆਪੇ ਸੱਚ ਲਾਏ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਨਾਵੈ ਕੀ ਕੀਮਤ ਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਸੇ ਜਨ ਤਨ ਜਿਨ ਇੱਕ ਨਾਮ ਲਿਵ ਲਾਏ। ਗੁਰਮਤ ਸਾਚੀ ਸਾਚਾ ਵਿਚਾਰ, ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ। ਹਰ ਨਾਮ ਅਚਰਜ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਸੁਣਾਏ, ਕਲੀ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਏ ਰਹਾਓ। ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੂਰਖ ਮਨ ਮਾਹੇ, ਹਉ ਮੈਂ ਵੀ ਸਭ ਕਾਰ ਕਮਾਹੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਹਉ ਮੈਂ ਜਾਏ, ਆਪੇ ਬਖਸੇ ਲੈ ਮਿਲਾਏ। ਵਿਖਿਆ ਕਾ ਤਨ ਬਹੁਤ ਅਭਿਮਾਨ, ਹੰਕਾਰ ਡੂਬੈ ਨਾ ਪਾਵੈ ਮਾਨ। ਆਪ ਛੋੜ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਾ ਲਾਹੀ ਸਹਿ ਸੋਈ। ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰਤਾ ਸੋਏ, ਤਿਸ ਬਿੰਦੂ ਜਾਇ ਅਵਰ ਨਾ ਕੋਏ। ਜਿਸ ਸੱਚ ਲਾਏ ਸੋਈ ਲਾਗੈ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਦਾ ਸੁਖ ਆਗੈ। ਰਾਗ ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਰ ਚੌਥਾ ਏਕੋ ਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਮ ਭੀਖ ਕਪੇ ਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ। ਹੋ ਦਿਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕਉ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ। ਹਉ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉ ਸਾਚੇ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟਾਉ। ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਕਾ ਕੋਈ, ਔਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਰਹਾਓ। ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕਉ, ਅਬ ਕਿਛ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ। ਹੋ ਦਿਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ, ਆਪੀ ਐਸੀ ਬਸ ਕਰੀਜੈ। ਭਣਤ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਪਟ ਖੂਲੇ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ। ਸਾਚੀ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਹੈ ਪੀਤਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਉ ਮਨ ਮਾਨਿਆ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਕਰ ਪਹਿਲਾ ਚੌਪਦੇ ਏਕੋ ਅੰਕਾਰ, ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਜੋ ਹਰ ਸੇਵੈ ਸੰਤ ਭਗਤ, ਤਿਨ ਕੇ ਸਭ ਪਾਪ ਨਿਵਾਰੀ। ਹਾਮੀ ਉਪਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਵਾਮੀ, ਰੱਖ ਸੰਗਤ ਤੁਮ ਜੋ ਪਿਆਰੀ। ਹਰ ਗੁਣ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕੋ ਬਨਵਾਰੀ, ਹਮ ਪਾਪੀ ਪਾਥਰ ਨੀਰ ਡੁਬਤ। ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਖਣ ਹਮ ਤਾਰੀ ਰਹਾਓ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਲਾਗੇ ਵਿਖ ਮੋਰਚਾ। ਲਗ ਸੰਗਤ ਸਾਧ ਸਵਾਰੀ, ਜੋ ਕੰਚਰ ਬੈ ਸੰਤਰ ਤਾਇਓ, ਮਲ ਘਾਟੀ ਕਰਤੇ ਉਤਾਰੀ। ਹਰ ਹਰ ਜਪਨ ਜਪੋ ਦਿਨ ਰਾਤੀ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਹਰਿ ਉਰ ਤਾਰੀ। ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਔਖਦ ਜਗ ਪੂਰਾ, ਜਪ ਹਰ ਹਰ ਹਉ ਮੈਂ ਮਾਰੀ। ਹਰ ਹਰ ਅਗਮ ਅਗਾਦ ਬੋਧ, ਅਪਰੰਪਰ ਪੁਰਖ ਅਪਾਰੀ। ਜਨ ਕਉ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜਗ ਜੀਵਨ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਪੈ ਸਵਾਰੀ। ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ। ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਜਪਿਓ, ਤਿਨਕਾ ਦੁਖ ਭਰਮ ਪਉ ਭਾਗੀ। ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਆਪ ਕਰਾਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਅੰਤਰ ਜਾਗੀ। ਹਰ ਕਹਿ ਨਾਮ ਰਤਾ ਬੈਰਾਗੀ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਸੁਣੀ ਮਨ ਪਾਈ। ਗੁਰਮਤਿ ਹਰ ਲਿਵ ਲਾਗੀ ਰਹਾਓ, ਸੰਤ ਜਨਾ ਕੀ ਜਾਤ ਹਰ ਸਵਾਮੀ, ਤੁਮ ਠਾਕਰ ਹਮ ਸਾਂਗੀ। ਜੈਸੀ ਮਤ ਦੇਵੋ ਹਰ ਸਵਾਮੀ,
हम तैसे बुलक बुलागी क्या हम किरम नानक कीरे। तुम वट पुरख वडागी तुमरी गत मित कह ना सकै प्रभ हम क्यों कर मिलया पागी। हर प्रभ स्वामी कृपा तारो हम हर हर सेवा लागी। नानक दासन दास करो प्रभ हम हर कथा कथागी। तनासरी महला चौथा हर का संत सतगुर सतपुरखा जो बोले हर हर बानी। जो जो कह सुने सो मुक्ता हम तिस कह सतकुरबानी। हर के संत सुनो जस कानी हर हर कथा सुनो एक निमुख पाल। सब किलविख पाप लह जानी रहाओ ऐसा संत साध जिन पाया। ते वड पुरख वडानी तिनकी तूर मंगै प्रभ स्वामी हम हर लोच लुचानी। हर हर सफलियो बिरख प्रभ स्वामी जिन जपियो से तृप्तानी। हर हर अमृत पी तृप्ता से सब लाथी पूख पुखानी। जिनके वडे भाग वड उचे तिन हर जपियो जपानी। तिन हर संगत मेल प्रभ स्वामी जन नानक दा दसानी। तनासरी महला चौथा हम अंधले अंध बिखे बिखराते क्यों चाले गुर चाली। सतगुर दया करे सुखदाता हम लावे आपन पाली। गुर सखमी चलो गुर चाली जो गुर कह सोई पल मानो। हर हर कथा निराली रहाओ हर के संत सुनो जन पाई। गुर सेवो बेग बेगाली सतगुर सेव खर्च हर बांधाओ मत जानो वाज के काली। हर के संत जपो हर जपना हर संत चले हर नाली। जिन हर जपया से हर होए हर मिलिया केल के लाली। हर हर जपन जप लोच लुचानी हर कृपा कर बनवाली। जन नानक संगत साध हर मेलो हम साज जना पगराली। तनासरी महला चौथा हर हर बूंद पय हर स्वामी हम चात्रक बिलल बिललाती। हर हर कृपा करो प्रभ अपनी मुख देवो हर निमखाती। हर बिन रह ना सको एक राती जो बिन अमल अमली मर जाई है। त्यों हर बिन हम मर जाती रहाओ। तुम हर सरवर अत अगाह हम लह न सके अंत माती। तू पर पर अपरंपर स्वामी मित जानो अपन गाती। हर के संत जना हर जपयो गुर रंग चलू लै राती। हर हर भगत बनियत सोभा हर जपयो उत्तम पाती। आपे ठाकुर आपे सेवक आप बनावे पाती। नानक जन तुमरी शरण आई हर राखो लाज पगाती। तनासरी महला चौथा कलयुग का धर्म कहो तुम भाई किव छूटे हम छुटका की। हर हर जप बेड़ी हर तुलहा हर जपयो तरह तरा की। हर जी लाज रखो हर जन की हर हर जपन जपावो अपना हम मांगी भगते का की रहाओ। हर के सेवक से हर प्यारे जिन जपयो हर बचना की। लेखा चित्र गुप्त जो लिखिया सब छूटी जमकी बाकी। हर के संत जपयो मन हर हर लग संगत साध जना की। दिन यार सूर तृष्णा अग्न बुझानी शिव चरयो चंद चंदा की। तुम वड पुरख वड अगम्या गोचर तुम आपे आप आपा की। जन नानक कहो प्रभ कृपा की जय कर दसन दाद दसा की। तनासरी महला चौथा कर पंजवा दोपद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उर धार विचार मुरार रमो रम मन मोहन नाम जपीने।
अदृष्टा गोचर परंपर स्वामी गुरपुर प्रगट कर दीने राम पारस चंदन हम काष्ट लोष्ट हर संग हरी सतसंग पहे हर कंचन चंदन कीने रहाओ नाम शे खट बोले मुख आगर मेरा हर प्रभ इवना पतीने जन नानक हर हृदय सत्यावो इव हर प्रभ मेरा पीने तनाश्री महला चौथा गुण कहो हर लहो कर सेवा सतगुर एव हर हर नाम ते आई हर दर गै पावै फिर जन्म ना आवै हर हर हर ज्योत समाई जप मन नाम हरी होहे सर्व सुखी हर जस ऊच सबना ते ऊपर हर हर हर सेव छडाई रहाओ हर कृपा निध कीनी गुर भगत हर दीनी तब हर स्यो प्रीत बने आई बहु चिंत विसारी हर नाम और तारी नानक हर पय है सखाई तनाश्री महला चौथा हर पढ़ हर लेख हर जप हर गाओ हर भोजन पार उतारी मन बचन हृदय ते आए हर होए संतुष्ट एव पण हर नाम मोरारी मन जपिए हर जगदीश मिल संगत साधु मीत सदा आनंद होवै दिन राती हर कीर्त कर बनवारी रहाओ हर हर करी दृष्ट तब भयो मन उद्यम हर हर नाम जपयो गत ही पई हमारी जन नानक की पत राख मेरे स्वामी हर आए पर्यो है शरण तुम्हारी तनाश्री महला चौथा चौरासी सिद्ध बोत तीस कोट मुन जानो सब चाहे हर जियो तेरो नाओ गुर प्रसाद को विरला पावै जिन कौल लाट लिखिया तुर पाओ जप मन रामै नाम हर जसि उत्तम काम जो गावै सुनै तेरा जस स्वामी हम तनकै सद बलिहारै जाओ रहाओ शरणांगत प्रतपालक हर स्वामी जो तुम देहो सोई हौ पाओ दीन दयाल कृपा कर दीजै नानक हर सिमरन का है चाओ तनासरी महला चौथा सेवक सिख पूजन सब आवै सब गावै हर हरि उत्तम बानी गाव्या सुनिया तनका हर थाए पावै जिन सतगुर की आग्या सत सत कर मानी बोलो पाई हर कीर्त हर पवजल तीर्थ हर दर तिन की उत्तम बात है संतो हर कथा जिन जनो जानी रहाओ आपे गुर चेला है आपे आपे हर प्रभ चोज विडानी जन नानक आप मिलाए सोई हर मिलसी अवर सब त्याग ओहा हर पानी तनासरी महला चौथा इच्छा पूरक सर्व सुखदाता हर जा कै वस है काम तेना सो ऐसा हर त्याई है मेरे जी अड़े ता सर्व सुख पाव है मेरे मना जप मानो सतनाम सदा सतनाम हालत पलत मुखी उज्जल होई है नित त्याई है हर पुरख निरंजना रहाओ जय हर सिमरन पया तहे उपाद गत कीनी वडपागी हर जपना जन नानक कौ गुर एह मत दीनी जप हर पवजल तरना तनासरी महला चौथा।

तू सब ना करें एक दात, सब को तुझ ही विच है मेरे सहा, तू ते बाहर कोई ना है, सब जी तेरे तू सब सदा मेरे सहा, सब तुझ ही माहे समा है, सब ना की तू आस है मेरे प्यारे, सब तुझे ते आवे मेरे सहा, ज्यो पावे त्यों रख तू मेरे प्यारे, सच नानक के पातशाह। तनासरी महला पंजवा, कर पहला चौपदे एको अंकार, सतगुर प्रसाद पवखंडन दुख पंजन स्वामी, भगत वच्छल निरंकारे, कोट प्राद मिटे खिन पीतर, जां गुरमुख नाम सुमारे, मेरा मन लागा है राम प्यारे, दीन दयाल करी प्रभु कृपा, वस कीने पंच दूतारे, रहाओ तेरा थान सुहावा, रूप सुहावा, तेरे भगत सोहै दरबारे, सर्ब जिया के दाते स्वामी, कर कृपा लिहो उबारे, तेरा वर्ण ना जापै, रूप ना लखिया, तेरी कुदरत कौन बिचारे, जल थल महियल रविया सर्ब ठाई, अगम रूप गिरधारे, कीर्त करे सगल जन तेरी, तू अबनासी पुरख मुरारे, जो पावे त्यो राखो स्वामी, जन नानक शरण दुआरे। तनासरी महला पंजवा, बिन जल प्राण तजे है मीना, जिन जल सो हेत बढ़ायो, कमल हेत बिन सो है पवरा।

काम हेत कुंचर लै फांकियो ओ परवस भयो बिचारा, नाद हेत सिर डार्यो कुरंका उसी हेत बेदारा। देख कुटाम्ब लोभ मोहयो प्राणी, माया को लपटाना अत रचियो कर लीनो अपना, उण छोड़ सरा पर जाना। बिन गोबिंदो अवर संग नेहा, ओ जानो सदा दुहेला, कहो नानक गुर एह बजायो प्रीत प्रभु सदकेला। तनासरी महला पंजवा, कर कृपा दियो मोहे नामा, बंधन ते छुटकाए मन ते बिसरियो सगलो तंदा। गुर की चरनी लाए साध संग।

गुर की टहल गुरु की सेवा गुर की आज्ञा पानी कहो नानको जिन जमते काढ़े तिस गुर कै कुर्बानी। तनासरी महला पंजवा जिसका तन मानो तन सब तिसका सोई सुगड़ सुजानी। तिन ही सुनया दुख सुख मेरा तौ बिद नीकी खटानी जी की कह ही पहमानी। अवर जतन कर रहे बहु तेरे तिन तल नहीं कीमत जानी। रहाओ अमृत नाम निर्मोल कहीरा गुरदीनो मनतानी। डिगै न डोलै दृढ़ कर रहे हो पूर्ण होए त्रिपतानी। ओए जो बीच हम तुम कश होते तिनकी बात बिलानी। अलंकार मिल थैली होई है ताते कनक वखानी। प्रगट्यो जो तो सहज सुख शोभा बाजे अनहत बानी। कहो नानको निचल कर बांधियो गुर की ओ बंधानी। तनासरी महला पंजवा वडे वडे राजन यार पूमन ताकि त्रिशन ना बूझी। लपट रहे माया रंग माते लोचन कछु ना सूजी। बिखिया मैं किन्हीं तृप्त ना पाई ज्यों पावक ईंधन नहीं त्रपै बिनहर कहां आगाई। रहा हो दिन दिन करत

कामवंत कामी बहु नारी परग्रे जोहन चुके दिन प्रत करे करे पछतापे सोग लो मैं सूके हर हर नाम अपारिया मोला अमृत एक निधाना सुख सहज आनंद संतन कै नानक गुर ते जाना तनासरी महला पंजवा लवे न लागन कहो है कछु है जाको फिर एह तावै जाको गुर दीनो एहो अमृत तिस ही को बने आवै जाको आयो एक रसा खान पान आन नहीं खुदया ता कै चेतना बसा रहाओ मौल्यो मंतन होयो हरिया एक बूंद जिन पाई बरन न साको उस ता की कीमत कहन न जाई काल ना मिलियो सेव ना मिलियो मिलियो आया चिंता जाको दया करी मेरे ठाकुर तिन गुरे कमानो मंता दीन दयाल सदा कृपाला सर्ब जिया प्रतपाला ओत पोत नानक संग रव्या जो माता बाल गोपाला तनासरी महला पंजवा बार जाओ गुरे अपने ऊपर जिन हर हर नाम दृढ़ाया महा उद्यान अंधकार में जिन सीधा मार्ग

प्रभु जी को नाम जपत मन चैन, बहु प्रकार खोजै सब ता कहो, बिखम ना जाई लैन रहाओ। जाप ताप परम जाप ताप परमन बसदा कर, उर्द ताप लै गैन एह बिदन है पतियानो ठाकर, जो जोत कर जैन। अमृत नाम निर्मोल कहार जास, तिन पायो जिस कर पैन, साध संग रंग प्रपेटे, नानक सुख जन रैन। तनासरी महला पंजवा, बंधन ते छुटकावै प्रभु मिलावै, हर हर नाम सुनावै अस्त्र करे निचल एहो मनुआ, बहुण ना कतहूं तावै। है कोई ऐसो हमरा मीत, सगल समग्री जियो हियो देओ, अर्पो अपनो चीत रहाओ। पर तन पर की निंदा, इन स्यो प्रीत न लागै, संतै संग संत संपाखन, हर कीर्तन मन जागै। गुण निदान दयाल पुरख प्रभ, सर्व सुख दयाला, मांगै दान नाम तेरो नानक, ज्यों माता बाल गोपाला। तनाश्री

जन्म मरण निवार हर जप सिमर स्वामी सोए। वेद सिमरत कथय शास्त्र भगत करै विचार, मुक्त पाई साध संगत बिनस जाए अंधार। चरण कमल आधार जन का रास पूंजी एक, तान मान दी बाण साचा नानक की प्रवटेक। तनासरी महला पंजवा, फिरत फिरत भेटे जन साधु पूरे गुर समझाया। आन सगल बिद क्याम नया वै, हर हर नाम ते आया। ताते मोहतारी ओट गोपाल, शरण परे ओ पूर्ण परमेश्वर बिनसे सगल जंजाल। रहाओ सुरग मृत पयाल भू मंडल, सगल ब्यापे माए। जी उदारण सब कुल तारण, हर हर नाम ते आए। नानक नाम निरंजन गाइय पाइय सर्म निधाना, कर कृपा जे दे स्वामी बिरले काहू जाना। तनासरी महला पंजवा, कर दूजा चौपद एक ओंकार। सतगुर प्रसाद छोड़ जाहे से करे पराल, कामना आवे से जंजाल। संग न चल तिन सो हीत, जो बैराई से ही मीत। ऐसे परम कुले संसारा, जन्म पदार्थ खोए गवारा। रहाओ साच धर्म नहीं पावे डीठा, झूठ तो हो स्यो रच्यो मीठा। दात प्यारी विसरिया दा तारा, जाने नाही मरण विचारा। वस्त पराई को उठ रोवे, कर्म धर्म सगलाई खोवे। हुक्म न बूझै आवन जाने, पाप करै ता पछो ताने। जो तुद पावै सो प्रवान, तेरे पाणे नो कुर्बान। नानक गरीब बंदा जन तेरा, राख ले साहिब प्रभ मेरा। तनासरी महला पंजवा, मोहे मस्कीन प्रभ नाम आधार। खटन कौ हर हर रोजगार, संचन कौ हर एक को नाम। हलत पलत ता कह आवे काम, नाम रते प्रभ रंग अपार। साध गावे गुण एक निरंकार। रहाओ साध की शोभा आत्मस्कीनी, संत वडाई हर जस चीनी। आनंद संतन कै भगत गोविंद, सुख संतन कै बिनसी चिंद। जै साध संतन होवै एकत्र, तै हर जस गावै नाद कवत। साध सभा मैं अंत विश्राम, उन संग सो पाए जिस मस्तक कराम। दोए कर जोड़ करी अरदास, चरण पखार कहां गुणतास। प्रभ दयाल कृपाल हजूर, नानक जीवै संतां तूर। तनासरी महला पंजवा, सो कत डरै जे खसम सुमारै। डर डर पचे मनमुख विचारे। रहाओ सिर उपर मात पिता गुरदेव, सफल मूर्त जाकी निर्मल सेव। एक निरंजन जाकी रास, मिल साध संगत होवत प्रगास। जीवन का दाता पूर्ण सब ठाए, कोट कलेश मिटे हर नाए। जन्म मरण सगला दुख नासै, गुरमुख जाके मन तन बासै। जिसनु आप लय लड़ लाए, दरगह मिलै तिसै ही जाए। सही भगत जे साचे पाणे, जमकाल ते पए निकाणे। साचा साहेब सच दरबार, कीमत कौन कह बिचार। घट घट अंतर सगले आधार, नानक जाचै संत रेणार। तनासरी महला पंजवा, एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, कर बाहर तेरा प्रवासा, तू जन कै है संग। कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने, नाम जपो हर रंग। जन को प्रभ अपने का तान, जो तू करै करा मैं स्वामी। सा मसलत परवान। रहाओ पत परमेश्वर गत नारायण, तन गोपाल गुण साखी। चरण शरण नानक दास हर हर, संती एह बिद जाती। तनासरी महला पंजवा, सगल मनोरथ प्रभ ते पाए। कंठ लाए गुर राखे,
संसार सागर में जलन ना दीने किन ना दुख तर पाके।

देखो पसार नैन सुनो साधु के बैन, प्राण पत चित राखो सगल है मरना रहाओ। चंदन चोवा रस भोग करता नेकै, बिखिया बेकार देखो सगल है फीके। एक गोविंद को नाम नीको कहत है साध जन, तन तन अपन थाप्यो हर जपना निमख जाप्यो। अर्थ दर्ब देखो कछ संग नाही चलना, जा को रे कर्म पल्ला तिन ओट गही संत पल्ला। ते नाही रे जम संतावै साधु की संगना, पायो रे परम निदान मिट्यो है अभिमान। एक निरंकार नानक मन लगना, तनासरी महला पंजवा कर सतवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर एक सिमर एक सिमर एक सिमर प्यारे, काल कलेस लोभ मोह महापौजर तारे। रहाओ सास सास निमख निमख दिन सरैन चितारे, साध संग जपन संग मन दान तारे। चरण कमल नमस्कार गुण गोबिंद विचारे, साजना की रेण नानक मंगल सुख सधारे। तनासरी महला पंजवा कर अठवा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सिमराओ सिमर सिमर सुख पावाओ, सास सास संभाले ए लोक पर लोक संग सहाई। जत कत मोहे रखवाले गुर का बचन बसै जी नाले, जल नहीं डूबै तस्कर नहीं लेवै, पाहे ना साकै जाले। रहाओ निरतन कौ तन अंदले कौ टेक, मात दूध जैसे बाले। सागर में बोइथ पायो हर नानक करी कृपा कृपाले। तनासरी महला पंजवा पै कृपाल दयाल गोविंदा, अमृत हृदय सिंचाई नव निध रिध सिधार लाग रही जन पाई। संतन का आनंद सगली जाई, गृह बार ठाकर भगतन का रव रया सर्व ठाई। रहाओ ता को कोई न पहुंचन हारा, जा कै अंग गुसाई। जम की त्रासन कै जिस सिमरत नानक नाम ते आई। तनासरी महला पंजवा दर्भवंत, दर्भ देह गर्भ है भूमवंत अभिमानी। राजा जन सगल राज हमरा त्यों हरजन टेक स्वामी। जे को अपनी उड़ सुमारे, जैसा बित तैसा हुए वरत, अपना बल नहीं हारे। रहाओ आन त्याग पय के आसर, सरन सरन कर आए। संतानुग्रह पय मन निर्मल, नानक हर गुण गाए। तनासरी महला पंजवा जा कौ हर रंग लागो इस जुग में, सो कहियत है सूरा। आत्म जिणै सगल वस तांकै, जा का सतगुर पूरा। ठाकुर गाइया आत्म रंग, सरणी पावन नाम ते आवन। सह समावन संग रहाओ, जन के चरण वसै मेरे ही अरे। संग पुनीता देही जन की तूर दे हो कृपा निध, नानक कै सुख एही। तनासरी महला पंजवा जतन करै मान खुडहै कावै, ओह अंतर जामी जानै। पाप करे कर मुकर पावै, पेख करै निर्बान। जानत दूर तुम्हें प्रभ नेर, उत ताकै उत ते उत पेखै, आवै लोभी फेर। रहाओ जब लग तुटै नाही मन परमा, तब लग मुक्त ना कोई। कहो नानक दयाल स्वामी संत भगत जन सोई। तनासरी महला पंजवा नाम गुर दी होए अपने, जाके मस्त करमा। नाम दृढ़ावे नाम जपावे, ताका जुग में तरमा।
ਜਨ ਕਉ ਨਾ ਵਡਾਈ ਸੋਭ, ਨਾਮੋ ਗਤ ਨਾਮੋ ਪਤ ਜਨ ਕੀ, ਮਾਨੈ ਜੋ ਜੋ ਹੋਗ ਰਹਾਓ। ਨਾਮ ਧਾਨੋ ਜਿਸ ਜਨ ਕੈ ਪਾਲੈ, ਸੇਈ ਪੂਰਾ ਸਹਾ, ਨਾਮ ਵਿਵਹਾਰਾ ਨਾਨਕ ਆਧਾਰਾ, ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲਾਹਾ, ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਨੇਤਰ ਪੁਨੀਤ ਪਏ ਦਰਸ ਭੇਖੇ, ਮਾਥੈ ਪਰੋ ਰਵਾਲ, ਰਸ ਰਸ ਗੁਣ ਗਾਵੋ ਠਾਕੁਰ ਕੇ, ਮੋਰੈ ਹਿਰਦੈ ਬਸੋ ਗੋਪਾਲ, ਤੁਮ ਤਉ ਰਾਖਨ ਹਾਰ ਦਿਆਲ, ਸੁੰਦਰ ਸੁਗੜ ਬੇਅੰਤ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਭ, ਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਕਿਰਪਾਲ ਰਹਾਓ। ਮਹਾ ਆਨੰਦ ਮੰਗਲ ਰੂਪ ਤੁਮਰੇ, ਬਚਨ ਉਪਰ ਸਾਲ, ਹਿਰਦੈ ਚਰਨ ਸਬਦ ਸਤਿਗੁਰ ਕੋ, ਨਾਨਕ ਬਾਂਧਿਓ ਪਾਲ, ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਖਿਲਾਵੈ ਭੋਜਨ, ਆਪਣੀ ਉਕਤ ਖਿਲਾਵੈ ਸਰਬ ਸੁਖ, ਭੋਗ ਰਸ ਦੇਵੈ ਮਨ ਹੀ ਨਾਲ ਸਮਾਵੈ, ਹਮਰੇ ਪਿਤਾ ਗੋਪਾਲ ਦਿਆਲ, ਜਿਉਂ ਰਾਖੈ ਮਹਿਤਾਰੀ ਬਾਰਕ ਕਉ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭਪਾਲ ਰਹਾਓ। ਮੀਤ ਸਾਜਨ ਸਰਬ ਗੁਣ ਨਾਇਕ, ਸਦਾ ਸਲਾਮਤ ਦੇਵਾ, ਈਤ ਊਤ ਜਤ ਕਤ ਤਤ ਤੁਮ ਹੀ ਮਿਲੈ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੇਵਾ, ਧਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ।

मंत्र राम नाम हितकारे सुख सहजानंद मंगल सहित पवनित पार उतारे रहाओ। तन सो थान तन ओए पवना जा मैं संत बसारे जन नानकी सरदा पूरो ठाकर भगत तेरे नमस्कारे। तनासरी महला पंजवां छडाए लियो महाबली ते अपने चरण परात। एक नाम दियो मन मंता बिनसना कथू जात सतगुर पूरे कीनी दात। हर हर नाम दियो कीर्तन कहो पही हमारी गात। रहाओ अंगीकार कियो प्रभ अपने भगतन की राखी पात। नानक चरण गहे प्रभ अपने सुख पायो दिन रात। तनासरी महला पंजवां पर हरना लोभ झूठ निंद इव ही करत गुदारी। मृग तृष्णा आस मिथ्या मीठी ए टेक मन सादारी। सागत किया वरदा जाय बिरथारी जैसे कागद के पार मूसा टूक गवावत। काम नहीं गावारी रहाओ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी ए बंधन छुटकारी। बूढ़त अंध नानक प्रभ काढ़त साजना संगारी। तनासरी महला पंजवां सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना शीतल तन मन छाती। रूप रंग सुख तन जी का पार ब्रह्म रह जाती। रसना राम रसायन माती रंग रंगी राम अपने कै चरण कमल निध थाती। रहाओ

नानक दास मुख ते जो बोले इहां उहां सच होवे। तनासरी महला पंजवां औखी कड़ी ना देखन देई अपना बिरद संभाले हाथ दे राखे अपने को सास सास प्रतपाले। प्रभ स्यों लाग रहे हो मेरा चीत आद्यंत प्रभ सदा सहाई तन हमारा मीत रहाओ। मन बिलास पए साहेब के अचरज देख बढ़ाई हर सिमर सिमर आनंद कर नानक प्रभ पूर्ण पैज रखाई। तनासरी महला पंजवा जिसको बिसरे प्राण पत दाता सोई गनो अभागा चरण कमल जाका मन रंगे हो। अमै सरोवर पागा तेरा जन राम नाम रंग जागा आलस छीज गया सब तंते प्रीतम सिव मन लागा रहाओ। जय जय पेखो तै नारायण सगल कटा मैं तागा नाम उदक पीवत जन नानक त्यागे सब अनदागा। तनासरी महला पंजवा जन के पूर्ण होए काम कली काल महा बिख्या मह लज्जा राखी राम रहाओ। सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना निकट ना आवै जाम मुक्त बैकुंठ साध की संगत जन पायो हर का धाम चरण कमल हर जन की थाती कोट सुख विश्राम। गोबिंद मोदर सिमर उदन रैन नानक सत कुरबान।

स्वस्थ व्यवस्था हर की सेवा मद अंत प्रभ जापण नानक रंग लगा परमेसर बाहुड़ जन्म ना छापण तनासरी महला पंजवा मांगो राम ते सब थोक मानख कहो जाचत शरम पाई है प्रभ कै सिमरन मोख रहाओ कोखे मुनजन सिमरत पुराना वेद पुकारै कोख कृपा सिंध सेव सच पाई है दोवै सोहेले लोक आन आचार व्यवहार है जेते बिन हर सिमरन फोक नानक जन्म मरण पह काटे मिल साधु बिन से सोक तनासरी महला पंजवा तृष्णा।

आओ वड़े पाग पेटे गुरदेवा कोट पराध मिटे हर सेवा चरण कमल जाका मन रापै सोग अगन तिस जन ना ब्यापै सागर तरिया साधु संगे निरपव नाम जपो हर रंगे पार तन दोख किश पाप ना फेड़े जम जंदार ना आवै नेड़े त्रिसना यगन प्रभ आप बुझाई नानक उदरे प्रभ सरनाई तनासरी महला पंजवा त्रिपत भई सच भोजन खाया मन तन रसना नाम ते आया जीवना हर जीवना जीवन हर जप साध संग रहाओ अनक प्रकारी वस्त्र ओढ़ाए अंधन कीर्तन हर गुण गाए हस्ती रथ अस असवारी हर का मार गुरदय निहारी मन तन अंतर चरण ते आया हर सुख निदान नानक दास पाया तनासरी महला पंजवा गुर के चरण जी का निस्तारा समुद्र सागर जन

जत सत संजम हृदय समाए, चौथे पद कहो जे मन पति आए। साचे निर्मल मैल न लागै, गुर कै शब्द भरम पौ भागै। सूरत मूर्त आदि अनूप, नानक जाचै साच स्वरूप। तनासरी महला पहला, सहज मिलै मिलिया प्रवान। नात स्मरण न आवन जान, ठाकुर मैं दा दास मैं सोए। जै देखा तै अवर न कोए, गुरमुख भगत सहज कर पाईऐ। बिन गुर भेटे मरियाई जाइय रहाओ। सो गुर करो जे साज दृढ़ावै, अकथ कथावै शब्द मिलावै। हर के लोग अवर नहीं कारा, साचो ठाकर साच प्यारा। तन मैं मनुआ मन मैं साचा, सो साचा मिल साचे राचा। सेवक प्रभ कै लागै पाए, सतगुर पूरा मिलै मिलाए। आप दिखावै आपे देखै, हठ ना पतीजै ना बहु पेखै। घड़ पांडे जन अमृत पाया, प्रेम भगत ब्रह्मन पति आया। पड़ पड़ भूलै चोटा खाहे, बहुत सियाण पयावै जाहे। नाम जपै पौ भोजन खाए, गुरमुख सेवक रहे समाए।

हमरा मन तानो राम को नामा, राम सिमरो राम सिमर पाई, राम नाम सिमरन बिन बूढ़ते अदकाई रहाओ। बनता सुत देह ग्रह संपत सुखदाई, इनमें कछ नाहे तेरो काल अवधियाई। अजा माल गज गन का पतत कर्म कीने, तेउ उत्तर पार परे राम नाम लीने। सूकर कूकर जोन भ्रमे तउ लाज ना आई, राम नाम छाड़ अमृत काहे बिख खाई। तज परम कर्म बिदन खेद राम नाम लेही, गुरप्रसाद जन कबीर राम कर स्नेही। तनासरी बाणी भगत नाम देव जी की एक ओंकार, सतगुर प्रसाद गहरी करके नीम खुदाई। ऊपर मंड पछाए मारकंडे ते को अधकाई, जिन तरन तर मुंड बलाए। हमरो

दुर्योधन से भाई, बारह जो जन शत्र चल था, देही गिरज न खाई, सर्व सो इनकी लंका होती, रावण से अधकाई, कहां पयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई, दुर्वासा सो करत ठगौरी, जादवे फल पाए, कृपा करी जने अपने उपर, नाम देव हर गुण गाए, दस बैरागन मोहे बस कीनी, पंचों का मिट नावो, सत्तर दोए भरे अमृतसर, बेको मार कढ़ावो, पाछे बहुर ना आमन पावो, अमृत बाणी करते उचराओ, आत्म को समझावो रहाओ, बजर कुठार मोहे है शीना, कर मिन्नत लग पावो, संतन के हम उल्टे सेवक, भगतन ते डर पावो, यह संसार ते तभी छूटो, जो माया न लिपटावो, माया नाम गर्भ जोन का, तेहता दर्शन पावो, इत कर भगत करे जो जानो, तिन पौ सगल चुकाई है, कहत नाम देओ बाहर क्या भरमो, ए संजम हर पाई है, मारवाड़ जैसे नीर बालहा, बेल बालहा कर हला, ज्यो कुरंक निसनाद बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, तेरा नाम रूडो रूप रूडो, आतरंग रूडो मेरो रामैया रहाओ, ज्यो तरणी को इंद्र बालहा, कुसुम बास जैसे पावरला, ज्यो कोकल को अंब बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, चकवी कौ जैसे सूर बालहा, मान सरोवर हंसला, ज्यों तरणी कौ कंत बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, बारक कौ जैसे खीर बालहा, चात्रक मुख जैसे जल तरा, मछली कौ जैसे नीर बालहा, त्यों मेरा मन रामैया, साधक सिद्ध सगल मुन चाहे, बिरले काहू डिठला, सगल पवन तेरो नाम बालहा, त्यों नामे मन बीठला, पहल पुरिये पुंडरक वना, ताचे हंसा सगले जना, कृष्णा ते जानाऊ हर हर नाचंती नाचना, पहल पुरसा बिरा, अथोन पुरसा दमरा, असगा अस उसगा, हर का बागरा, नाचे पिंदी मैं सागरा रहा।

पिंदी उबकले संसारा भ्रम भ्रम आए तुम चे द्वारा तू कुन रे मैं जी नामा हो जी आला ते निवारणा जमकारणा पतत पावन माधो बिरद तेरा तन ते वह मुन जनो जिन त्यायो हर प्रभ मेरा।

नाम तेरो तागा नाम फूल माला, पार अठारे सगल जूठारे, तेरो किया तुझे क्या यार पाओ, नाम तेरा तू ही चवर टोलारे। दस अठा अठ सठे चारे खानी, यह वर्तन है सगल संसारे। कह रविदास नाम तेरो आरती, सत नाम है हर भोग तुहारे। तनासरी बाणी भगता की, त्रिलोचन एक ओंकार सतगुर प्रसाद। नारायण निंद सकाए भूली गवारी, दो कृस्त सुकृत थारो कर मरी रहाओ। संकरा मस्तक बस्ता सुरसरी इसनान रे, कुल जन मदे मिलियो सारंग पान रे। कर्म कर कलंक मफीट सरी, बिसव का दीपक स्वामी, ताचे रे स्वार्थी पंखी राय गरड़ ताचे बादवा। कर्म कर अरण पिंगलारी, अनक पातक हरता त्रिपवन नाथरी। तीर्थ तीर्थ भ्रमता लह ना पार री, कर्म कर कपाल मफीट सरी। अमृत ससी तेन लक्ष्मी, कल्प तारो शिखर सुनागर नदी चे नाथं। कर्म कर खार मफीट सरी, दादी ले लंका गढ़, ओ पाड़ी ले रावण बाण। साल बिसाल आण तोखी ले हरी, कर्म कर कशौटी मफीट सरी। पूर्व लो कृत कर्म न मिटैरी कर गेहन, ताचे मोहे जापी आले राम चे रामं। बदत त्रिलोचन राम जी श्री सैन, धूप दीप कृत साज आरती, वारने जाओ कमलापति।

जो ब्राह्मण दे सोई पिंड जो खोजे सो पावे पीपा प्रणवे परम तत् है सतगुरु होए लिखावे तन्ना गोपाल तेरा यारता जो जन तुमरी भगत करनते तिनके काज सवारता रहाओ दाल सीधा मांगो कियो हमरा खुशी करे नित जियो परियां शादन निकाया नाज मंगो सत सीका गौ पैस मंगो लावेरी एक ताजन तुरी चंगेरी कर की गीहन चंगी जन तन्ना लेवै मंगी। जय श्री महला चौथा कर पहला चौपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद मेरा ही अरै रत नाम हर बसिया गुरहा तरियो मेरा माथा जन्म जन्म के किल बिख दुख उतरे गुरु नाम दियो रिन लाथा मेरे मन भज राम नाम सब अर्था गुरपुरे हर नाम दृढ़ाया बिना मैं जीवन बिरथा रहाओ बिन गुर मूड पए है मन मुख ते मोह माया नित फाथा तिन साधु चरण ना सेवे कबहू तिन सब जन्म अकाथा जिन साधु चरण साध पग सेवे तिन सफल्यो जन्म सनाथा मोको कीजै दास दास दासन को हर दया तार जगन्नाथा हम अंधले

माया पुआंग बिखचाखा। हर हर साध मेलो जननी के, हर साधु शरण हम राखा। हर अंगीकार करो प्रभु स्वामी, हम परे भाग तुम पाखा। जिहवा क्या गुण आख वखाण है, तुम वड्या गुंगड पुरखा। जन नानक हर कृपा तारी, पाखान डुबत हर राखा। जय श्री महला चौथा, हम बार कछु न जाने गत मित, तेरे मूर्ख मुगदे आना। हर कृपा तार दीजै मति उत्तम, कर लीजै मुग्ध सियाना। मेरा मन आलसिया गुलाना, हर हर आन मिलायो गुर साधु। मिर साधु कपट खुलाना, रहाओ गुर खिन खिन प्रीत लगावो। मेरा ही अरै मेरे प्रीतम नाम पराना, बिन नावै मर जाइए मेरे ठाकर। जो अमली अमल लुबाना, जिन मन प्रीत लगी हर केरी। तिन तुर भाग पुराना, तिन हम चरण सिरे वै खिन खिन। जन हर मीठ लगाना, हर हर कृपा धारी मेरा ठाकर। जन बिछड़िया चरी मिलाना, धन धन सतगुरु जिन नाम दृढ़ाया। जन नानक तिस कुरबाना, जैत सरी महला चौथा। सतगुर साजन पुरख वड पाया, हर रसक रसक फल लागबा। माया पुयंग ग्रस्यो है प्राणी, गुरबचनी बिस हर काढ़बा। मेरा मन राम नाम रस लागबा, हर किए पतत पवित्र। मिल साध गुरु हर नामे, हर चाखबा। रहाओ तन तन वड भाग, मिलो गुर साधु। मिल साधु ले उन मन लागबा। तृष्णा यगन बुझी सांत पाई, हर निर्मल निर्मल गुण गायबा। तिनके पाखीन तुर पाए, जिन सतगुर दर्शना पाए बा। ते दूजे पाए पवे गर्भ जोनी, सब बिरथा जन्म तिन जाए बा। हर देहो बिमल मत गुरसाद पग सेवै, हम हर मीठ लगाए बा। जन नानक रेण साध पग मांगे, हर हुए दयाल दिवाए बा। जैत सरी महला चौथा, जिन हर हृदय नाम ना बसियो। तिन मात की जय हर बांजा, तिन सुनी दे फिर बिन नामै। ओए खप खप मुए करांजा, मेरे मन जप राम नाम हर माजा। हर हर कृपाल कृपा प्रभु धारी, गुर ज्ञान दियो मन समझा। रहाओ हर कीर्त कलयुग पादि उत्तम, हर पाइय सतगुर माजा। हौ बलिहारी सतगुर अपने, जिन गुप्त नाम परगाजा। दर्शन साध मिलियो वडभागी, सब किल विख गए गवाजा। सतगुर साहो पाया वरदाना, हर किए बहु गुण सांझा। जिन कौ कृपा करी जग जीवन, हर उर तारियो मन माजा। धर्म राय दर कागद फारे, जन नानक लेखा समझा। जय श्री महला चौथा, सतसंगत साध पाई वडभागी। मन चल तो भयो अरूड़ा, अनहत धुन वाजै नित वाजे। हर अमृत धार रस लीला, मेरे मन जप राम नाम हर रूड़ा। मेरा मंत्र प्रीत लगाई सतगुरु, हर मिलियो लाए च पीड़ा। रहाओ साकत बंद भय है माया, बिख संचय लाए ज कीड़ा। हर कै अर्थ खर्च न साकै, जमकाल सह सिर पीड़ा। जिन हर अर्थ शरीर लगाया, गुर साधु बहुसरदा लाए मुख धूड़ा। हलत पलत हर शोभा पावै, हर रंग लगा मन गूड़ा। हर हर मेल मेल जन साधु, हम साजना का कीड़ा। जन नानक प्रीत लगी पग साध, गुरमिल साधु पाखान हरियो मन मूड़ा। जय श्री महला चौथा, कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर सिमरो अगमा पारा, जिस सिमर दुख मिटे हमारा। हर हर सतगुर पुरख मिलावो, गुर मिलिया सुख होई राम। हर गुण गावो मीत हमारे, हर हर नाम रखो उर तारे। हर हर अमृत बचन सुनावो, गुर मिलिया प्रगट होई राम। मधुसूदन हर माधो

हर हर नाम सदा सुखदाता, हर कै रंग मेरा मन राता। हर हर महापुरख गुर मिलो, गुरु नानक नाम सुख होई राम। जय श्री महला चौथा, हर हर हर हर नाम जपाहा, गुरमुख नाम सदा लैलाहा। हर हर हर हर भगत दृढ़ावो, हर हर नाम ओ महाराम। हर हर नाम दयाल त्याहा, हर कै रंग सदा गुण गाहा। हर हर हर जस घूमर पावो, मिल सतसंग ओ महाराम। आओ सखी हर मेल मिलाहा, सुन हर कथा नाम लैलाहा। हर हर कृपा तार गुर मिलो, गुर मिलिया हर ओ महाराम। कर कीर्त जस अगमाथा, खिन खिन राम नाम गावा। मोको तार कृपा मिलिया गुरदाते, हर नानक भगत्यो महाराम। जय श्री महला चौथा, रस रस राम रसाल सलाहा, मन राम नाम पीना लैलाहा। खिन खिन भगत करै दिन राती, गुरमत भगत्यो महाराम। हर हर गुण गोविंद जपाहा, मन तन जीत शब्द लैलाहा। गुरमत पंच दूत वासे आवै, मन तन हरिओ महाराम। नाम रतन हर नाम जपाहा, हर गुण गाय सदा लैलाहा। दीन दयाल कृपा करमा दो, हर हर नाम ओ महाराम। जप जगदीश जपो मन महा, हर हर जग ना जगलाहा। तन तन वड्डे ठाकर प्रभ मेरे, जप नानक भगत्यो महाराम। जय श्री महला चौथा, आपे जोगी जुगत जुगाहा। आपे निरपौ ताड़ी लाहा, आपे ही आपया वरतै। आपे नाम्यो महाराम, आपे दीप लोभ दीपाहा। आपे सतगुर समुंद मथाहा, आपे मथ मथ तत कढ़ाए। जप नाम रतनयो महा।

बेसुमार बेअंत बढ़ दाता मने गही रहो पेख प्रभु को जो चाहो सोई सोई पावो आसा मनसा पूरो जब प्रभु को गुर प्रसाद नानक मन वसया दुख न कबू चूरो बुझ प्रभु को जैत सरी महला पंजवा लोड़ींदड़ा साजन मेरा कर कर मंगल गावो नीके कट कट तिसै बसेरा रहाओ सुख अराधन दुख अराधन बिसरै ना काहू बेरा नाम जपत कोट सूर्य उजारा बिनसै परम्या देरा थान थनंतर सबनी जाई जो दिसै सो तेरा संत संग पावै जो नानक तिस बहुर ना हुई है फेरा जैत सरी महला पंजवा कर चौथा दो पदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद अब मैं सुख पायो गुर आग तजी सियानप चिंत विसारी अहं छोड़ियो है त्याग रहाओ जो देखो तो सगल मोहे मोहियो तो शरण परयो गुर भाग कर कृपा टहल हर लायो तो जम छोड़ी मोरी लाग तरयो सागर पावक को जो संत पेटे वड भाग जन नानक सर्व सुख पाए मोरो हर चरणी चित लाग जैत सरी महला पंजवा मन में सतगुर ध्यान तरा दृढ़ो ज्ञान मंत्र हर नामा प्रभ जियो मया करा रहाओ काल जाल।

नाव रूप पयो साध संग पवनित पार परा अप्यो पियो गत थियो परमा कहो नानक अजर जरा। जय श्री महला पंजवा जा कहो पय गोविंद सहाई सुख सहज आनंद सकल स्यों वा कहो ब्याध ना काई रहाओ। दिसे सब संग रहे अलेपा नह व्यापै उन्माई एक रंग तत के बेते सदगुर ते बुद्ध पाई। दया मया कृपा ठाकर की सही संत सुभाई। तिनके संग नानक निस्तरी है जिन रस रस हर गुण गाई। जय श्री महला पंजवा गोविंद जीवन प्राण धन रूप अज्ञान मोह मगन महाप्राणी अंधियारे मैं दीप रहाओ। सफल दर्शन तुमरा प्रभ प्रीतम चरण कमलिया नूप अनक बार करो तह बंधन मने चिरावो धूप। हार पर्यो तुमरे प्रभ द्वारे दृढ़ कर गही तुम्हारी लूक। काढ़ लिहो नानक अपने को संसार पाव के कूप। जय श्री महला पंजवा कोई जन हर स्यों देवे जोर चरण गहों बकों शुभ रसना दीजे प्राणिया कोर रहाओ। मन तन निर्मल करत क्यारो हर सिंचे सुधा संजोर या रस मैं मगन होत कृपा ते महा बिख्या ते तोर। आयो शरण दीन दुख पंजन चितवों तुमरी ओर अपै पद दान सिमरन स्वामी को प्रभ नानक बंधन शोर। जय श्री महला पंजवा चात्रक चितवत बरसत में है कृपा सिंध करना प्रभ तारो हर प्रेम भगत को नेह रहाओ। अनक सुख चकवी नहीं चाहत अनद पूर्ण पेख दे हैं आने पावना जीवत मीना बिन जल मरनाते हैं। हाम्या नाथ नाथ हर सरणी अपनी कृपा करे हैं चरण कमल नानक आराधै तिस बिन आन ना के हैं। जय श्री महला पंजवा मन तन बस रहे मेरे प्राण कर कृपा साधु संग पेटे पूर्ण पुरख सुजान रहाओ। प्रेम ठकौरी जिन कौ पाई तिन रस पियो पारी ताकि कीमत कहन ना जाई कुदरत कवन हमारी। लाए लय लड़ दास जन अपने उधरे उधर नहारे प्रभ सिमर सिमर सिमर सुख पायो नानक शरण द्वारे। जय श्री महला पंजवा आए अनक जन्म परम सरणी उधर देह अंध कूपते लावो अपनी चरणी रहाओ। ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना ना हिन निर्मल करनी साध संगत कै अंचल लावो बिखम नदी जाए तरनी। सुख संपत माया रस मीठे ए नहीं मन मैं तरनी हर दर्शन तृप्त नानक दास पावत हर नाम रंग या परनी। जय श्री महला पंजवा हर जन सिमरो हृदय राम हर जन को अपदा निकट ना आवै पूर्ण दास के काम रहाओ। कोट बिघन बिनसे हर सेवा निचल गोविंद ताम भगवंत भगत को पौ किश नाही आदर देवत जाम। तज गोपाल आन जो करनी सोई सोई बिनसत खाम चरण कमल हृदय गहो नानक सुख समूह विश्राम। जय श्री महला नावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पूलेओ मन माया उरजायो जो जो कर्म कियो लालच लग तेह तेह आप बंधायो रहाओ। समझ ना परी बिखै रस रचियो जस हर को बिसरायो संग स्वामी सो जान्यो नाहन बन खोजन कौतायो।
रतन राम कढ़ी के पीतर ता को ज्ञान ना पायो, जन नानक भगवंत भजन बिन बिरथा जन्म गवायो। जय श्री महला नावा, हर जू राख लियो पत मेरी, जम को त्रास पयो उरे।

श्री राम रंगिया पार पूर्ण नै निमख मन मैं उठिया बिनवंत नानक कोट कागर बिन सबार ना झूठिया चरण कमल शरण आए नानक आया दुत्तर पै संसार प्रभ आप तराया मिल साध संगे भजे श्री तार कर अंग प्रभ जी तारिया हर मान लिए नाम दिए अवर कश ना बिचारिया गुण निधान अपार ठाकर मन लोड़ींदा पाया बिनवंत नानक सदा तृप्ते हर नाम भोजन खाया। जैत श्री महला पंजवा वार श्लोका नाल एको अंकार सतगुर प्रसाद सलोक आद पूर्ण मध पूर्ण अंत पूर्ण परमेश्वर सिमरंत संत सर्वत्र रमण नानक अगनासन जगदीश्वर पेखन सुनन सुनावन मन में दृढ़िय साच पूर रहो सर्वत्र मैं नानक हर रंगराज पौड़ी हर एक निरंजन गाई है सब अंतर सोई करण कारण समर्थ प्रभ जो करे सो होई खिन मैं थाप्यो थापदा तिस बिन नहीं कोई खंड ब्रह्मंड पाताल दीप रविया सब लोई जिस आप बुझाए सो बुझसी निर्मल जन सोई सलोक और चंत जी रचना मात गर्भ अस्थापन सा सा सिमरंत नानक महायग्न ना बिनासन मुख तले पैर उपरे वसंदो कहुथड़े थाए नानक सो तनी क्यों विसारियो उदरै जिस दै नाए पौड़ी रगत बिंद करने मिया अग्न उदर मजहार उर्द मुख कुचीर बिकल नरक घोर गुबार हर सिमरत तू ना जलै मन तन उर तार बिखम थानो जिन रखिया तिस तिल ना विसार प्रभ बिसरत सुख कदे नाहे जासै जन्म हार सलोक मन इच्छा दान करण सर्वत्र आसा पूर्ण खंडन काल कलेसै प्रभ सिमर नानक ने दूरन हब रंग माण जिस संग तै स्यों लाइय ने हो सो सहो बिंदना विसरो नानक जिन सुंदर रचिया देहो पौड़ी जियो प्राण तन तन दिया दीने रस भोग गृह मंदिर रथ अस दिए रचपले संजोग सुत बनता साजन सेवक दिए प्रभ देवन जोग हर सिमरतो तन मन हरिया लै जाए विजोग साध संग हर गुण रमो बिनसे सब रोग सलोक कुटंब जतन करण माया अनेक युद्ध में हर भगत पावहीण नानक प्रभ बिसरत ते प्रेत तै टुटड़िया सा प्रीत जो लाई बेअन स्यो नानक सच्ची रीत साई से तीरत आ पौड़ी जिस बिसरत तन पसम होए कहते सब प्रेत खिनग्रे मैं बिसना देवही जिन स्यो सोई हेत कर अनर्थ दर्ब संचया सो कार्य केत जैसा बीजै सो लुणै कर मेहो खेत अकृत कणा हर विसरिया जोनी परमेत सलोक कोटदान इस नानंग अनक सो दिन पवित्र तै उचरंत नानक हर हर रसना सर्व पाप विमुचते ईंदन की तो मुकणा पोरी दित्ती मुपाहे मन वसंदड़ो सच सहो नानक हबो डुखड़े उलाहे पौड़ी कोट अगा सब नाश होहे सिमरत हर नाओ मन चिंदे फल पाई है हर के गुण गाओ
जन मरण पै कटी है।

नाद कुरंकै बेदया सनमुख उठतावै पवर लोभी कुसुम बासका मिलिया बंधावै त्यों संत जना हर प्रीत है देख दर्श अगावै सलोक चितवंत चरण कमलं साह सास आराधन नै बिसरंत नाम अचत नानक आस पूर्ण परमेश्वर है शीतला मन मजाहे पलक ना थी वै बाहरा नानक आसड़ी निबाहे सदा पेखंदो सच तनी पौड़ी आसावंती आस गोसाई पूरी है मिल गोपाल गोबिंद न कबहू झूरी है देहो दर्श मन चाओ ले जाए विसूरी है होए पवित्र शरीर चरना धूरी है पार ब्रह्म गुरदेव सदा हजूरी है सलोक रसना उचरंत नामं श्रवणं सुनंत शब्द अमृत है नानक तन सद बलिहारं जिन्ना ध्यान पार ब्रह्मण है हब कूड़ावे काम एक सुसाई बाहरे नानक से ही तन जिन्ना पिरहड़ी सच स्यों पौड़ी सद बलिहारी तिन्ना जे सुनते हर कथा पूरे ते प्रधान निवावै प्रभ मथा हर जस लिखै बेअंत सोहै से हथा चरण पुनीत पवित्र चालै प्रपथा संता संग उदार सगला दुख लथा सलोक भावी उदूत करण हर रमण संयोग पूर्ण गोपाल दर्श भेटं सफल नानक सो मुहूर्त कीम ना सका पाए सुख मिती हूं बाहरे नानक सा वेलड़ी परवान जित मिलंदड़ो मां पिरी पौड़ी सा वेला कहो कौन है जित प्रभ को पाई सो मूर्त भला संयोग है जित मिलै गुसाई आठ पैर हर त्याय कै मन इच्छ पुजाई वड्डे भाग सतसंग होए निम लागा पाई मन दर्शन की प्यास है नानक बल जाई सलोक पतत पुनीत गोबिंद सर्व दुख निवारण सरण सूर भगवान जपंत नानक हर हर हरे छड्यो हब आप लगड़ो चरना पास नठड़ो दुख ताप नानक प्रापे खंदया पौड़ी मेल लहो दयाल टह पै द्वारे रख ले वो दीन दयाल परमत बवहारिया भगत वछल तेरा बिरद हर पत ते उधारिया तुझ बिन नाही कोए बिना मोए सारिया कर गै लेहो दयाल सागर संसारिया सलोक संत उदरण दयालं आसरंग गोपाल कीर्तन निर्मलंग संत संगेन ओट नानक परमेश्वर है चंदन चंदना सरद रुत मूल न मिटई काम शीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम पौड़ी चरण कमल की ओट उदरे सगल जन सुन प्रताप गोविंद निरपो पय मन तोट न आवै मूल संचया नाम तन संत जना सो संग पाइय वड्डे पुन आठ पहर हर त्याए हर जस नित सुन सलोक दया करणं दुख हरणं उचरणं नाम कीर्तन दयाल पुरख भगवान नानक लिप्त नाम आया पाहे बलंदड़ी बुझ गई रखंदड़ो प्रभ आप जिन उपाई मेदनी नानक सो प्रभ जाप पौड़ी जा प्रभ पहे दया

राग बैराड़ी महला चौथा कर पहला दुपदे एको ओंकार सतगुर प्रसाद सुन माने कथ कथा हर नाम रिद्ध बुद्ध सिद्ध सुख पावै पज गुरमत हर राम राम रहाओ नाना ख्यान पुराण जसी उत्तम खट दर्शन गावै राम शंकर करोल तेतीस ते आयो नहीं जान्यो हर मरमाम सुर नर गण गंधर्व जस गावै सब गावत जेत्यो पाम नानक कृपा करी हर जिन कौ ते संत भले हर राम बैराड़ी महला चौथा मन मिल संत जना जस गायो हर हर रतन रतन हर नीको गुर सतगुर दान देवायो रहाओ तिस जन कौ मन तन सब देवो जिन हर हर नाम सुनायो तन माया संपै तिस देवो जिन हर मीत मिलायो खिन किंचित कृपा करी जगदीसर तब हर हर हर जस त्यायो जन नानक कौ हर भेटे स्वामी दुख हम मैं रोग गवायो बैराड़ी महला चौथा हर जन राम नाम गुण गावै जे कोई निंद करे हर जन की अपना गुण ना गवावै रहाओ जो किश करे सो आपे स्वामी हर आपे कार कमावै हर आपे ही मत देवै स्वामी हर आपे बोल बुलावै हर आपे पंच तत् विस्थारा वि धातु पंच आप पावै जन नानक सतगुर मेले आपे हर आपे चगर चुकावै बैराड़ी महला चौथा जप मन राम नाम निस्तारा कोट कुटंतर के पाप सब खोवै हर भवजल पार उतारा रहाओ काया नगर बस्त हर स्वामी हर निरपौ निर्वैर निरंकारा हर निकट बस्त कश नजर ना आवै हर लादा गुर विचारा हर आपे साहो सराफ रतना हीरा हर आप की आपा सारा नानक जिस कृपा करे सो हर नाम विहाजे सो साहो सच्चा वणजारा बैराड़ी महला चौथा जप मानो हर निरंजन निरंकारा सदा सदा हर सत्याई है सुखदाता जा का अंत ना पारा वारा रहाओ अगन कुंट मैं उर्द लिव लागा हर रख है उदर मजारा सो वैसा हर सेवो मेरे मानो हर अंत छिडावन हारा जा कै हृदय बसिया मेरा हर हर तिस जन कौ करहो नमस्कारा हर कृपा ते पाई है हर जप नानक नाम आधारा बैराड़ी महला चौथा जप मन हर हर नाम नित त्याए जो इच्छा सोई फल पावै फिर दुख न लागे आए रहाओ सो जप सो तप सा व्रत पूजा जित हर स्यों प्रीत लगाए बिन हर प्रीत होर प्रीत सब झूठी एक खिन मैं बिसर सब जाए तू बेअंत सर्व कल पूरा किश कीमत कही ना जाए नानक शरण तुम्हारी हर जियो पावै तवै छड़ाए राग बैराड़ी महला पंजवां कर पहला एको ओंकार सतगुर प्रसाद संत जना मिल हर जस गायो कोट जन्म के दुख गवायो रहाओ जो चाहत सोई मन पायो कर कृपा हर नाम देवायो सर्व सुख हर नाम वडाई गुर प्रसाद नानक मत पाई राग तलंग महला पहला कर पहला एको ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सहभंग गुर प्रसाद यक अर्ज गुप्तम पेस्तो दर गोस कुन कर

दूध कर्म फुन सुरत समायण होए निराश जमावो जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा रहाओ। एहो मनी टी हाथ करो फोन नेत्रो नींद ना आवे रसना नाम जपो ता मथिया इन बदे अमृत पावो। मन संपटो जित सत सरन आवन पावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहेब रवत रह। कहिंदे कहे कहे कह जावे तुम सरे अवर ना कोई भगतहीन नानक जन जंपै।

अंतरवसै ना बाहर जाए, अमृत छोट काहे बिख खाए। ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे, होवो चक्र साचे केरे रहाओ। ज्ञान ध्यान सब कोई रवै, बंधन बांधया सब जग पवै। सेवा करे सो चाकर होए, जल थल महियल रव रहया सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए, प्रणवत नानक तारे सोए। सुही महला पहला, कर सेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उज्जल कहा चिलकना, कोटम कर लड़ी मस। तोतिया झूठ ना उतरै, जे सो तो तिस। सज्जन सेई नाल मैं, चल दिया नाल चलन। जिथे लेखा मंगिया, तिथे खड़े दिसन रहाओ। कोठे मंडप माड़िया, पासो चितवियां हां। टठियां कम ना आवनी, विचों सखणियां हां। बग्गा बग्गे कपड़े, तीर्थ मंज वसन। कुटकुट जिया खावणे, बग्गे ना कई अन्न। सिमर रुख शरीर मैं जन देख पुलन। से फल कम ना आवनी, ते गुण मैं तन हन। अंदले पार उठाया, डूगर वाट बहुत। अखी लोड़ी ना लहां, हौ चढ़ लंगा कित। चाकरियां चंगियाईयां, अवर सियाण पकित। नानक नाम संभाल तू, बद्दा छुट्टै जित। सुही महला पहला, जप तप का बंद बेड़ला। जित लंघै वहेला, ना सरवर ना उछलै। ऐसा पंथ सुहेला, तेरा एको नाम जीठड़ा। रत्ता मेरा चोला, साद रंग ढोला रहाओ। साजन चले प्यारिया, क्यों मेला होई। जे गुण हो वै गंठड़ी है, मेलेगा सोई। मिलिया होए ना विछड़ै, जे मिलिया होई। आवा गौण निवारिया, है साचा सोई। हम मैं मार निवारिया, सीता है चोला। गुरबचनी फल पाया, सह के अमृत बोला। नानक कह सहेलियो, सौ खरा प्यारा। हम सह केरियां दासियां, साचा खसम हमारा। सुही महला पहला, जिन कौ पांडै पाओ, तिना सवार सी। सुखी करै पसाओ, दुख विसार सी। सहसा मूले नाहे, सर पर तार सी। इतना मिलिया गुरे आए, जिन कौ लिखिया। अमृत हर का नाउ, देवै दिखिया। चल ऐ सतगुर पाए, पवै ना पिखिया। जां को महला हजूर, दूजे नवै किस। दर दरवाणी नाहे, मूले पुछ तिस। छुट्टै ता कै बोल, साहिब नदर जिस। कल्ले आने आप, जिस नाही दूजा मतै कोए। ताहे उसारे साज, जाने सब सोए। नाओ नानक बख्शीस, नदरी कर्म होए। सूही महला पहला, पांडा हच्छा सोए। ज्योतिष भाव सी, पांडा आत्मलीन। तोता हच्छा ना होए सी। गुरु द्वारे होए, सोजी पाए सी। ये द्वारे तोए, हच्छा होए सी। मैले हच्छे का विचार, आप वरताए सी। मत को जाने जाए, अगै पाए सी। जेहे कर्म कमाए, तेहा होए सी। अमृत हर का नाउ, आप वरताए सी। चलिया पत सिओ जन्म सवार, वाजा वाए सी। मानस क्या विचारा, त्यो लोक सुनाए सी। नानक आपने हाल, सब कुलतार सी। सुही महला पहला, जोगी होवै जोगवै। भोगी होवै खाए, तपिया होवै तप करे। तीर्थ मल मल नाए, तेरा सदड़ा सुनी जय पाई। जे को बह अलाए रहाओ। जैसा बीजे सो लुणे, जो खट्टे सो खाए। अगे पुछ ना होवई, जे सणनी सणे जाए। तैसो जैसा कांडिए, जैसी कार कमाए। जो दम चेतना आवई, सो दम बिरथा जाए।
ਇਹੋ ਤਨ ਵੇਚੀ ਬੈ ਕਰੀ ਜੇ ਕੋ ਲੈ ਵਿਕਾਏ ਨਾਨਕ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵਈ ਜਤਨ ਨਾਹੀ ਸੱਚਾ ਨਾਉ ਸੂਹੀ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕਰ ਸਤਵਾਂ ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੋਗ ਨਾ ਖਿੰਥਾ ਜੋਗ ਨਾ ਡੰਡੈ ਜੋਗ ਨਾ ਭਸਮ ਚੜਾਈਐ ਜੋਗ ਨਾ ਮੁੰਦੀ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਇਐ ਜੋਗ ਨਾ ਸਿੰਘੀ ਵਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਗੱਲੀ ਜੋਗ ਨਾ ਹੋਈ ਏਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਸੰਸਰ ਜਾਣੈ ਜੋਗੀ ਕਹੀਐ ਸੋਈ ਰਹਾਉ ਜੋਗ ਨਾ ਬਾਹਰ ਮੜੀ ਮਸਾਣੀ ਜੋਗ ਨਾ ਤਾੜੀ ਲਾਈਐ ਜੋਗ ਨਾ ਦੇਹ ਦਸੰਤਰ ਭਵੈ ਜੋਗ ਨਾ ਤੀਰਥ ਨਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੈ ਤਾਂ ਸਹਿਸਾ ਤੂਟੈ ਤਾਵਤ ਵਰਜ ਰਹਾਈਐ ਨਿਜਰ ਚਰੈ ਸਹਿ ਤੁਨ ਲਾਗੈ ਕਰਹੀ ਪਰਚਾ ਪਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗਤ ਇਵ ਪਾਈਐ ਨਾਨਕ ਜੀਵਤਿਆਂ ਮਰ ਰਹੀਐ ਐਸਾ ਜੋ ਕਮਾਈਐ ਵਾਜੇ ਬਾਜੋ ਸਿੰਘੀ ਵਾਜੈ ਤਉ ਨਿਰਭਉ ਪਦ ਪਾਈਐ ਅੰਜਨ ਮਾਹੇ ਨਿਰੰਜਨ ਰਹੀਐ ਜੋਗ ਜੁਗ ਤਉ ਪਾਈਐ

मेरे मानो हर राम नाम कर रंग, गुर तुठै हर उपदेशया, हर पेटिया राओ निसंग रहाओ। मुंद आणी मन मुखी फिर आवन जाना अंग, हर प्रभ चेतना आयो मन दूजा पाओ सहलंग। हम मैल भरे दोहचारिया, हर राखो वंगी अंग, गुर अमृत सर नवलाया सब लाथे किलवख पंग। हर दीना दीन दयाल प्रभ, सतसंगत मेलो संग, मिल संगत हर रंग पाया जन नानक मन तन रंग। सूही महला चौथा, हर हर करै नित कपट कुमावै, हिरदा सुध ना होई आन दिन कर्म करै बहु तेरे, सुपने सुख ना होई। ज्ञानी गुरबिन भगत ना होई, कोरै रंग कदे ना चढ़ै, जे लोचै सब कोई रहाओ। जप तप संयम वर्त करे पूजा, मन मुख रोग ना जाई, अंतर रोग महा अभिमाना दूजे पाए खुवाई। बाहर पेख बहुत चितराई, मनुआ दे दिस्तावै, हमें ब्यापिया शब्द ना चीनै, फिर जूनी आवै। नानक नदर करे सो बूजै, सो जन नाम ते आए, गुर प्रसादी एको बूजै, एक समाए समाए। सूही महला चौथा, कर दूजा एको अंकार, सतगुर प्रसाद गुरमत नगरी खोज खोज आई। हर हर नाम पदार्थ पाई, मेरा मन हर हर सांत वसाई। तिसना अग्न बुझी खन अंतर, गुर मिलिया सब भुख गवाई रहाओ। हर गुण गावा जीवा मेरी माई, सतगुर दयाल गुण नाम दृढ़ाई, हो हर प्रभ प्यारा टूं टूंडाई, सत्संगत मिल हर रस पाई। तुर मस्तक लेख लिखे हर पाई, गुरु नानक तुठा मेला हर पाई। सूही महला चौथा, हर कृपा करे मन हर रंग लाए, गुरमुख हर हर नाम समाए। हर रंग राता मन रंग माने, सदा आनंद रह दिन राती, पूरे गुर कै शब्द समाने रहाओ। हर रंग कौ लोचै सब कोई, गुरमुख रंग चलूला होई, मन मुख मुग्ध नर कोरा होए, जे सौ लोचै रंग ना हो वै कोय। नदर करे ता सतगुर पावै, नानक हर रस हर रंग समावै। सूही महला चौथा, जे वाह रस रही अगाए, गुरमुख पीवै सही समाए। हर रस जन चाखो जे पाई, तौकत अंत साध लो भाई रहाओ। गुरमत रस राखो उरतार, हर रस राते रंग मुरार, मन मुख हर रस चाखिया ना जाए, होमै करै बहुती मिलै सजाए। नदर करे ता हर रस पावै, नानक हर रस हर गुण गावै। सूही महला चौथा, कर सेवा एको अंकार, सतगुर प्रसाद नीच जात हर जपत्या, उत्तम पदवी पाए। पूछो बिदर दासी सुतै, किसन उतरिया घर जिस जाए। हर किया कथ कथा सुनो जन पाई, जित सहसा दुख भूख सब लह जाए रहाओ। रविदास चमार उस्तत करे, हर कीर्त निमख एक गाए। पतत जात उत्तम पया, चार वर्ण पय पगयाए। नाम दे प्रीत लगी हर सेती, लोक शिपा कह बुलाए। खत्री ब्राह्मण पिठ दे छोडे, हर नाम देव लिया मुख लाए। जितने भगत हर सेवका, मुख अड़सठ तीर्थ तिन तिलक कढाए। जन नानक तिन को वंदन परसे, जे कृपा करे हर राए। सूही महला चौथा, तिन्नी अंतर हर आराध्या, जिनको तुर लिखिया लिखत ललारा। तिनकी बखीली कोई क्या करे, जिनका अंग करे मेरा हर करतारा। हर हर त्याए मन मेरे, मन त्याए हर, जन्म जन्म के सब दुख निवारण हारा रहाओ। तुर भगत जना को बख्सिया, हर अमृत भगत भंडारा। मूर्ख होवै सो उनकी रीस करे,
ते सहलत पलत मोहकारा से भगत से सेवका जिन्ना हर नाम प्यारा तिनकी सेवा ते हर पाई है सिर निंदक पवे इशारा जिस घर विरती सोई जाने जगत गुर नानक पूछ करो बिचारा चहो पीड़ी आद जुगाद बखीली किने ना पायो हर सेवक पाए निस्तारा सुही महला चौथा जिथे हर आराधी है तिथे हर मित सहाई गुर कृपा ते हर मन वसै होरत बिदलया ना जाई हर तन संचिय पाई जे हलत पलत हर होए सखाई रहाओ सत संगति संग हर तन खटी है होरत है होरत उपाय हर तन कित ना पाई हर रतन का वापारिया हर तन तन विहाजे कच्चे के वापारिये वाके हर तन लया ना जाई हर तन रतन जिवे हर माणक हर तन नाल अमृत वे लैवत हर भक्ति हर लिवलाई हर तन अमृत वे लैवत का बीजया भगत खाए खर्च रहे निखुट नाही हालत पलत हर तन की भगता को मिली वड्याई हर तन निरपौ सदा सदा अस्त्र है साचा एहो हर तन अग्नि तस्करै पानिया जमदूतै किसै का गवाया ना जाई हर तन का ओचक्का नेड़ ना आवई जम जा गाती डंड ना लगाई सागती पाप करके बिखिया तन संचिया तिन्ना एक विख नाल ना जाई हलतै विच सागत दुहेले पए हथों छुड़क गया अगै पलत सागत हर दरगै ढोई ना पाई इस हर तन का साहो हर आप है संतो जिसनो दे सो हर तन लद चलाई इस हर तन का तोटा कदे ना आवई जन नानक कौ गुर सोजी पाई सुही महला चौथा जिसनो हर सो प्रसन्न होए सो हर गुणा रवै सो भगत सो परवान तिसकी महिमा क्या वर्णी है जिसके हृदय वसया हर पुरख भगवान गोविंद गुण गाइए जियो लाए सतगुरु नाल ध्यान रहाओ सो सतगुरु सा सेवा सतगुर की सफल है जिसते पाइए परम निधान जो दूजे पाए सागत कामना अर्थ दुर्गंध सिरे वंदे सो नेफर सब अगे

उनका उत्तर जाएगा झूठ को मान, जेता जियो पिंड सब तेरा, तू अंतर जामी पुरख भगवान, दासन दास कह जन नानक, जेहा तू कराए तेहा हूं करी वखियान। सुही महला चौथा कर सतवा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद तेरे कमन कमन गुण कह कह गावा, तू साहेब गुणी निदाना, तुमरी महिमा वर्ण ना साकाओ, तू ठाकर ऊच भगवाना। मैं हर हर नाम तर सोई, ज्यो भावै त्यो राख मेरे साहेब, मैं तुझ बिन अवर ना कोई रहाओ, मैं तान दी बाण तू है मेरे स्वामी, मैं तुझ आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पै करो बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास, विचे धरती विचे पानी, विच काष्ट अगन तरी जय, बकरी सिंह एक तै थाए राखे, मन हर जा भ्रम पौ दूर की जय। हर की वड़ियाई देखो संतो, हर निमाने

तू करता सब किछ आपे जाना, क्या तुद पै आख सुनाई है, बुरा भला तू सबके सूझै, जिहा को करे तिहा को पाई है, मेरे साहिब तू अंतर की बिद जाना है, बुरा भला तू सबके सूझै, तुद भावै तवै बुलावै रहाओ, सब मोह माया शरीर हर किया, विच देही मानुख भगत कराई, एक ना सतगुर मेल सुख देवै, एक मन मुख तंद पिटाई, सब को तेरा तू सबना का मेरे करते, तुद सबना सिर लिखिया लेख, जेही तू नदर करै तेहा को होवै, बिन नदरी नाही को पेख, तेरी वड्याई तू है जाणै, सब तुदनो नित त्याए, जिसनो तुद पावै तिसनो तू मिलै, जन नानक सो थाए पाए, सुही महला चौथा, जिनके अंतर वसिया मेरा हर हर, तिनके सब रोग गवाए, ते मुक्त पए जिन हर नाम ते आया, तिन पवित परम पद पाए, मेरे राम हर जन आरोग पए, गुर बचनी जिन्ना जपया मेरा हर हर, तिनके हम मैं रोग गए रहाओ, ब्रह्मा बिसर महादेव त्रै गुण रोगी, विच हों मैं कार कमाई, जिन किए तिसे न चेतै बपड़े, हर गुरमुख सो जी पाई, हों मैं रोग सब जगत व्यापिया, तिन कहो जन मरण दुख पारी, गुर प्रसादी को विरला छूटै, तिस जन कहो हों बलिहारी, जिन शिष्ट साजी सोई हर जाणै, ताका रूपया पारो, नानक आपे वेख हर बिकसै, गुरमुख ब्रह्म बिचारो, सुही महला चौथा, कीता करना सरबर जाई, किश कीचै जे कर सकी, अपना कीता किशु ना होवै, ज्यों हर पावै त्यों रखी, मेरे हर जियो सब को तेरे वस, असा जोर नाही जे किश कर हम साकै, ज्यों पावै तिवें बख्स रहाओ, सब जियो पिंड दिया तुदे आपे, तुदे आपे कर लाया, जेहा तू हुक्म करै तेहे को कर्म कमावै, जेहा तू तुर लिख पाया, पंच तत् कर तुद सिरिट सब साजी, कोई सेवा करियो जे किश कीता होवै, एक ना सतगुर मेल तू बुझावै, एक मन मुख करै से रोवै, हर की वड्याई हौ आख ना साका, हौ मूर्ख मुग्ध नीचाण, जन नानक कहो हर बख्स लै, मेरे स्वामी शरणागत पया अजान, राग सूही महला पंजवां, घर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, बाजी गर जैसे बाजी पाई, नाना रूप भेख दिखलाई, सांग उतार थम्यो पासारा, तब एको एक अंकारा, कवन रूप दृष्टियो बिनसायो, कत गयो ओ कत आयो रहाओ, जल ते उठे अनक तरंगा, कनक भूखन कीने बहुरंगा, बीज बीज देखियो बहु प्रकारा, फल पाके ते एक अंकारा, सहस घटा मैं एक आकाश, घट फूटे ते ओही प्रगास, परम लोभ मोह माया विकार, परम छूटे ते एकंकार, ओह अबनासी बिन सत नाही, ना को आवै ना को जाही, गुर पूरै हौं मैं मल धोई, कहो नानक मेरी परम गत होई, सुही महला पंजवां, कीता लोड़ै सो प्रभ होए, तुद बिन दूजा नाही कोए, जो जन सेवे तिस पूर्ण काज, दास अपने की रखो लाज, तेरी शरण पूर्ण दयाला, तुझ बिन कवन करे प्रतपाला रहाओ, जल थल महियल रहया भरपूर, निकट वसै नाही प्रभ दूर, लोक पतियारै कछु ना पाइयै, साच लगै ता हौं मैं जाइयै, जिसनो लाए लय सो लागै, ज्ञान रतन अंतर तिस जागै, दुरमत जाए परम पद पाए, गुर प्रसादी नाम ते आए,
दुइ कर जोड़ करो अरदास, तुद भावै ता आणै रास, कर किरपा अपनी भगती लाए। जन नानक प्रभसदा ते आए, सुही महला पंजवां, तन सोहागन जो प्रभु पछानै, मानै हुक्म तजै अवमानै, प्रेसे राती रलिया मानै, सुन सखिए प्रभ मिलन निशानी, मन तन अर्प तजला जलुकानी, रहाओ सखी सहेली कौ समझावै, सोई कमावै जो प्रभ पावै, सा सुहागण अंक समावै, गर्भ घेली महल ना पावै, फिर पछतावै जब रहन विहावै, कर्महीन मनमुख दुख पावै, बिना करीजे जाना दूर, प्रभ अविनाशी रहा भरपूर, जन नानक गावै देखा दूर, सुही महला पंजवां, गृह वस गुर कीना हो कर की नार, दस दासी कर दीनी पतार, सगल समग्री मैं कर की जोड़ी, आस प्यासी पिर कौ लोड़ी, कवन कहां गुण कंत प्यारे, सुगुण स्वरूप दयाल मुरारे, रहाओ सत सिंगार पौ अंजन पाया, अमृत नाम तम बोल मुख खाया, कंगन बस्तर गहने बने सुहावे, तन सब सुख पावे, जा पिर कर आवे, गुण कामण कर कंत।

प्रगटया सूर जोत उजियारा सेज विशाई सरदया पारा नव रंग लाल सेज राम ने आया जन नानक पिर तन मिल सुख पाया सूही महला पंजवा उम क्यो हियो मिलन प्रभ ताई खोजत चरियो देखो प्रे जाई सुनत संदे सरो प्रे गृह सेज विशाई भ्रम भ्रम आयो तौ नजर ना पाई किन बिद हियरो धीरे निमानो मिल साजन तुझ कुर्बानो रहाओ एका सेज विशी तन कंता तन सूती पिर सद जागंता पियो मदरो तन मतवंता तन जागे जे पिर बोलंता पही निरासी बहुत दिन लागे देह दिसंतर मैं सगले चागे खिन रहन ना पावाओ बिन पग पागे होए कृपाल प्रभ मिलै सुभागे भयो कृपाल सतसंग मिलाया बूझी तप्त करै फिर पाया सगल सिंगार हुण मुझै सुहाया कहो नानक गुर परम चुकाया जै देखा तै फिर है भाई खोलियो कपाट ता मन ठहराई रहाओ दूजा सूही महला पंजवा क्या गुण तेरे सार संभाली मोहे निर्गुण के दातारे बै खरीद क्या करे चतराई एहो जियो पिंड सब थारे लाल रंगीले प्रीतम मन मोहनो तेरे दर्शन को हम बारे रहाओ प्रभ दाता मोहे दीन पेखारी तुम सदा सदा उपकारे सो किश नाही जे मैं ते होवै मेरे ठाकुर अगम अपारे क्या सेवक मावाओ क्या कहरी जावाओ बिदगित पावो दरसारे मित नहीं पाई है।

कीजै दर्शन देखे की वडियाई तुम सुखदाते पुरख सुभाई रहाओ दूजा सूही महला पंजवा बुरे काम को ऊठ खलोया नाम की बेला पै पै सोया अवसर अपना बुझै ना आना माया मोह रंग लपटाना रहाओ लोभ लहर कौ बिकस फूल बैठा साज जना का दर्शन दीठा कबहू ना समझे अज्ञान गवारा बहुर बहुर लपट्यो जंजारा रहाओ बिखे नाद करन सुन पीना हर जै सुनत आलस मन कीना दृष्ट नाही रे पेखते अंदे छोड़ जाहे झूठे सब धंदे रहाओ कहो नानक प्रभ बख्श करी जै कर कृपा मोहे साध संग दीजै तौ किश पाईऐ जौ होइऐ रेना जिसै बुझाए तिस नाम लैना रहाओ सुही महला पंजवा कर मैं ठाकुर नदर ना आवै गल मैं पाहण लै लटकावै भरमे पूला सख्त फिरता नीर बिरोलै खप खप मरता रहाओ जिस पाहण को ठाकर कहता ओह पाहण लै उसको डुबता गुनहगार लूण हरामी पाहण नाव ना पार गिरामी गुरमिल नानक ठाकर जाता जल थल महियल पूर्ण विधाता सुही महला पंजवां।

संत करे हर रंगा, तह मरण न जीवन सोग न हरखा, साच नाम की अमृत वर्खा। गोहज कथा ए गुरते जानी, नानक बोले हर हर बाणी। सूही महला पंजवा, जा कै दर्स पाप कोट उतारे, भेटत संग एहो पव जल तारे। ओए साजन ओए मीत प्यारे, जो हमको हर नाम चितारे रहाओ। जा का शब्द सुनत सुख सारे, जा की टहल जम दूत बिदारे। जा की तीरक इस मने सुधारे, जा कै सिमरन मुख उजलारे। प्रभ के सेवक प्रभ आप सवारे, शरण नानक तिन सद बलिहारे। सूही महला पंजवा, रहन न पावै सुर नर देवा, ऊट सिधारे कर मुन जन सेवा। जीवत पेखे जिन्नी हर हर त्याया, साध संग तिनी दर्शन पाया रहाओ। बाद सहा सहा वापारी मरना, जो दिसै सो कल है खरना। कूड़ै मोहे लपट लपटाना, छोड़ चलिया ता फिर पछताना। किरपा निधान नानक कौ करहो दात, नाम तेरा जपी दिन रात। सूही महला पंजवा, कट कट अंतर तुम

अनक जोन प्रम प्रम प्रम हारे ओट गही अवसाद संगारे अगम्या गोचर अलख्या पारे नानक समरै।

जिस कृपा करे बसे तिस नेरा। जन की भूख तेरा नाम आहार, तू दाता प्रभ देवनहार। राम रमत संतन सुख माना, नानक देवनहार सो जाना। सुही महला पंजवा, बहती जात कदे दृष्णा तारत। मिथ्या मोह बंधे नित पारच, माधवे पज दिन नित रैणी। जन्म पदार्थ जीत हर सरणी रहाओ। करत बेकार दो कर चारत, राम रतन रेतल नहीं तारत। परन पोखण संग औद बिहानी, जय जगदीश की गत नहीं जानी। सरण समरथ अगोचर स्वामी, उदर नानक प्रभ अंतर जामी। सूही महला पंजवा, साध संग तरै पै सागर। हर हर नाम सिमर रतनागर, सिमर सिमर जीवा नारायण। दुख रोग सोग सब से गुर पूरे, मिल पाप तजायण रहाओ। जीवन पदवी हर का नाओ, मन तन निर्मल साच सुवाओ। आठ पहर पार ब्रह्म त्याई है, पूर्व लिखत होए ता पाई है। शरण पै जप दीन दयाला, नानक जाचै संतर वाला। सुही महला पंजवा, कर का काज ना जानी रूड़ा। झूठे तंदै रचियो मूड़ा।

दर्शन को लोचे सब कोई, पूरे भाग प्राप्त होई रहाओ। श्याम सुंदर तज नींद क्यों आई, महामोहनी दूता लाई। प्रेम विशोहा करत गसाई, निर्दय जंतु तिस दया ना पाई। अनक जन्म बीतियन परमाई, करवास ना देवे दुत्तर माई। दिन रैन अपना किया पाई, किस दोष ना दी जय कृत पवाई। सुन साजन संत जन पाई, चरण सरन नानक गत पाई। राग सुही महला पंजवां, कर चौथा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद भली सुहावी छापरी, जा मैं गुण गाए। कित ही कामना तौल हार, जित हर बिसराए रहाओ। अनद गरीबी साध संग, जित प्रभ चित आए। जल जाओ एह बड़पना, माया लपटाए। पीसन पीस ओड कामरी, सुख मन संतोखाए। ऐसो राजना कितै काज, जितने त्रिपताए। नगन फिरत रंग एक कै, ओहो सोभा पाए। पाठ पटंबर बिरथिया, जेहरा चलो बाए। सब किश तुमरै हाथ प्रभ, आप करे कराए। सास सास सिमरत रहा, नानक दान पाए। सूही महला पंजवां, हर का संत प्राण तन, तिसका पनिहारा। भाई मीत सुत सगल ते, जीहू ते प्यारा। रहाओ केसा का कर बीजना, संत चौर टोलावो। शीस निहारो चरण तल, तूर मुख लावो। मिष्ट बचन बेनती करो, दीन की न्याई। तजा मान सरणी परो, हर गुण निध पाई। अवलोकन पुनः पुनः करो, जन का दरसार। अमृत बचन मन में सिंचाओ, बंदाओ बार बार। चितवो मन आसा करो, जन का संग मांगो। नानक तो प्रभ दया कर, दास चरणी लागो। सुही महला पंजवां, जिन मोहे ब्रह्मांड खंड, ताहू मैं पाओ। राख लेहो एहो बिखई जियो, देहो अपना नाओ रहाओ। जाते नाही को सुखी, ता कै पाछे जाओ। छोड़ जाहे जो सगल कहो, फिर लपटाओ। करहो कृपा करना पते, तेरे हर गुण गाओ। नानक की प्रभ बेनती, साध संग समाओ। राग सुही महला पंजवां, कर पंजवां पड़ताल। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, प्रीत प्रीत गुरिया मोहन लालना। जप मन गोबिंद एक है, अवर नहीं को लेखै। संत लाग मने छाड़, दुबदा की कुरिया रहाओ। निर्गुण हरिया सरगुण तरिया, अनक कोठरिया। पिन पिन पिन पिन करिया, विच मन कोट वरिया। निज मंदिर प्रिया, तहां आनंद करिया। नै मरिया नै जरिया, कीर्तन जुरिया। बहुविध फिरिया, पर कौ हिरिया। बिखना किरिया, अब साधु संग परिया। हर द्वारे खरिया, दर्शन करिया। नानक गुर मिरिया, बहुर ना फिरिया। सूही महला पंजवां, रास मंडल कीनो आखारा। सगलो साज रखियो पासारा रहाओ। बहुविध रूप रंग आपारा, पेखै खुशी भोग नहीं हारा। सब रस लैत बस्त निरारा, वर्ण चिहन नाही मुख नाम सारा। कहन न जाई खेल तुहारा, नानक रेण संत चरनारा। सुही महला पंजवां, तौ मैं आया सरनी आया। भरोसै आया कृपा आया, ज्यो पावै त्यों राखो स्वामी। मार्ग गुरे पठाया रहाओ। महादुत्तर माया, जैसे पवन चुलाया। सुन सुन ही डराया, कर रो त्रमराया। ग्रह अंध कु पाया, पावक सगराया। गही ओढ़ साधाया, नानक हर त्याया। अब मैं पूरा पाया। राग सुही महला पंजवां, कर छेवां एक ओंकार। सतगुर प्रसाद, सतगुर पास बेनंतियां, मिले नाम आधारा। तुठा सच्चा पात साहो, ताप गया संसारा। भगता की टेक तू, संता की ओट तू। सच्चा सिरजनहारा रहाओ।
ਸੱਚ ਤੇਰੀ ਸਾਮਗਰੀ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਖਜ਼ੀਨਿਆਂ, ਸੱਚ ਤੇਰਾ ਪਾਸਾਰਾ। ਤੇਰਾ ਰੂਪਿਆ ਗਮ ਹੈ ਅਨੂਪ ਤੇਰਾ ਦਰਸਾਰਾ, ਹਉ ਕੁਰਬਾਨੀ ਤੇਰਿਆਂ ਸੇਵਕਾਂ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ। ਸਭੇ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀਆਂ ਜਾ ਪਾਇਆ ਗਮਿਆ ਪਾਰਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਿਲਿਆ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਤੇਰਿਆਂ ਚਰਣਾ ਕਉ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਰਾਗ ਸੁਹੀ ਮਹਾ

आस चुकाई। मेरे राम राए तुद चित आया उबरे, तेरी टेक परभाषा तुमरा, जप नाम तुम्हारा उदरे रहाओ। अंध कूब ते काल लिए तुम आप है कृपाला, सार समाल सर्व सुख दिए आप करे प्रतपाला। अपनी नदर करे परमेसर बंधन काट छाए, अपनी भगत प्रभ आप कराई आपे सेवा लाए। परम गया पै मोह बिनासे, मिटिया सगल विसूरा, नानक दया करी सुखदाता पेटिया सदगुर पूरा। सूही महला पंजवा, जब कछ ना सी ओ तब क्या करता, कवन कर्म कर आया, अपना खेल आप कर देखै, ठाकुर रचन रचाया। मेरे राम राए मुझते कछु न होई, आपे करता आप कराए, सर्व निरंतर सोई रहाओ। गणती गणी न छूटै कतहूं, काची दे आणी, कृपा करो प्रभ करण हारे, तेरी बख्श निराली। जी जंत सब तेरे कीते, घट घट तुही ते आई है, तेरी गतमित तू है जाने, कुदरत कीम ना पाई है। निर्गुण मुग्ध अजान अज्ञानी, कर्म धर्म नहीं जाना, दया करो नानक गुण गावे, मिठा लगे तेरा पाना। सूही महला पंजवा, भाग ठड़े हर संत तुम्हारे, जिन घर तन हर नामा, प्रवान गणी से ही एह आए, सफल तिना के कामा। मेरे राम हर जन कै

तेरी बख्श ना मेटै कोई सतगुर का दिलासा। नाम ते आयन सुख फल पायन आठ पहरे आराधै तेरी शरण तेरे परवासै पंच दुष्ट लै सादै। ज्ञान ध्यान किश कर्म ना जाना सार ना जाना तेरी सब ते वड्डा सतगुर नानक जिन कल राखी मेरी। सूही महला पंजवां सगल त्याग।

आठ पहर प्रभ अपना त्याई है, गुर प्रसाद पौतरी है, आप त्याग होई है सब रेणा, जीवत्या इं मरी है, सफल जन्म तिसका जग पीतर, साध संग नाव जापे, सगल मनोरथ तिसके पूर्ण, जिस दया करे प्रभ आपे, दीन दयाल कृपाल प्रभ स्वामी, तेरी शरण दयाला, कर कृपा अपना नाम दीजै, नानक साधर वाला। राग सूही अष्टपदिया महला पहला, कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सब अवगुण में गुण नहीं कोई, क्यों कर कंत मिलावा होई, ना मैं रूप ना बंके नैना, ना कुल ढंग ना मीठे बैना, रहाओ सहज सिंगार, कामन कर आवै ता सुहागण जा कंतै पावै, ना तिस रूप ना रेख्या काई, अंत ना साहेब सिमरिया जाई, सुरत मत नाही चतराई, कर कृपा प्रभ लावो पाई, खरी सियाणी कंत ना पाणी, माया लागी परम पुलाणी, हौ मैं जाई ता कंत समाई, तौ कामण प्यारे नमनिद पाई, अनक जन्म बिछरत दुख पाया, कर गैले हो प्रीतम प्रभराया, पणत

तिन मुख नाम न उपजै, दूजै व्यापे चोर जियो। मूल न बुझै अपना, से पशुआ से टोर जियो। नित नित खुशियां मन करे, नित नित मंगै सुख जियो। करता चित न आवई, फिर लगै दुख जियो। सुख दुख दाता मन वसै, ते तन कैसी भुख जियो। बाकी वाला तलबी है, सिर मारे जंदार जियो। लेखा मंगै देवना, पुछे कर विचार जियो। सच्चे की लिव उबरै, बख्शे बख्शनहार जियो। अन को की जय मित्रा, खाक रलै मर जाए जियो। बहु रंग देख पुलाया, पुल पुल आवै जाए जियो। नजर प्रभु ते छुट्टी है, नजरी मेल मिलाए जियो। गाफल ज्ञान में होनिया, गुरबिन ज्ञान ना पाल जियो। खिंचो तान में गुच्ची है, बुरा भला दोए नाल जियो। बिन शब्द पैर ते आ, सब जो ही जमकाल जियो। जिन कर कारण तारिया, सब सहदे आधार जियो। सो क्यों मनो विसारी है, सदा सदा दातार जियो। नानक नाम ना विसरै, निदारा आधार जियो। सुही महला पहला, काफी कर दसवा एक ओंकार। सतगुर प्रसाद मानस जन्म दुलंब, गुरमुख पाया मन तन होए चुलंब। जे सतगुर पाया चलै जन्म सवार, वखर सच लै पथ पाए दरबार। सतगुर शब्द पै रहाओ, मन तन सच सलाहे। साचे मन पाया, लाल रत्ता मन मानिया, गुरपूरा पाया। हौ जीवा गुण सारे अंतर तू वसै, तू वसै मन माए सहजे रस रसै। मूर्ख मन समझाए, आखो के तड़ा, गुरमुख हर गुण गाए रंग रंगे तड़ा। नित नित हृदय संभाल, प्रीत में अपना जे चलै गुण नाल, नाही दुख संतापना। मन मुख परम पुलाना, ना तिस रंग है। मरसी होए विडाणा, मन तन भंग है। गुर की कार कमाए, लाहा कर आणिया। गुरबाणी निर्बाण शब्द पछाणिया। एक नानक की अरदास, जे तुद पावसी मैं दीजै नाम निवास। हर गुण गावसी, सूही महला पहला। ज्यों आरन लोहा पाए, पन कढ़ाई है। त्यों साक्त जोनी पाए, पवै पवाई है। बिन बूझे सब दुख, दुख कमावना। हाँ मैं आवै जाए परम पुलावना। रहाओ तू गुरमुख रखनहार, हर नाम ते आईऐ। मिले तुझे रजाए, शब्द कमाईऐ। तू कर कर वेखै आप, देह सो पाईऐ। तू देखै थापो थाप, दर भी नाईऐ। देही होवग खाक, पमन उडाईऐ। इहो किथै कर औताक, महल ना पाईऐ। देहो दीवी अंध कोर, कब मुहाईऐ। गर्भ मुसै कर चोर, किस रू आईऐ। गुरमुख चोर ना लाग, हर नाम जगाई है। शब्द निवारी आग, जोधी पाई है। लाल रतन हर नाम, गुरसुरत बुझाई है। सदा रह निकाम, जे गुरमत पाई है। आराध्य है हर नाम, मन वसाई है। नानक मेल मिलाए, जे तुद पाई है। सूही महला पहला, मनो ना नाम विसार। अहन सत्याई है, ज्यो राखै कृपा तार, तिवै सुख पाई है। मैं अंदले हर नाम, लखटी टोहनी। रहो साहिब की टेक, ना मोहै मोहनी। रहाओ जै देखो तै नाल, गुर दे खालिया। अंतर बाहर पाल, शब्द निहालिया। सेवी सतगुर पाए, नाम निरंजना। तुद पावै तिवै रजाए, परम पौ पंजना। जन्मत ही दुख लागै, मरना आए कै। जन्म मरण परवान, हर गुण गाए कै। हौ नाही तू होवै, तुद ही साजिया। आपे थापो थाप, शब्द निवाजिया।
देही पसमर लाए ना जापी कह गया आपे रया समाए सो विस्माद पया। तू नाही प्रभ दूर जाने सब तू है गुरमुख वेखा दूर अंतर पी तू है। मैं दीजै नाम निवास अंतर सांत होए गुण गावे नानक दास सतगुर मत दे। राग सुही महला तीजा कर पहला अष्टपदियां एको अंकार सतगुर प्रसाद। नामै ही ते सब किश होवा बिन सतगुर नाम ना जापै गुर का शब्द महारस मीठा बिन चाखे साध ना जापै। कौडी बदलै जन्म गवाया चीनस नाही आपै गुरमुख होवै ता एको जाने हौं मैं दुख ना संतापै। बलिहारी गुरे अपने विटों जिन साचे सिउं लिवलाई शब्द चीन आत्म पर गासिया सहजे रिया समाई रहाओ। गुरमुख गावै गुरमुख बूजै गुरमुख शब्द बीचारे जियो पिंड सब गुरते उपजै गुरमुख कारज सवारे। मनमुख अंधा अंध कमावै बेखटे संसारे माया मोहे सदा दुख पाए बिन गुरियत प्यारे। सोई सेवक जे सतगुर सेवे चलै सतगुर पाए साचा शब्द सिवत है साची साचा मन वसाए। सच्ची बाणी गुरमुख आखै हम मैं विचों जाए आपे दाता कर्म है साचा साचा शब्द सुनाए। गुरमुख काले गुरमुख खट्टे गुरमुख नाम जपाए सदा अलिप्त साचा रंगराता गुर कै सहि सुभाए। मनमुख सद ही कूड़ो बोलै बिख बीजै बिख खाए जमकाल बादा तृष्णा दादा बिन गुर कमन छड़ाए। सच्चा तीर्थ जित सत सर नामन गुरमुख आप बुझाए अठ सठ तीर्थ गुर शब्द दिखाए तितना तै मल जाए। सच्चा शब्द सच्चा है निर्मल नामल लगे ना लाए सच्ची सिफत सच्ची साला पूरे गुर ते पाए। तन मन सब किश हर तिस केरा द्रुवत कहन ना जाए हुक्म होवै ता निर्मल होवै। हम मैं विचों जाए गुर की साखी सहजे चाखी तृष्णा यगन बुझाए। गुर कै शब्द राता सहजे माता सहजे रया समाए। हर का नाम सत कर जाने गुर कै पाए प्यारे सच्ची वड्याई गुर ते पाई सच्चे नाए प्यारे। एको सच्चा समय वरतै विरला को विचारे आपे में लय ता बक्से सच्ची भगत सवारे। सबो सच सच सच वरतै गुरमुख कोई जाने जमण मरना हुक्मो वरतै गुरमुख आप पछाणे। नाम ते आए ता सतगुर पाए जो इच्छा सो फल पाए। नानक तिसदा सब किश होवै जे विचों आप गवाए। सूही महला तीजा काया कामण अत सवाले ओ पिर वसै जिस नाले पिर सच्चे तेसदा सुहागण गुर का शब्द संभाले। हर की भगत सदा रंग राता हम मैं विचों जाले। वाह वाह पूरे गुर की बाणी पूरे गुर ते उपजी साज समाणी रहाओ। काया अंदर सब किश वसै खंड मंडल पाताला काया अंदर जग जीवन दाता वसै सबना करे प्रतपाला। काया का मन सदा सुहेली गुरमुख नाम समाला काया अंदर आपे वसै अलख ना लखया जाई। मनमुख मुग्ध बूझै नाही बाहर पालन जाई सतगुर सेवे सदा सुख पाए सतगुर अलख दिता लखाई। काया अंदर रतन पदार्थ भगत परे पंडारा इस काया अंदर नौखंड पृथ्वी हाट पटन बाजारा। इस काया अंदर नाम नवनिध पाई है गुर कै शब्द विचारा। काया अंदर तोल तोलावै आपे तोलनहारा
एहो मन रतन जवाहर माणक तिसका मोल अफारा मोल कित ही नाम पाइए नाही नाम पाइए गुर बिचारा गुरमुख होवे सो काया खोजे होर सब परम पुलाई जिसनो दे सोई जन पावे होर क्या को करे चतराई काया अंदर पाओ पाओ वसे गुर प्रसादी पाई काया अंदर ब्रह्मा विष्णु महेशा सब ओपत जित संसारा सच्चा अपना खेल रचाया आवा गौण पसारा पूरे सतगुरे आप दिखाया सच नाम निस्तारा सा काया जो सतगुर सेवे सच्चा आप सवारी विण नावें दर ढोई नाही ता जम करे खुवारी नानक सच वड़ियाई पाए जिसनो हर कृपा तारी राग सुही महला तीजा कर दसवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुनिया ना साला है जो मर वंज सी लोका ना साला है जो मर खाक थी वाहो मेरे साहेबा वाहो गुरमुख सदा सलाही है सच्चा वे प्रवाहो रहाओ दुनिया केरी दोस्ती मनमुख दज मरन जंपर बदे मारी है वेला ना लाहन गुरमुख जन्म सकार था सच्चा शब्द लगन आत्म राम प्रगासिया सहजे सुख रहन गुर का शब्द विसारिया दूजा पायर चन तिसना भुख ना उतरै अंधन जलत फेरन दुष्टा नाल दोस्ती नाल संता वैर करन आप डुबे कुटंब स्यों सगले कुल डोबन निंदा पली किसै की नाही मनुख मुग्द करन मोह काले त्रिनिंदका नरके कोर पवन ए मन जैसा से

ज्यों मछली बिन पानी रह न कित पारे त्यों हर बिन संत न जीवई बिन हर नामे मर जाए मैं सतगुर सेती पर हड़ी क्यों गुर बिन जीवा माओ मैं गुरबाणी आधार है गुरबाणी लाग रहाओ हर हर नाम रतन है गुर तुठा देवे माए मैं तर सच्चे नाम की हर नाम रहन लिवलाए गुर ज्ञान पदार्थ नाम है हर नामो दे दृढ़ाए जिस प्राप्त सोल है गुर चरनी लागे आए अकथ कहानी प्रेम की को प्रीत में आखे आए तिस देवा मन अपना निम निम लागा पाए सज्जन मेरा एक तू करता पुरख सुजान सतगुर मीत मिलाया मैं सदा सदा तेरा तान सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए ओह अबनासी पुरख है समय रह समाए राम नाम तन संचया साबत पूंजी रास नानक दरगे मन्या गुर पूरे साबास अराग सूही अष्टपदिया महला पंजवा कर पहला एको अंकार सतगुर प्रसाद उर्ज रहे हो बिखिया कै संगा मने व्यापत अनक तिरंगा मेरे मन अगम्य गोचर कत पाइय पूर्ण परमेश्वर रहाओ मोह मगन में रहया व्यापे अतृष्णा कबहू नहीं त्रापे बसै क्रोध शरीर चंडारा अज्ञान न सूजै महा गुबारा प्रमत व्यापत जरे केवारा जान न पाइय प्रभ दरबारा आसा अंदेसा बंद पराना महल ना पावै फिरत बिगाना सगल ब्याद कै वस कर दीना फिरत प्यास ज्यों जल बिन मीना कछु सियान पयुगत ना मोरी एस एक आस ठाकर प्रभ तोरी करो बेनती संतन पासे मेल लहो नानक अरदासे भयो कृपाल साध संग पाया नानक तृप्ते पूरा पाया रहाओ दूजा राग सूही महला पंजवा कर तीजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद मिथन मोह अग्न शोक सागर कर कृपा उदर हर नागर चरण कमल सरनाय नारायण दीना नाथ भगत परायण रहाओ अनाथा नाथ भगत भय मेटन साध संग जमदूत ना भेटन जीवन रूप अनूप दयाला रवण गुणा कटिया जमजाला अमृत नाम रसन नित जापै रोग रूप माया ना व्यापै जप गोबिंद संगी सब तारे पोहत नाही पंच बटवारे मन बच क्रम प्रभ एक ते आए सरफला सोई जन पाए तार अनुग्रह अपना प्रभ की ना केवल नाम भगत रस दीना आद मद अंत प्रभ सोई नानक तिस बिने अवर ना कोई राग सूही महला पंजवा अष्टपदिया करनावा एक ओंकार सतगुर प्रसाद जिन डिठिया मन रहसी क्यों पाई है तन संग जियो संत सज्जन मन मित्र से लायन प्रभ स्यो रंग जियो तिन स्यो प्रीत न टुटई कबो न हो वै भंग जियो पार ब्रह्म प्रभ कर दया गुण गावा तेरे नित जियो आए मिलो संत सज्जना नाम जपै मन मित जियो रहाओ देखे सुने न जानई माया मोहया अंध जियो काची देहा विनसनी कूड़ कमावै तंद जियो नाम ते आवै सेजन चले गुरपूरे संबंध जियो।

जियो, नानक नाम सदा जपी भगत जना की टेक जियो। राग सूही महला पंजवा, अष्टपदियां कर दसवां, काफी एको अंकार सतगुर प्रसाद। जे भुली जे चुकी साई पी तहिंजी काढ़िया, जिन्ना नेहो दू जाने लगा चूर मरो सेवा डिया। हाओ ना छोड़ाओ कंत पासरा, सदा रंगीला लाल प्यारा एहो महिंजा आसरा रहाओ। सज्जन तू है सैन तू, मैं तुझ ऊपर बहु मानिया, जा तू अंदर ता सुखे तू निमाणी माणिया। जे तू तुठा कृपा निधान, ना दूजा वे खाल, एहा पाई मुदा तड़ी नित हृदय रखा समाल। पाव जुलाई पंद ताओ, नैनी दर्स दिखाल, श्रवणी सुनी कहानिया, जे गुरथी वै कृपाल। किती लख करोड़ प्रिये, रोम न पुजन तेरिया, तू साही हूं साहो, हाँ कह ना सका गुण तेरिया। सहिया तऊ असंख मन्यो हब वदानिया, हिक पोरी नदर निहाल, देहे दर्श रंग माणिया। जय डिठे मन तीरिय, किल विख वंजन दूरे, सो क्यों विसरे माओ मैं, जो रहा पर पूरे। होए निमाणी टह पई, मिलिया सहे सुभाए, पूर्व लिखिया पाया नानक संत सहाय। सूही महला पंजवा, सिमरत बेद पुराण पुकारन पोथिया, नाम बिना सब कूड़ गाली होछिया। नाम निदान अपार, भगता मन वसै, जन मरण मोह दुख।

नरक सुर्ग अवतार माया तंदया। सोदत सोदत सोद सोद सोदत सोदत सोद तत विचारिया, नाम बिना सुख नाहे सर पर हारिया। आवै जाय अनेक मर मर जन्म ते, बिन बूझे सब वाद जोनी परम ते। जिन कौ भय दयाल तिन साधु संग पया, अमृत हर का नाम तिन्नी जनी जप लया। खोजै कोट असंख बहुत अनंत के, जिस बुझाए आप नेड़ा ते सहे। विसर नाही दातार अपना नाम देहो, गुण गावा दिन रात नानक चाओ एहो। राग सुही महला पहला, कुचजी एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मन कुचजी अमावन डोसड़े, हाँ क्यों सौ रावण जाओ जियो। एक दू एक चिड़ंदिया, कौन जाने मेरा नाओ जियो। जिनी सखी सौरावया से अंबी शावड़ी यह जियो। से गुण मंजना यावनी, हाँ कह जी दोस्त रेव जियो। क्या गुण तेरे विथरा, हाँ क्या क्या किन्ना तेरा नाओ जियो। एक तटोल ना अंबड़ा, हाँ सतगुर बाणे ते रह जाओ जियो। सोइना रूपा रंगला मोती तै माणक जियो, से वस्तु सह दितियां मैं तिन स्यों लाया चित जियो। मंदर मिट्टी संदड़े पत्थर की तेरास जियो, हाँ एनी टोली पुली अस तिस्कंत ना बैठी पास जियो। अंबर कूजा कुरलिया बग बैठे आए जियो, सातन चली साहोरे क्या मोह देसी अगे जाए जियो। सुती सुती चाल थिया पुली वाटड़ यास जियो, तै सह नालो मुत्ती अस दुखां को तरियास जियो। तुद गुण मैं सब अवगणा एक नानक की अरदास जियो। सब राती सोहागणी मैं डोहागण काई रात जियो। सुही महला पहला सुचजी जा तू ता मैं सब को, तू साहिब मेरी राह जियो। तुद अंतर हों सुख वसा तू मंत्र साबाह जियो। पाणे तख्त वडाईया पाणे पीखो दास जियो, पाणे थल सिर सर्व है कमल फुल आकाश जियो। पाणे पवजल लंगिया पाणे मंज परियास जियो, पाणे सो सहो रंगला सिफतरता गुणदास जियो। पाणे सह पिहावला यावन जान मुयास जियो, तू सौ अगमा तोलवा हों कह कह टह पैयास जियो। क्या मांगा क्या कह सुनी मैं दर्शन पूख प्यास जियो। गुरसबदी सहु पाया सच नानक की अरदास जियो। सूही महला पंजवा गुणवंती जो दिसे गुरसिखड़ा, तिस निव निव लागो पाए जियो। आखा बिरथा जी की गुर सज्जन दे मिलाए जियो। सोई

निश्चल हब जाना मिथ्या माना संत प्रभु होय दासा जीवित मरिया भौजल तरिया जे थी वह कर्म लिखिया सा गुर से बीजै अमृत पीजै जिसला वह सहित्यानो नानक शरण पया हरिद्वार हों बलबल सत कुरबानो सुन बावरे मत जाने प्रभ मैं पाया सुन बावरे थियो रेण जिनी प्रभ त्याया जिन प्रभ त्याया तिन सुख पाया वडभागी दर्शन पाई है थियो न माना सत कुरबाना सगलाया मिटाई है ओह तन भाग सुदा जिन प्रभ लद्दा हम तिस पाया विचाया नानक दीन सरन सुख सागर राख लाज अपनाया सूही महला पंजवा हर चरण कमल की टेक सतगुर दित्ती तुसकै बलराम जियो हर अमृत भरे भंडार सब किश है कर तिसकै बलराम जियो बाबल मेरा वड़ समर्था करण कारण प्रभारा जे सिमरत दुख कोई ना लागे भौजल पार उतारा आद जुगाद भगतन का राखा उस्तत कर कर जीवा नानक नाम महारस मीठा अंदन मंतन पीवा हर आपे लय मिलाए क्यों विछोड़ा थी वही बलराम जियो जिसनों तेरी टेक सो सदा सजी वही बलराम जियो तेरी टेक तुझे ते पाई साचे सृजनहारा जिसते खाली कोई नाही ऐसा प्रभु हमारा संत जना मिल मंगल गाया जिन रैन आस तुम्हारी सफल दर्श भेटिया गुरपुरा नानक सद बलिहारी संभलिया सच थान मान महत सच पाया बलराम जियो सतगुर मिलिया दयाल गुण अबनासी गाया बलराम जियो गुण गोविंद गाओ नित नित प्राण प्रीतम स्वामिया शुभ दिवस आए गह कंठ लाए मिले अंतर जमिया सत संतोख वजह वाजे अनहदा चुनकारे सुन पै बिनासे सगल नानक प्रपुरख करने हारे उपजिया।

सिमर सिमर स्वामी प्रव्यपना सगले पाप जावै राम। हर गुण गाए परम पद पाया प्रभ की उत्तम बाणी। सहज कथा प्रभ की अत मीठी कथी कथ कहानी। भला संयोग

अब चल नगर गोबिंद गुरु का, नाम जपत सुख पाया राम, मन इच्छे से ही फल पाए, करता है आप वसाया राम, करता है आप वसाया सर्व सुख पाया, पुत भाई सिख बिगासे, गुण गावे पूर्ण परमेश्वर, कार्य आया रासे, प्रभ आप स्वामी आपे आपे रखा, आप पिता आप माया, कहो नानक सतगुर बलिहारी, जिन एहो थान सुहाया, घर मंदर हट नाले सोहे, जिस विच नाम निवासी राम, संत भगत हर नाम आराध है, कटिया जम की फासी राम, काटी जम फासी प्रभु बनासी, हर हर नाम ते आए, सगल समग्री पूर्ण होई, मन इच्छे फल पाए, संत सज्जन सुख माने रलियां, दुख दर्द भ्रम नासी, शब्द सवारे सतगुर पूरै, नानक सदबल जासी, दात खसम की पूरी होई, नित नित चढ़े सवाई राम, पार ब्रह्म खसमाना किया, जिस दी वड्डी वड्याई राम, आद जुगाद भगतन का राखा, सो प्रपया दयाला, जी जंत सब सुखी वसाए, प्रभ आपे कर प्रतपाला, दय दिसपुर रहया जा स्वामी, कीमत कहन ना जाई, कहो नानक सतगुर बलिहारी, जिन अब चल नीम रखाई, ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर, हर हर कथा नित सुनिए राम, अनहद चोज भगत पव पवंजन, अनहद वाजे तुनिया राम, अनहद चुनकारे तत विचारे, संत गोष्ट नित होवे, हर नाम आराधै मैल सब काटै, किलवे सगले खोवै, तह जन्म न मरना आवन जाना, बहुन न पाइया जोनिया, नानक गुर परमेसर पाया, जिस प्रसाद इच पुनिया, सूही महला पंजवा, संता के कार्ज आप खलोया, हर कम करावन आया राम, धरत सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया राम, अमृत जल छाया पूर्ण साज कराया, सगल मनोरथ पूरे, जय जयकार भया जग अंतर, लाथे सगल विसूरे, पूर्ण पुरख अचुत अविनाशी, जस वेद पुराणी गाया, अपना बिरद रखिया परमेश्वर, नानक नाम ते आया, नवनिध सिद्ध रिद दीने करते, तोट न आवै काई राम, खात खर्चत बिलशत सुख पाया, करते की दास सवाई राम, दास सवाई ने खुट न जाई, अंतर जामी पाया, कोट बिघन सगले उठ नाठे, दुख न नेड़े आया, सांत सहज आनंद कनेरे, बिनसी भूख सवाई, नानक गुण गावै स्वामी के, अचरज जिस वड्याई राम, जिसका कार्य तिन्ही किया, मानस क्या वेचारा राम, भगत सोहन हर के गुण गावै, सदा करै जयकारा राम, गुण गाए गोविंद अंध उपजे, साध संगत संग बनी, जिन उद्यम किया ताल केरा, तिसकी उपमा क्या गनी, आठ साठ तीर्थ पुन किरिया, महा निर्मल चारा, पतत पावन बिरद स्वामी, नानक शब्द आधारा, गुण निधान मेरा प्रभ करता, उसत कौन करी जय राम, संता की बेनती स्वामी, नाम महारस दी जय राम, नाम दी जय दान की जय, बिसर नाही एक खिनो, गुण गोपाल उचर रसना, सदा गाइए अंदेनो, जिस प्रीत लागी नाम सेती, मंत्र ने अमृत पीजै, बिनवंत नानक इच पुनी, पेख दर्शन जीजै, राग सुही महला पंजवा, शंत एक ओंकार, सतगुर प्रसाद मिठ बोलड़ा जी, हर सज्जन सुवा।

कौड़ा बोल न जाने पूर्ण भगवान अवगुण को ना चितारे पतत पावनो हर बिरद सदाए एक तिल नहीं पन्ने कहले कटकट वासी सर्व निवासी नेरे ही ते नेरा नानक दास सदा शरणागत हर अमृत सज्जन मेरा। हां बिसम भई जी हर दर्शन देखिया पारा मेरा सुंदर स्वामी जी हां चरण कमल पग शारा प्रभ पेखत जीवा ठंडी थीवा इस जेवड़े अवर ना कोई आद अंत मध प्रभ रव्या जल थल मई अलसोई चरण कमल जप सागर तरिया पवजल उतरे पारा नानक शरण पूर्ण परमेसर तेरा अंत ना पारा वारा। हाउ निमख ना छोड़ा जी हर प्रीतम प्राण आधारो गुर सतगुर कहया जी साचा या गंभीचारो मिल साधु दीना ता नाम लीना जन्म मरण दुख नाठे सहज सुख आनंद कनेरे हमे बिंठी गाठे सब कै मद सबहू ते बाहर राग दुख ते न्यारो नानक दास गोविंद सरनाई हर प्रीतम मने सदारो। मैं खोजत खोजत जी हर निहचल सो कर पाया सब अत्रुव डिठे जियो ता चरण कमल चित लाया प्रभ अबनासी हों तिसकी दासी मरै न आवै जाए धर्म अर्थ काम सा पूर्ण मन चिंदी इच्छ पुजाए स्रोत सिमरत गुण गावै करते सिद्ध साधक मुन जन ध्याया नानक शरण कृपा निध स्वामी वडभागी हर हर गाया एक ओवंकार सतगुर प्रसाद वार सूही की श्लोका नाल महला तीजा श्लोक महला तीजा।

कहो कबीर मैं सो गुर पाया, जा का नाओ बबे को। राग सूही बाणी श्री रविदास जीओ की। एक ओंकार सतगुर प्रसाद सहकी सार सुहागन जानै, ताजा मान सुख रलिया मान है, तन मन दे न अंतर राखै, अवरा देखना सुनै अपाखै, सो कत जानै पीर पराई, जाकै अंतर दर्द ना पाई, रहाओ दुखी दुहागन दोए पखहीनी, जे ना निरंतर भगत न कीनी, पुरस लात का पंथ दुहेला, संगना साथी गवन अकेला, दुखिया दर्द वंद दर आया, बहुत प्यास जवाब ना पाया, कह रविदास शरण प्रभ तेरी, जो जानो त्यों कर गत मेरी, सूही जो दिन आवै सो दिन जाही, करना कूच रहन थिर नाही, संग चलत है हम्पी चलना, दूर गमन सिरी ऊपर मरना। क्या तू सोया जाग आना, तैं जीवन जग सच कर जाना, रहाओ जिन जियो दिया सो रिजक अंबर आवै, सब कट पीतर हाट चलावै, कर बंदगी छाड़ मैं मेरा, हृदय नाम समार सवेरा, जन्म सिरानो पंथ ना सवारा, सांझ परी दह दिस अंधियारा, कह रविदास निदान दिवाने, चेतस नाही दुनिया फन खाने, सूही ऊचे मंदर साल रसोई, एक करी फुन रहन ना होई, एहो तन ऐसा जैसे कास की टाटी, जल गयो कास रल गयो माटी, रहाओ पाई बंद कुटंब सहेरा, ओए पी लागे काड़ सवेरा, घर की नार उरे तन लागी, ओ तो पूत पूत कर पागी, कह रविदास सवै जग लूटिया, हम तो एक राम कह छूटिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही बाणी शेख फरीद जी की। तप तप लोहे लोहे हाथ मरो रहो, बावल होई सो सहलो रहो, तैं सह मन में किया रोस, मुझ अवगन सह नाही दोस, तैं साहेब की मैं सार ना जानी, जोबन खोए पाछ पछतानी, रहाओ काली कोयल तू कित गुण काली, अपने प्रीतम के हम बिरह जाली, पिरै बिहून का तैं सुख पाए, जा हुए कृपाल ता प्रभु मिलाए, विदन खूही मुंद अकेली, ना को साथी ना को बेली, कर कृपा प्रभ साध संग मेली, जा फिर देखा ता मेरा अल्लाह बेली, वाट हमारी खरी उडीनी, खन्यो तिखी बहुत पैणी, उस ऊपर है मार्ग मेरा, शेख फरीदा पंथ।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भउ निर्वैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद राग बिलावल महला।

अगमा गोचर लाख्या पारा, चिंता करो हमारी, जल थल मैयल भरपुर लीना, कड़कड़ जोत तुम्हारी, सिख मत सब तुम्हारी, मंदिर छावा तेरे, तुझ बिन अवर ना जाना मेरे साहेबा, गुण गावा नित तेरे, जी जंत सब सरण तुम्हारी, सर्ब चिंत तुद पासे, जो तुद पावे सोई चंगा, एक नानक की अरदासे, बिलावल महला पहला, आपे शब्द आपे निशान, आपे सुरता आपे जान, आपे कर कर वेखै तान, तू दाता नाम प्रमाण, ऐसा नाम निरंजन देओ, हम जाचक तुम लाखा पेओ रहाओ, माया मोह तरकटी नार, पूंडी कामण कामण यार, राज रूप झूठा दिन चार, नाम मिले चानन अंधियार, चख छोड़ी सहसा नहीं कोए, बाप दिसै वे जात ना होए, एके कहो नाही पौ कोए, करता करे करा वैसोए, शब्द मोए मन मन ते मारिया, ठाक रहे मनसा चै तारिया, अवरना सूजै गुर कौ वारिया, नानक नाम रते निस्तारिया, बिलावल महला पहला, गुरबचनी मन सही ध्याने, हर कै रंग रता मन माने, मनमुख परम भुले बौराने, हर बिन क्यों रही है गुर शब्द पछाने, बिन दर्शन कैसे जीवो मेरी माई, हर बिन जियरा रह ना सकै, खिन सतगुर बूझ बुझाई रहाओ, मेरा प्रभ बिसरै हमरो दुखाली, सास गिरास जपो अपने हर पाली, सद बैरागन हर नाम निहाली, अब जाने गुरमुख हर नाली, अकथ कथा कहिए गुर पाए, प्रभ आगमा गोचर दे दिखाए, बिन गुर करनी क्या कार कमाए, हम मैं मेड़ चले गुर शब्द समाए, मनमुख विछड़े खोटी रास, गुरमुख नाम मिले साबास, हर कृपा तारी दसन दास, जन नानक हर नाम धन रास, बिलावल महला तीजा, कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद, त्रिग त्रिग खाया, त्रिग त्रिग सोया, त्रिग त्रिग कापड़ अंग चढ़ाया, त्रिग शरीर कुटंब सहित स्यो, जित हुण खसम ना पाया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवै, अहला जन्म गवाया, दूजा पाव ना दे लिव लागण, जिन हर के चरण विसारे, जग जीवन दा

मुक्त बंद सब तुते होए ऐसा आख वखाणे गुरमुख होवै सो मुक्त कही है। मनमुख बंद विचारे सो जन मुक्त जिस एक लिव लागी सदा रह हर नाले तिनकी गहन गत कही ना जाई सच्चा आप सुवारे। परम पुलाणे से मनमुख कही है नारोवार ना पारे जिसनो नजर करे सोई जन पाए गुर का शब्द संभाले। हर जन माया माहि निस्तारे नानक भाग होवे जिस मस्तक काले मार बिदारे। बिलावल महला तीजा अतुल क्यों तो लिया जाए दूजा होए ता सोजी पाए तिसते दूजा नाही कोए तिसदी कीमत किकू होए। गुर प्रसाद वसै मन आए ताको जाने दुबदा जाए रहाओ आप सराप कसवटी लाए आपे परखे आप चलाए आपे तोले पूरा होए आपे जाने को सोए। माया का रूप सब तिस्ते होए जिसनो मेले सो निर्मल होए जिसनो लाए लगे तसे आए सब सच दिखा ले ता सच सुमाए। आपे लिव तात है आपे आप आप बुझाए आपे जापे आपे सतगुरु शब्द है आपे नानक आख सुनाए आपे। बिलावल महला तीजा साहिब ते सेवको सेव साहिब ते क्या को कह बहाना ऐसा एक तेरा खेल बनया है समय एक समाना। सतगुर परचय हर नाम समाना जिस कर्म होवै सो सतगुर पाए अंदन लागे सही ध्याना रहाओ। क्या कोई तेरी सेवा करे क्या को करे अवमाना जब अपनी जोत खिंचे तू स्वामी तब कोई करो दिखा वखियाना आपे गुर चेला है आपे आपे गुणी निधाना जो आप चलाए तवै कोई चाले जो हर पावे भगवाना। कहत नानक तू साचा साहेब कौन जाने तेरे कामा एक ना करम दे वड़ियाई एक परम पवे अभमाना। बिलावल महला तीजा पूरा थाट बनाया पूरा वेखो एक समाना इस परपंच में साचे नाम की वड़ियाई मत को तरो गुमाना। सतगुर की जिसनो मत आवे सो सतगुर माए समाना एह बाणी जो जियो जाने तिस अंतर रवे हरनामा रहाओ। चहो जुगा का हुण नबेड़ा नर मनुखा नो एक निधाना जत संजम तीर्थ ओना जुगा का धर्म है कलमै कीर्त हरनामा। जुग जुग आपो अपना धर्म है सोध देखो वेद पुराना गुरमुख जिनी ध्याया हर हर जगते पूरे परवाना। कहत नानक सच्चे स्यो प्रीत लाए चूकै मन अभमाना कहत सुनत सबे सुख पावै मानत पाहे निधाना। बिलावल महला तीजा गुरमुख प्रीत जिसनो आपे लाए तित घर बिलावल गुर शब्द सुहाए मंगल नारी गावै आए मिल प्रीतम सदा सुख पाए। हाउ तिन बलिहार है जिन हर मन वसाए हर जन को मिलिया सुख पाई है हर गुण गावे सहे सुभाए रहाओ। सदा रंग राते तेरे चाए हर जो आ वसे मन आए आपे सोभा सद ही पाए गुरमुख मेले मेल मिलाए। गुरमुख राते शब्द रंगाए निकर वासा हर गुण गाए रंग चलू लै हर रस पाए एहो रंग कदे न उतरै साज समाए। अंतर शब्द मिटिया ज्ञान अंधेरा सतगुर ज्ञान मिलिया प्रीतम मेरा जो सच राते तन बौन ना फेरा नानक नाम दरड़ाए पूरा गुर मेरा। बिलावल महला तीजा पूरे गुरते वड्याई पाई अचिंत नाम वसिया मन आई हाँ मैं माया शब्द जलाई दर सच है गुरते सोभा पाई जगदीश सेवो मैं अवर ना काजा अन दिन अंध होवे मन मेरे गुरमुख मांगो तेरा नाम निवाजा रहाओ। मन की प्रतीत मन ते पाई पूरे गुरते शब्द बुझाई जीवन मरण को संसर्वेख है
बहु न मरै न जंपे खै कर ही मैं सब कोट निदान। सतगुर दिखाए गया अभिमान सद ही लागा सही ध्यान अंधन गावै एको नाम। इस युग में वड्याई पाई पूरे गुरते नाम ते आई जै देखा तरिया समाई सदा सुख दाता कीमत नहीं पाई पूरे भाग गुरपुरा पाया अंतर नाम निदान दिखाया गुर का शब्द वत मीठा लाया नानक त्रिसन बुझी मन तन सुख पाया। राग बिलावल महला चौथा कर तीजा एक ओवंकार सतगुर प्रसाद। उद्दम मत प्रभ अंतर जामी ज्यो प्रेरे त्यो करना ज्यो नटुआ तंत वजाए तंती त्यों वाजै जंत जना। जप मन राम नाम रसना मस्तक लिखत लिखे गुर पाया हर हृदय हर बसना रहाओ। माया ग्रस्त प्रमत है प्राणी रख ले वो जन अपना ज्यो प्रहलाद हर नाक्ष ग्रस्यो हर राख्यो हर सरना। कवन कवन की गत मित कही है हर किए पतत पवन्ना ओ ढोवे ढोर हाथ चम चमरे हर उदरियो परयो सरना। प्रभ दीन दयाल भगत पवतारनो हम पापी राख पपना। हर दासन दास दास हम करियो जन नानक दास दसन्ना। बिलावल महला चौथा। हम मूर्ख मुग्ध अज्ञान मती सरनागत पुरखिया जन्मा कर कृपा रख लेवो मेरे ठाकरो हम पाथर हीन अकर्मा। मेरे मन पज राम नाम मैं रामा गुरमत हर रस पाईए होर त्यागो निफल कामा रहाओ। हर जन सेवक से हर तारे हम निर्गुण राख उपमा तुझ बिन अवर ना कोई मेरे ठाकुर हर जपिया वड्डे करमा। नामहीन त्रिग जीवते तिन वर दुख सहमा ओए फिर जोन पवाईए मंद भागी मूड़िया करमा। हर जन नाम आधार है तुर पूर्व लिखे वड़कर्मा गुर सतगुर नाम दृढ़ाया जन नानक सफल जनमा। बिलावल महला चौथा। हमरा चित लुभत मोहे बिखिया बहु दुर्बत मैल परा तुमरी सेवा करना सके प्रभ हम क्यों कर मुग्ध तारा। मेरे मन जप नरहर नाम नरहरा जानी ऊपर कृपा प्रभ तारी मेरा सतगुर पार परा रहाओ। हमरे पिता ठाकर प्रभ स्वामी हर देहो मती जस करा तुमरा संग लगे से उधरे ज्यो संग काष्ट लोहो तरा। सागत नर होची मत मध्यम जिन हर हर सेवना करा ते नर भागहीन दोचारी ओए जन्म ओए फिर मरा। जिन कहो तुम हर मेलो स्वामी ते नाए संतोख गुरसरा दुर्मत मैल गई हर भजया जन नानक पार परा। बिलावल महला चौथा। आवो संत मिलो मेरे भाई मिल हर हर कथा करो हर हर नाम बोए थे कल जुग खेवट गुर सब तरो। मेरे मन हर गुण हर उचरो मस्तक लिख थिरखे गुण गाए मिल संगत पार परो रहाओ। काया नगर में राम रासी उत्तम क्यों पाई अब दे जन करो। सतगुर सेव सफल हर दर्शन मिल अमृत हर रस पियो। हर हर नाम अमृत हर मीठा हर संतो चाख दिखाओ। गुरमत हर रस मीठा लागा तिन बिसरे सब बिखरसो।

एक ओंकार सतगुर प्रसाद बोलो भैया राम नाम पतत पावनो हर संत भगतारनो हर भरपुरे रहा जल थले राम नाम नित गाइये हर दुख बिसारनो रहाओ हर किया है सफल जन्म हमारा हर जपया हर दुख बिसार नहारा गुर भेटिया है मुक्त दाता हर की हमारी सफल जाता मिल संगति गुण गावनो मन राम नाम करया सा पाओ दूजा बिनस बिनासा विच आसा होए निरासी सो जन मिलिया हर पासी कोई राम नाम गुण गावनो जन नानक तिस पग लावनो राग बिलावल महला पंजवां चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद नदरी आवे तिस्यो मोह क्यों मिलिया प्रभ नासी तोहे कर कृपा मोय मार्ग पावो सात संगत कै अंचल लावो क्यों तरिय बिख्या संसार सतगुर बोहित पावे पार रहाओ पवन चुलारे माया दे हर के भगत सदा थिर से हर सोग ते रहे निरारा सिरी ऊपर आप गुरु रखवारा पाया वेड़ माया सर भयंगा हमे पचे दीपक देख पतंगा सगल सिंगार करे नहीं पावे जा होए कृपाल ता गुरु मिलावे हाँ फिरो उदासी मैं एक रतन दसाया निर्मोल की हीरा मिले ना उपाया हर का मंदिर तिसमें लाल गुर खोलिया पर्दा देख पही निहाल जिन चाखिया तिसे आया साध जो गुंगा मन में मिसमाद आनंद रूप सब नदरी आया जन नानक हर गुण अक्स माया बिलावल महला पंजवा सर्व कल्याण किए गुरुदेव सेव के अपनी लायो सेव बिगन ना लागे जप अलाख्या पेव तरत पुनीत पई गुण गाए दुर्त गया हर नाम ते आए रहाओ सबनी थाई रव्या आप आद जुगाद जाकावड प्रताप गुर प्रसाद ना होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब थाई बूठे सब सुख पाए सदगुर तूठे पार ब्रह्म प्रभ भय रखवाले जिथे किथे दिसे नाले नानक दास खसम प्रतपाले बिलावल महला पंजवा सुख निदान प्रीतम प्रभ मेरे अगणत गुण ठाकर प्रभ तेरे मोहे अनाथ तुमरी सरनाई कर कृपा हर चरण ते आई दया करो बसो मन आए मोहे निर्गुण लीजे लड़ लाए रहाओ प्रभ चित आवे ता कैसी भीड़ हर सेवक नाही जंपीड़ सर्व दुख हर सिमरत नसे जा कै संग सदा प्रभ बसै प्रभ का नाम मंतन आधार बिसरत नाम हो तनशार प्रभ चित आए पूर्ण सब काज हर बिसरत सब का मोहताज चरण कमल संग लागी प्रीत बिसर गई सब दुर्मत रीत मन तन अंतर हर हर मंत नानक भगतन कै कर सदा आनंद राग बिलावल महला पंजवा कर दूजा यानड़िए कै कर गावना एक ओंकार सतगुर प्रसाद मैं मन तेरी टेक मेरे प्यारे मैं मन तेरी टेक अवर स्याण पां बिरथिया प्यारे राखण कौ तुम एक रहाओ सतगुर।

पूरा जे मिले प्यारे सो जन होत निहाला गुरु की सेवा सो करे प्यारे जिसनो होए दयाला सफल मूर्त गुरदेव स्वामी सर्व कला परपूरे नानक गुर पार ब्रह्म परमेश्वर सदा सदा हजूरे सुन सुन जीवा सोए।

आप ही गुप्त आप प्रगटना, आप ही घट घट आप लिपना, आपे अवगत आप संगरचना, कहो नानक प्रभ के सब जचना। बिलावल महला पंजवा, पूले मार्ग जिन्हें बताया, ऐसा गुरवड भागी पाया, सिमर मना राम नाम चितारे, बस रहे हृदय।

जो तुम करो सोई भला, मन लेता मुक्ता, सगल समग्री तेरी आ, सब तेरी जुगता, चरण पखारो कर सेवा, जेठा कृपाव है, हो कृपाल दयाल प्रभ, नानक गुण गावै। बिलावल महला पंजवा, मृत हसै श्री उपरे, पशुआ नहीं बूझै, बाद साध हंकार में, मरना नहीं सूझै, सतगुर से वो अपना, काहे फिर अपागे, देह कुसुम्बा रंगला, काहे पूल लागे, रहाओ कर कर पाप दर्पण की, कर कर पाप दर्ब किया, वर्तन कहताई, माटी से माटी रली, नांगा उठ जाई, जा कह किया श्रम कर, ते बैर विरोधी, अंत काल पा जाहेंगे, काहे जलो क्रोधी, दास रेण सोई होवा, जिस मस्त कर्मा, कहो नानक बंधन छुटे, सतगुर की सरना। बिलावल महला पंजवा, पिंगल पर्वत पार परे, खल चतुर्भुज कीता अंदर।

देव सुहनी साध के बीजन टोलावाओ रहाओ। अमृत गुण संत बोलते सुन मने पीलावाओ। ओवा रस में सांत तृप्त होए बिखे जलन बुझावाओ। जब भगत करे संत मंडली तिन मिल हर गावाओ। करो नमस्कार भगत जान तूर मुख लावाओ। उठत बैठत जपो नाम एहो कर्म कमावाओ। नानक की प्रभ बेनती हर शरण समावाओ। बिलावल महला पंजवा एहो सागर सोई तर जो हर गुण गाए साध संगत कै संग वसै वड पागी पाए। सुन सुन जीवै दास तुम बाणी जन आखी प्रगट पई सब लो मैं सेव की राखी रहाओ। अग्न सागर ते काढ़िया प्रभ जलन बुझाई। अमृत नाम जल संचिया गुर पै सहाई। जन्म मरण दुख काटिया सुख का थान पाया। काटी सिलक प्रमोह की अपने प्रभ पाया। मत कोई जानो अवर काश सब प्रभ के हाथ। सर्व सुख नानक पाए संग संतन साथ। बिलावल महला पंजवा बंधन काटे आ प्रभ होवा कृपाल। दीन दयाल प्रभ पार ब्रह्म ताकी नदर निहाल। गुरपुरे कृपा करी काटिया दुख रोग। मन तन शीतल सुखी पाया प्रभ त्यावन जोग रहाओ। औखद हर का नाम है जित रोग ना व्यापै। साध संग मन तन हितै फिर दुख ना जापै। हर हर जापिए अंतर लिवलाई। किलवख उतरै शुद्ध होए साधु सरनाई। सुनत जपत हर नाम जस ताकी दूर बलाई। महामंत्र नानक कथै हर के गुण गाई। बिलावल महला पंजवा पहते उपजै भगत प्रभ अंतर होए सांत। नाम जपत गोविंद का बिनसै परम प्रांत। गुरपुरा जिस पेटिया ता कै सुख प्रवेश। मन की मत त्यागी सुनिया उपदेश रहाओ। सिमरत सिमरत सिमरिया सो पुरख दा तार। मन ते कवो न विसरै सो पुरख अपार। चरण कमल स्यों रंग लगा अचरज गुरदेव। जा कहो कृपा करहो प्रभु ता कहो लाभो सेव। निध निधान अमृत पिया मन तन आनंद। नानक कबो ना विसरै प्रभ परमानंद। बिलावल महला पंजवा त्रिशन बुझी ममता गई। नाठे पै परमा थित पाई आनंद पया। गुर कीने धर्मा गुरपुरा आराध्या। बिनसी मेरी पीर तन मन तन मन सब शीतल पया। पाया सुखबीर रहाओ सोवत हर जप जागया। पेख्या बिस्माद पी अमृत तृप्ता सिया ता का अचरज स्वाद। आप मुक्त संगी तरे कुल कुटां ब्योधारे। सफल सेवा गुरुदेव की निर्मल दरबारे। नीचा नाथया जान मैं निर्गुण गुणहीन। नानक कहो कृपा पई दास अपना कीन। बिलावल महला पंजवा हर भगता का आसरा अन नाही ठाओ। तान दीबाण परवार तन प्रभ तेरा नाओ। कर कृपा प्रभ अपनी अपने दास रख लिए। निंदक निंदा कर पचे जमकाल ग्रसिए रहाओ। संता एक त्यावना दूसर को नाहे। एक सिया गै बेनती रव्या सर्वथाए। कथा पुरातन यों सुनी भगतन की बानी। सगल दुष्ट खंड खंड की है जान लिए मानी। सत बचन नानक कहे प्रगट सब माहे। प्रभ के सेवक शरण प्रभ तिन को पौ नाहे। बिलावल महला पंजवा
बंधन काटै सो प्रभु जाकै कल हाथ, अवर कर्म नहीं छूटी है राखो हरनाथ। तौ शरणागत माधव पूर्ण दयाल, छूट जाए संसार ते राखै गोपाल राओ। आसा परम विकार मोह इनमें लोभाना, चूट समग्री मन वसी पार ब्रह्म ना जाना। परम ज्योत पूर्ण पुरख सब जी तुम्हारे, ज्यो तू राखै त्यो रहा प्रभ अगम्य अपारे। करण कारण समर्थ प्रभ देह अपना नाओ, नानक तरिए साध संग हर हर गुण गाओ। बिलावल महला पंजवा, कवन कवन नहीं पतरिया तुमरी प्रतीत, महामोहनी मोहया नर्क की रीत। मन खुट हर तेरा नहीं विश्वास, तू महा उदमादा खरका पैखर तव छुटै जो ऊपर लादा रहाओ। जप तप संजम तुम खंडे, जम के दुख डांड सिमरै नाही जोन दुख निर्लजे पांड। हर संग सहाई महामीत तेस्यों तेरा भेद, बीदा पंच बटवारई उपजो महाखेद। नानक तिन संतन शरणागति, जिन मन वस कीना तन तन सर्बसे अपना, प्रभ जन कौ दीना। बिलावल महला पंजवा, उद्यम करत आनंद भया सिमरत सुखसार।

मुखे अमृत पीवा रहाओ जी जंत सब सुख बसे सब कै मन लोच पर उपकार नित चितवते नाही कछ पोच धन सो थान बसंत धन जह जपिए नाम कथा कीर्तन हर अत घना सुख सहज विश्राम मन ते कदे न विसरे अनाथ को नाथ नानक प्रभ शरणागति जाकै सब किश हाथ बिलावल महला पंजवा जिन तू बंद कर छोड़िया फुर सुख मैं पाया सदा सिमर चरनार बिंद शीतल होताया जीवित या अथवा मोया किश काम न आवै जिन एहो रचन रचाया को ते स्यो रंग लावै रहाओ हरे प्राणी उसन सीत करता करै काम ते काढ़ै कीरी ते अस्थी करै टूटा ले गंढै अंडज जेरज सेतज उत्पुजा प्रभ की यह किरत किरत कमावन सर फल रविय हर निरत हम ते कशु ना होवना सरन प्रभ साद मोह मगन कूप अंध ते नानक गुर काड बिलावल महला पंजवा खोजित खोजित मैं फेरा खोजो बनथान अशल्या पे अशल्या शेदा भेद प्रभ ऐसे भगवान कब देखो प्रभ अपना आत्म कै रंग जागन ते सपना पला बसिए प्रभ संग रहाओ वर्ण आश्रम शास्त्र सुनो दर्शन की प्यास रूप ना रेखना पंच तत् ठाकर अबनास ओहो स्वरूप संतन कह विरले जोगीसर कर कृपा जाको मिले तन तन ते ईसर सो अंतर सो बाहरे बिनसे तह परमा नानक तिस प्रपेटिया जाके पूर्ण कर्मा बिलावल महला पंजवा जी जंत सो प्रसन्न पए देख प्रभ प्रताप कर जो तारिया सतगुरु कर हरे आप खात खर्चत निबहत रहे गुरसब दया खूट पूर्ण पई समगरी कबहू नहीं टूट रहाओ साध संग आराधना हर निद्या पार धर्म अर्थ हर काम मोख देते नहीं बार भगत आराध्या एक रंग गोबिंद गोपाल राम नाम तन संचया जाका नहीं सुमार शरण परे प्रभ तेरिया प्रभ की वड्याई नानक अंत ना पाई है बेअंत गुसाई बिलावल महला पंजवा सिमर सिमर पूर्ण प्रभु कार्ज पै रास करतारपुर करता वसै संतन के पास रहाओ बिघन न को लागता गुर पै अरदास रखवाला गोबिंद राय भगतन की रास तोट न आवे कदे मूल पूर्ण भंडार चरण कमल मंतन बसे प्रभ अगम अपार बस्त कमावत सब सुखी किशु न दिसै संत प्रसाद भेटे प्रभु पूर्ण जगदीसै जय जयकार सबै करै सच थान सुहाया जप नानक नाम निधान सुख पूरा गुर पाया बिलावल महला पंजवा हर हर हर आराधिया होइए आरोग रामचंद की लष्ट का जिन मारिया रोग रहाओ गुरपुरा हर जापिया नित कीचै भोग साध संगत कह वारण मिलया संयोग जिस सिमरत सुख पाई है बिन सहबे होग नानक प्रभ शरणागति करण कारण योग राग बिलावल महला पंजवा दो पदे कर पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद अवरयो पाप सब त्यागया दारू नाम लया ताप पाप सब मिटे रोग शीतल मन पया गुरपुरा आराध्या सगला दुख गया राखन हारे राखिया अपनी करमया रहाओ बहा पकड़ प्रभ काढ़िया की ना अपनया सिमर सिमर मन तन सुखी नानक निरपया बिलावल महला पंजवा कर धर्मस्तक थापिया
ਨਾਮ ਦੀਨੋ ਦਾਨ ਸਫਲ ਸੇਵਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੀ ਤਾਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹਾਨ ਆਪੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖਤਾ ਭਗਤਨ ਕੀ ਆਨ ਜੋ ਜੋ ਚਿਤ ਵੈ ਸਾਧ ਜਨ ਸੋ ਲੇਤਾ ਮਾਨ ਰਹਾਓ ਸਰਨ ਪਰੇ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਜਨ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਪ੍ਰਾਨ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਨਾਨਕ ਮਿਲੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕਾ ਆਸਰਾ ਦੀਨੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਂਗਤ ਜਨ ਪਰੇ ਤਾਂ ਕਾ ਸਤ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰਾਖਣ ਹਾਰਿਆ ਪਾਰ ਪ੍ਰਭ ਤਾਂ ਕੀ ਨਿਰਮਲ ਸੇਵ ਰਾਮ ਰਾਜ ਰਾਮਦਾਸ ਪੁਰ ਕੀਨੇ ਗੁਰਦੇਵ ਰਹਾਓ ਸਦਾ ਸਦਾ ਹਰ ਧਿਆਈਐ ਕਿਛ ਬਿਘਨ ਨਾ ਲਾਗੈ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਸਲਾਹੀਐ ਪਏ ਦੁਸ਼ਮਣ ਭਾਗੈ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਮਨ ਤਨ ਪ੍ਰਭ ਆਰਾਧੀਐ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸਮਾਗੈ ਉਚਰਤ ਗੁਣ ਗੋਪਾਲ ਜਸ ਦੂਰ ਤੇ ਜਮ ਭਾਗੈ ਰਾਮ ਨਾਮ ਜੋ ਜਨ ਜਪੈ ਆਂਦਨ ਸਦ ਜਾਗੈ ਤੰਤ ਮੰਤ ਨਹਿ ਜੋ ਹਈ ਤਿਤ ਤਾਖ ਨਾ ਲਾਗੈ ਰਹਾਓ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮਦ ਮਾਨ ਮੋਹ ਬਿਨਸੇ ਅਨਰਾਗੈ ਆਨੰਦ ਮਗਨ ਰਸ ਰਾਮ ਰੰਗ ਨਾਨਕ ਸਰਨਾਗੈ ਬਿਲਾਵਲ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਜੀ ਜੂਤ ਵਸ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਜੋ ਕਹਿ ਸੋ ਕਰਨਾ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਭਉ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਦੁਖ

गावत प्रभ नाम सहज सुख आनंद रस पूर्ण सब काम रहाओ। जलन बुझी शीतल पय राखे प्रभ आप, नानक प्रभ शरणागति जा कावड़ परताप। बिलावल महला पंजवा तरत सुहावी सफल थान, पूर्ण पय काम पौ नाठा प्रभ मिट गया रव्या नित राम। सात जना कै संग बस्त सुख सहज विश्राम, साई कड़ी सुलखणी सिमरत हर नाम रहाओ। प्रगट भय संसार मैं फिरते पहनाम, नानक ते शरणागति कड़कड़ सब जान। बिलावल महला पंजवा रोग मिटाया आप प्रभ उपजया सुख सात, वट प्रताप अचरज रूप हर की नीदात। गुर गोविंद कृपा करी राख्या मेरा पाई, हम तिसकी शरणागति जो सदा सहाई रहाओ। बिरथी कदे ना हो वही जन की अरदास, नानक जोर गोविंद का पूर्ण गुणतास। बिलावल महला पंजवा मर मर जन्मे जन बिसरिया, जीवन का दाता पार ब्रह्म जन सेवया अंदन रंगराता। सात सहज आनंद घना पूर्ण पई आस, सुख पाया हर साध संग सिमरत गुणतास रहाओ। सुन स्वामी अरदास जन तुम्हें अंतर जामी, थान थनंतर रव रहे नानक के स्वामी। बिलावल महला पंजवा ताती वाओ न लगई, पार ब्रह्म शरणाई चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे ना पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया का लिवलाई रहाओ। राख लिए तिन रखन हार सब ब्याद मिटाई, कहो नानक कृपा पई प्रभ पय सहाई। बिलावल महला पंजवा अपने बाल के आप रखिया नो, पार ब्रह्म गुरुदेव सुख सात सहज आनंद पय पूर्ण पई सेव रहाओ। भगत जना की बेनती सुनी प्रभ आप, रोग मिटाए जी वालिया नो जा कावड़ प्रताप। दोख हमारे बख्शिया नो अपनी कल तारी, मन बाइत फल दित्या नो नानक बलिहारी। राग बिलावल महला पंजवा चौप दे दुप दे कर शेवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। मेरे मोहन श्रवणी यह ना सुनाए, साकत गीत नाद तुन गावत बोलत बोलिया जाए रहाओ। सेवत सेव साध सेवाओ सदा करो करताए, अपैदान पावो पुरख दाते मिल संगत हर गुण गाए। रसना अगह गुण राती नैन दर्श रंग लाए, हो कृपाल दीन दुख पंजन। मोहे चरण हृदय वसाए, सब हूं तलै तलै सब ऊपर, एह दृष्ट दृष्टाए अभमान खोए खोए खोए खोई हों। मोको सतगुर मंत्र दृढ़ाए, अतुल नह तुलिए भगत वच्छल कृपाए। जो जो शरण पर्यो गुरु नानक अपह दान सुख पाए। बिलावल महला पंजवा प्रभ जी तू मेरे प्राण आधार, नमस्कार डंडौत बंदना अनक बार जाओ बार रहाओ। उठत बैठत सोवत जागत एहो मन तुझे चितार, सुख दुख इस मन की बिरथा तुझ ही आगे सार। तू मेरी ओट बल बुद्ध तन तुम ही, तुम है मेरा परिवार। जो तुम करहो सोई पल हमर, पेख नानक सुख चरणार। बिलावल महला पंजवा सुनियत प्रभ तो सगले उदाहरण, मोह मगन पतत संग प्राणी ऐसे मने विसारन रहाओ। संच बिख्याले ग्राह जकीनी अमृत मनते डारन, काम क्रोध लोभ रत निंदा सत संतोख बेदारन। इनते काट लेहो मेरे स्वामी हार परे तुम सारन, नानक की बेनंती प्रप है साध संक रंक तारन। बिलावल महला पंजवा संतन कै सुनियत प्रभ की बात,
कथा कीर्तन आनंद मंगल तोन पूर रही दिन से रात रहाओ। कर कृपा अपने प्रभ कीने नाम अपने की कीनी दात। आठ पहर गुण गावत प्रभ के काम क्रोध इस तन ते जात। तृप्त अघाए पेख प्रभ दर्शन अमृत हर रस भोजन खात। चरण सरन नानक प्रभ तेरी कर कृपा संत संग मिलात। बिलावल महला पंजवा। राख लिए अपने जन आप कर कृपा हर हर नाम दीनो बिरस गए सब शोक संताप। रहाओ गुण गोविंद गावो सब हर जन राग रतन रसना आलाप। कोट जन्म की तृष्णा निवारी राम रसायन आत्म त्राप। चरण गहे शरण सुखदाते गुर के बचन जपे हर जाप। सागर तरे परम पै बिनसे कहो नानक ठाकर प्रताप। बिलावल महला पंजवा। ताप लाया गुर सृजनहार सतगुर अपने कौ बल जाई जिन पैज रखी सारे संसार। रहाओ कर मस्तक तार बालक रख लीनो प्रभ अमृत नाम महारस दीनो। दास की लाज रखे मेहरवान गुरु नानक बोले दरगह परवान। राग बिलावल महला पंजवा। चौपदे दोपदे कर सतवा एको ओंकार सतगुर प्रसाद। सतगुर शब्द उजारो दीपा बिनस्यो अंधकार तह मंदर रतन कोठड़ी खुली अनूपा। रहाओ बिस्मन बिस्म पए जो पेखियो कहन ना जाए वड़ियाई। मगन पए ऊहा संग माते ओत पोत लपटाई। आल जाल नहीं कछु जंजारा अहम बुद्ध नहीं पोरा। ऊचन

अर्क कामनी सेज सोहनी छोड़ न मैं जावत है, उर्ज रहो इंद्री रस प्रेरियो बखैठ गौरी खावत है। तरण को मंदर साज सवारो पावक तलै जरावत है, ऐसे गढ़ में ऐठा ठीलो फूल फूल क्या पावत है। पंच दूत मूड पर ठंडे केस गहे फेर आवत है, दृष्ट ना आवे अंधा ज्ञानी सोए रहो मदमावत है। जाल पसार चोग बिस्थारी पंखी जो फाहावत है, कहो नानक बंधन काटन कहो मैं सतगुर पुरख ते आवत है। बिलावल महला पंजवा हर हर नाम अपारिया मोली, प्राण प्यारो मन आधारो चीत चितवाओ जैसे पांत बोली रहाओ। सह समायो ग्रह बतायो रंग रंगी मेरे तन की चोली, प्रेम मुख लागो जाओ वट पागो सुहाग हमारो कतो न डोली। रूप ना धूप ना गंध ना दीपा ओत पोत अंग अंग संग मौली, कहो नानक प्रेरवि सुहागन अतनी की मेरी बनी खटोली। बिलावल महला पंजवा गोबिंद गोबिंद गोबिंद मई, जब ते पेटे साथ दयारा तब ते दुर्मत दूर पही रहाओ। पूर्ण पूर्ण रहे हो संपूर्ण शीतल सां दयाल दई, काम क्रोध तृष्णा अहंकारा तंते होए सगल खई। सत संतोख दया धर्म सुच संतन ते हो मंत लई, कहो नानक जिन मनो पछानिया तिन कहो सगली सोझ पई। बिलावल महला पंजवा क्या हम जी जंत बेचारे, वर्ण ना साकै एक रोमाई ब्रह्म महेश सिद्ध मुनि इंदिरा। बेअंत ठाकुर तेरी गत नहीं पाई, क्या कथिया किश कथन ना जाई। जह जह देखा तह रया समाई रहाओ, जय महाभयान दुख जम सुनिया तह मेरे प्रभ तू है सहाई। शरण पर्यो हर चरण गए प्रभ गुरु नानक बूझ बुझाई। बिलावल महला पंजवा आगम रूप अबनासी करता, पतत पवित एक निमख जपाई है। अचरज सुनियो प्राप्त भेट ले संत चरण चरण मन लाई है। कित विधिया कित संयम पाई है, कौ सुरजन के जुगति त्याई है रहाओ। जो मानुख मानुख की सेवा ओ तिसकी लई लई फुन जाई है। नानक सरन सरन सुख सागर मोहे टेक तेरो एक नाई है। बिलावल महला पंजवा संत सरन संत टहल करी, तंद बंद अर सगल जंजारो अवर काज ते छूट परी रहाओ। सुख सहज अर करो आनंदा गुरते पायो नाम हरी, ऐसो हरस बरना सा कहो गुरपुर है मेरी उल्ट तरी। पेख्यो मोहन सब कै संगे ऊन ना काहू सगल भरी, पूर्ण पूर रहो कृपा निध कहो नानक मेरी पूरी परी। बिलावल महला पंजवा मन क्या कहता हौ क्या कहता, जान प्रवीण ठाकुर प्रभ मेरे तिसे आज्ञा क्या कहता रहाओ। अन बोले कहो तुही पछाने जो जियान मैं होता, रे मन काय कहां लो डहके जो पेहती संग सुनता। ऐसो जान पय मन आनंद आन न बियो करता, कहो नानक गुर पय दयारा हर रंग न कभू लहता। बिलावल महला पंजवा निंदक ऐसे ही चर परी है, एह निशानी सुनो तुम पाई जो कालर पीत गिरिय रहाओ। जो देखे शिदर तो निंदक उमा है, पलो देख दुख परी है। आठ पहर चितवे नहीं पहुंचे बुरा चितवत चितवत मरी है। निंदक प्रभु पुलाया काल नेर आया, हर जन स्यो बाद उठरी है। नानकारा खाया प्रभ स्वामी क्या मानस बपरे करी है। बिलावल महला पंजवा ऐसे काहे पूल परे, करे करावे मुकर पावे पेखत सुनत सदा संघरे रहाओ।
ਕਾਜ ਬਿਹਾਜਨ ਕੰਚਨ ਛਾਡਨ ਬੈਰੀ ਸੰਗ।

सिमर सिमर सिमर सुख पाया, चरण कमल रख मन माही, ताकि शरण परयो नानक दास, जाते उपर को नाही। बिलावल महला पंजवा, सदा सदा जपिए प्रभ नाम, जरा मरा कहीं दुख न व्यापै, आगै दरगै पूर्ण काम। रहाओ आप त्याग परिया नित सरणी, गुर ते पाइए हो निदान, जन्म मरण की कटिया फांसी, साची दरगै का निशान। जो तुम करहो सोई पल मानो, मन ते छूटै सगल गुमान, कहो नानक ता की सरनाई, जाका किया सगल जहान। बिलावल महला पंजवा, मन तन अंतर प्रभ आही, हर गुण गावत पर उपकार नित, तिस रसना का मोल किश नाही। रहाओ कुल समूह उदरेखन पीतर, जन्म जन्म की मल लाही, सिमर सिमर स्वामी प्रभ अपना, आनंद सेती बिखिया बन गाही। चरण प्रभु के बोहित पाए, पव सागर पार पराही, संत सेवक भगत हरता के, नानक मन लागा है ताही। बिलावल महला पंजवा, तीरव देख तुम्हारे रंगा, तू ही स्वामी अंतर जामी, तू ही वसै साध कै संगा। रहाओ खिन मैं थाप निवाजे ठाकर, नीच कीड़ते करह रजंगा, कबहू ना बिसर ही ये मोरे ते, नानक दास ही दान मंगा। बिलावल महला पंजवा, अचित पूजा जो गोपाल, मन तन अर्प रखो हर आगै, सर्ब जिया का है प्रतपाल। रहाओ शरण समर्थ अकथ सुखदाता, कृपा सिंध बड़ो दयाल, कंठ लाए राखे अपने को, तिसनो लगे न ताती बाल। दामोदर दयाल स्वामी, सर्बस संत जना तलमाल, नानक जाचक दर्श प्रभ मांगै, संत जना की मिलै रवाल। बिलावल महला पंजवा, सिमरत नाम कोट जतन पए, साध संग मिल हर गुण गाए, जम दूतन कौ त्रास अहे। रहाओ जेते पुनः चरण से कीने, मंतन प्रभ के चरण गहे, आवन जान परम पौ नाठा, जन्म जन्म के किल विख दहे। निरपौ होए पजो जगदीश, एहो पदार्थ वड भाग लहे, कर कृपा पूर्ण प्रभ दाते, निर्मल जस नानक दास कहे। बिलावल महला पंजवा, सुलही ते नारायण राख, सुलही का हाथ कहीं ना पहुंचे, सुलही होए मुआ ना पाक। रहाओ काढ़ कुठार खसम सिर काटिया, खिन में होए गया है खाक, मंदा चितवत चितवत पचया, जिन रचिया तिन दीना ताक। पुत्र मीत तन किछु ना रहयो, सो छोड़ गया सब पाई साक, कहो नानक तिस प्रभ लिहारी, जिन जन का कीनो पूर्ण वाक। बिलावल महला पंजवा, पूरे गुर की पूरी सेव, आपे आवर्तै स्वामी, कार्ज रास किया गुरदेव। रहाओ आद मद प्रभ अंत स्वामी।

निरंकार प्रभ पेखी है बिस्माद चख अंध पूर्ण साध नह डोलिय इतयूत प्रभ बसे हर हर चीत ते नाहे नरक निवास नित सिमर प्रभ गुणतास ते जमना पेख नैन सुन मोहे अनहत बैन हर शरण सूर गोपाल प्रभ भगत।

एक में एक अंकार निराला, हमारा जोनी जात ना जाला, आगमा गोचर रूप ना रेखिया, खोइत खोइत कटकट देखिया, जो देख देखावे तिसको बल जाई, गुर प्रसाद परम पद पाई, क्या जब जापो बिन जगदीसै, गुर के शब्द महल कर दीसै रहाओ। दूजे पाए लगे पछताने, जम दर बांधे आवन जाने, क्या ले आवे क्या ले जाहे, सिर जम काल से चोटा खाहे, बिन गुर शब्द ना छूट सकोए, पाखंड कीने मुक्त ना होए, आपे सच किया कर जोड़, अंडज फोड़ जोड़ विछोड़, धरत आकाश किए बैसन को थाओ, रात दिनंत किए पौ पहाओ, जिन किए कर वेखण हारा, अवर ना दूजा सिरजनहारा। तृतीया ब्रह्मा विष्णु महेशा, देवी देवो पाए वेसा, ज्योति जाति गणत ना आवै, जिन साजी सो कीमत पावै, कीमत पाए रहया भरपूर, किस नेड़ै किस आखा दूर। चौथे उपाए चारे बेदा, खानी चारे बाणी पेदा, अष्ट दशा खड़की ने उपाए, सो बुझे जस्या बुझाए, तीन समावै चौथे वासा, प्रणवत नानक हम ताके दासा, पंचमी पंच भूत बेताला, आपा गोचर पुरख निराला, एक ब्रह्म पूखे मोह प्यासे, एक रस चाख शब्द तृप्तासे, एक रंगराते एक मरतूर, एक दर कर सच देख दूर, झूठे को नाही पत नाओ, कबो न सूचा काला काओ, पिंजर पंखी बंदिया कोए, शेरी परमै मुक्त न होए, तव छूटै जा खसम छड़ाए, गुरमत मेले भगद रड़ाए, खष्टी खट दर्शन प्रब साजे, अनहद शब्द निराला वाजे, जे प्रभ पावै ता महल बुलावै, शब्दे भेदे तौ पद पावै, कर कर वेस खपै जल जावै, साचे साचे साच समावै। सप्तमी सत संतोख शरीर, सात समुंद भरे निर्मल नीर, मज्जन सील सचरदै विचार, गुर कै शब्द पावै सब पार, मन साचा मुख साचो पाए, सच नी साने ठाक ना पाए, अष्टमी अष्ट सिद्ध बुद्ध साधै, सच नेह केवल कर्म आराधै, पौन पानी अग्नि बिसराओ, तही निरंजन साचो नाओ, तिसमै मनुआ रहया लिवलाए, प्रणवत नानक काल ना खाए। नाओ नौमी नवे नाथ नव खंडा, घट घट नाथ महाबलवंडा, आई पूता एहो जग सारा, प्रभ आदेश याद रखवारा, आज जुगा दी है पी होग, ओह परंपर करना जोग, दसमी नामदान इशनान, अंदन मज्जन सच्चा गुण ज्ञान, सच मैल न लागै भ्रम पौ पागै, बिलम न टूट सका चै तागै, ज्यों तागा जग एवै जानो, अस्त्र चा अस्त्र जी साच रंग माणो, एकादशी करदै वसावै, हिंसा ममता मोह चुकावै, फल पावै ब्रत आत्म चीनै, पाखंड राज तत् नहीं बीनै, निर्मल निराहार नेह केवल, सूचे साचे ना लागै मल, जै देखो तहे को एका, होर जियो पाए वेको वेका, फलो हार किए फल जाए, रस कस खाए साध गवाए, कूड़ै लालच लपटै लपटाए, छूटै गुरमुख साच कमाए, द्वादश मुंद्रा मन अवदूता, अहनस जागै कवै ना सूता, जागत जाग रह लिवलाए, गुर परचै तस खाल ना खाए, अतीत पहे मारे बैराई, प्रणवत नानक तैं लिवलाई, द्वादशी दया दान कर जाणै, बाहर जातो पीतर आणै, बरती बरत रह नेकाम, अजपा जाप जपै मुख नाम।
तीन पवन मैं एको जाना सब सुत संयम साच पछाणै तेर सतरवर समुंद किनार है अमृत मूल शिखर लिवतार है डर डर मरै ना बूढ़ै कोए निडर बूढ़ मरै पत खोए डर मैं घर घर मैं डर जाना तख्त निवास सच मन पाणै चौदस चौथे थावै लै पावै राजस तामस सतकाल समावै ससियर कै कर सूर समावै जो जोत की कीमत पावै चौदस पवन पताल समाए खंड ब्रह्मंड रहा लिवलाए अमावस्या चंद गुप्त गैनार बुझो ज्ञानी शब्द विचार ससियर गगन जोत त्यो लोई कर कर वेखै करता सोई गुरते दिसै सो तिस ही माहे मनमुख पूले आवै जाए घर दर थाप थिरथान सुहावै आप पछाणै जा सतगुर पावै जह आसा तह बिनस बिनासा फूटै खप्पर दुबदा मनसा ममता जाल ते रह उदासा प्रणवत नानक हमता के दासा बिलावल महला तीजा वार सत कर दसवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद आदित वार आद पुरख है सोई आपे वरत वरना कोई ओत पोत

ब्रह्म दिसै ब्रह्म सुनिया एक एक वखाणिया आत्म पसारा करनहारा प्रभ बिना नहीं जानिया आप करता आप पहुता आप कारण किया बिनवंत नानक से ही जाने जिन्नी हर रस पिया बिलावल महला पंजवा संत एक ओंकार सतगुर प्रसाद सखी आओ सखी वस आओ सखी असी फिरका मंगल गावे तजमान सखी माते अपने प्रीतम पावे तजमान मोह विकार दूजा सेव एक निरंजन हो लग चरण सरन दयाल प्रीतम सगल दुर्त बिखंडनो होए दास दासी ताजो दासी बहुड बिदी ना तावा नानक पयम पै करो कृपा ताम मंगल गावा अमृत प्रेका नाम मैं अंधले टोहनी ओह जो है बहु प्रकार सुंदर मोहनी मोहनी महाबचित्र चंचल अनक भाव दिखावे होए टीठ मीठी मन लागे नाम लैण ना आवे गृह बने तीरे बर्त पूजा बाट काटे जोहनी नानक पयम पै दया तारो मैं नाम अंदरे टोहनी मोहया नाथ प्रे नाथ ज्यो जानो त्यो रखो चतराई मोहे नाए रिझावो कै मुखो नह चतर सुगर सुजान बेती मोहे निर्गुण गुण नहीं

मोहे मछली तुम नीर तुझ बिन क्यों सर, मोहे चात्रक तुम बूंद तृप्तो मुख पर, मुख पर हरे प्यास मेरी जी हिया प्राण पते, लाडले लाड लड़ाए सब मैं मिल हमारी होए गते, चीत चितवो मिटंधारे ज्यो आस चकवी दिन चर, नानक पयम पै प्रे संग मेली मछली नीर ना विसर। तन तन हमारे भाग कर आया फिर मेरा, सोहे बंक द्वार सगला बनहरा, हर हरा स्वामी सुखैगामी अंत मंगल रसकना, नवल नवतन नाहो बाला कवन रसना गुणपना, मेरी सेज सोही देख मोही सगल सहसा दुखरा, नानक पयम पै मेरी आस पूरी मिले स्वामी अपरंपरा। बिलावल महला पंजवा शांत मंगल एक ओंकार सतगुर प्रसाद सलोक, सुंदर सांत दयाल प्रभ सर्व सुखा।

कोई वाहे को लुण को पाए खलहान, नानकेव न जापई कोई खाए निदान। महला पहला जिस मन वसया तरिया सोए, नानक जो पावे सो होए। पौड़ी पार ब्रह्म दयाल सागर तारिया, गुरपुर मेहरवान परम पौ मारिया। काम क्रोध विकराल दू सब हारिया, अमृत नाम निदान कंठे उर तारिया। नानक साधु संग जन मरण सवारिया, सलोक महला तीजा जिन्नी नाम विसारिया। कूड़े कहन कहन पंच चोर तिन्ना घर मोहन, हो मैं अंदर सन सागत मुठे दुरमती हर रस ना जानन। जिन्नी अमृत परम लुटाया बिकसो रचै रचन, दुष्टा सेती परहड़ी जन से वाद करन। नानक सागत नरक मैं जम बदे दुख सहन, पया किरत कमाव दे जिव राखै तवै रहन। महला तीजा जिन्नी सतगुर सेवया तान निताने तिस, सास ग्रास सदा मन वसै जम जोहे न सकै तिस। हिरदय हर हर नाम रस कवला सेवक तिस, हर दासा का दास होए परम पदार्थ तिस। नानक मंतन जिस प्रभ वसै हौ सतगुर बाणै तिस, जिनको पूर्व लिखिया रस संत जना स्यों तिस। पौड़ी जो बोले पूरा सतगुरु सो परमेसर सुनिया, सोई वर्तिया जगत मैं कट कट मुख पणिया। बहुत वडियाइया साहेब नै जाही गणिया, सच सहज आनंद सतगुरु पास सच्ची गुरमणिया। नानक संत सवारे पार ब्रह्म सच्चे ज्यो बणिया। सलोक महला तीजा अपना आप ना पछाणई हर प्रभ जाता दूर, गुर की सेवा विसरी क्यों मन रह हजूर। मन मुख जन्म गवाया झूठे लाल चकूर, नानक बख्श मिलायन सच्चे शब्द हदूर। महला तीजा हर प्रभ सच्चा सोहेला गुरमुख नाम गोविंद, अंद नाम सलाहना हर जपया मन आनंद। वडभागी हर पाया पूर्ण परमानंद, जन नानक नाम सलाहया बहुन न मंतन पंग। पौड़ी कोई निंदक होवे सतगुरु का फिर शरण गुर आवे, पिछले गुने सतगुर बख्श लए सतसंगत नाल रलावे। ज्यों मीहे उठे गलियां नालियां टोबियां का जल, जाए पवे विच सुरसरी सुरसरी मिलत पवित्र पावन होए जावे। ए वड्याई सतगुर निर्वैर विच जित मिले तिसना भुख उतरे हर सांत तड़ आवे। नानक हो अचरज देखो मेरे हर सच्चे साहका, जे सतगुरु नो मन्ने सो सबना पावे। सुध बिलावल बाणी भगतां की कबीर जियो की एक ओंकार, सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद ऐसो संसार पे।

एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्ता जूनी सह भंगुर प्रसाद। राग गोंड चौप दे महला चौथा कर पहला। जे मन चित आस रखे हरि उपर ता मन चिंदे अनेक अनेक फल पाई। हर जाने सब किश जो जिए वरतै प्रभ कालिया किसै का एक तिल ना गवाई। हर दिस की आस की जय मन मेरे जो सब मैं स्वामी रहा समाई। मेरे मानो आसा कर जगदीश गुसाई। जो बिन हर आस अवर कहूं की जय साने फल आस सब वृथी जाई रहाओ। जो दिसे माया मोह कुटंब सब मत तिसकी आस लग जन्म गवाई। इनके किश हाथ नहीं कहां करे एह बपड़े इनका वाहया कश ना वसाई। मेरे मन आस कर हर प्रीतम अपने की। जो तुझ तारे तेरा कुटंब सब छड़ाई। जे किश आस अवर करह पर मित्री मत तू जाने तेरे कितए कम आई। यह आस पर मित्री पाओ दूजा है खिर मैं झूठ बिनस सब जाई। मेरे मन आसा कर हर प्रीतम साचे की। जो तेरा कहलिया सब थाए पाई। आसा मनसा सब तेरी मेरे स्वामी। जैसी तू आस करावे तैसी को आस कराई। किश किसी के हाथ नहीं मेरे स्वामी ऐसी मेरे सतगुरु बुझ बुझाई। जन नानकी आस तू जाने हर दर्शन देख हर दर्शन तृप्ताई। गोंड महला चौथा। ऐसा हर सेविय नित्याई है जो खिन में किल विखो सब करे बिनासा। जे हर त्याग अवर की आस की जय ता हर नेफल सब काल गवासा। मेरे मन हर सेवो सुखदाता स्वामी जित सेव है सब भूख लहसा। मेरे मन हरि उपर की जय परवासा। जह जाइए तह नाल मेरा स्वामी हरि अपनी पैज रखे जन दासा रहाओ। जे अपनी बिरथा कहो अवरा पहे ता आगे अपनी बिरथा बहु बहुत कटासा। अपनी बिरथा कहो हर अपने स्वामी पह जो तुमरे दुख तत्काल कटासा। सो ऐसा प्रभ छोड़ अपनी बिरथा अवरा पह कहिए अवरा पह कहे मन लाज मरासा। जो संसार है के कुटुंब मित्र भाई दिस मन मेरे ते सब अपने स्वाय मिलासा। जे दिन

हमरी वेदन हर प्रभ जाने, मेरे मन अंतर की पीर रहाओ, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो भाई सो मेरा वीर, मिल मिल सखी गुण कहो मेरे प्रभ के, ले सतगुर की मत धीर, जन नानक की हर आस पुजावो, हर दर्शन सांत शरीर, शकायक राग गौंड महला पंजवा, चौप देकर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद सब करता सब भुगता रहाओ, सुनतो करता पेखत करता, दृष्टो करता दृष्टो करता, उपत करता परलो करता, व्याप्त करता लिप्तो करता, भक्तो करता बूझत करता, आवत करता जात पी करता, निर्गुण करता सरगुण करता, गुर प्रसाद नानक समदृष्टा, गोंड महला पंजवा, फाक्यो मीन कब की न्याई, तू उर्ज रहो कुसुम भायले, भगतारे सास ले खैले, तो उदरे हर गुण गायले, मन समझ छोड़िया वायले, अपने रहन कौ ठौर ना पावे, काए पर कह जायले रहाओ, ज्यो मैंगल इंद्री रस प्रेरियो, तू लाग परयो कुटुंबायले, ज्यो पंखी एकत्र होए फिर विशरै, तिर संगत हर हर त्यायले, जैसे मीन रसन साध

गुर पार ब्रह्म सदा नमस्कारो। मत को परम पुलै संसार, गुरबिन कोय न उतर सपार। रहाओ पूले कौ गुर मार्ग पाया, अवर त्याग हर पंक्ति लाया। जन्म मरण की त्रास मिटाई, गुरपूरे की बेअंत वडाई। गुर प्रसाद ऊर्द कमल विगास, अंधकार मैं भया प्रगास। जिन किया सो गुर ते जानिया, गुर कृपा ते मुग्ध मन मानिया। गुर करता गुर करने जोग, गुर परमेश्वर है पी होग। कहो नानक प्रभ यह जनाई, बिन गुर मुक्त ना पाई है पाई। गोंड महला पंजवा, गुरु गुरु गुर कर मन मोर। गुरु बिना मैं नाही होर। गुर की टेक रहो दिन रात, जाकी कोई न मिट है दात। गुर परमेश्वर एको जान, ज्योत पावे सो प्रवान। रहाओ गुर चरणी जाका मन लागे, दुख दर्द प्रमता का भाग। गुर की सेवा पाए मान, गुर ऊपर सदा कुर्बान। गुर का दर्शन देख निहाल, गुर के सेवक की पूर्ण काल। गुर के सेवक को दुख ना व्यापै, गुर का सेवक दे दे जापै। गुर की महिमा कथन ना जाए, पार ब्रह्म गुर आसमाए। कहो नानक जाके पूरे भाग, गुर चरणी ता का मन लाग। गोंड महला पंजवा, गुर मेरी पूजा गुर गोबिंद। गुर मेरा पार ब्रह्म गुर भगवंत। गुर मेरा देओ अलाखा पेओ, सर पूचरण गुर से। गुर बिन अवर नाही मैं थाओ, अंधन जपो गुरु गुर नाओ। रहाओ गुर मेरा ज्ञान, गुर दे ध्यान। गुर गोपाल पुरख भगवान, गुर की शरण रहो कर जोर। गुरु बिना मैं नाही होर। गुर बोइथ तारे पवपार, गुर सेवा जमते छुटकार। अंधकार मैं गुर मंत्र उजारा, गुर कै संग सगल निस्तारा। गुर पूरा पाइए वडभागी, गुर की सेवा दुख ना लागी। गुर का शब्द ना मेटै कोए, गुर नानक नानक हर सोए। गोंड महला पंजवा, राम राम शंकर व्यवहार। राम राम राम प्राण आधार, राम राम राम कीर्तन गाए। रमत राम सबरे उसमाए, संत जना मिन बोलो राम। सब ते निर्मल पूर्ण काम। रहाओ राम राम तन संच पंडार, राम राम राम कर्याहार। राम राम विसर नहीं जाए, कर कृपा गुर दिया बताए। राम राम राम सदा सहाय, राम राम राम लिवलाए। राम राम जप निर्मल पै, जन्म जन्म के किल बिख गए। रमत राम जन्म मरण निवारे, उचरत राम पै पार उतारे। सब ते ऊच राम प्रगास, निस्बासर जप नानक दास। गोंड महला पंजवा, उनको खसम कीनी ठाक हारे। दास संगते मार बिदारे, गोविंद भगत का महल ना पाया। राम जना मिल मंगल गाया, सगल श्रेष्ठ के पंच सिकदार। राम भगत के पानी हार।

मोहे निर्गुण गुण किशु ना है, सर्वनिधान तेरी दृष्टि माहे। नानक दीन जाचे तेरी सेव, कर कृपा दीजे गुरुदेव। गोंड

ना जाहे नारायण सेव सगल फल पाहे। नारायण मन माहे आधार, नारायण बोध संसार, नारायण कह तो जम भाग पलायण, नारायण दंत पाने डायण, नारायण सद सद बख्शेंद, नारायण कीने सुख आनंद, नारायण प्रगट कीनो प्रताप, नारायण संत को माई बाप, नारायण साध संग नारायण, बारंबार नारायण गायण, बस्त्या गोचर गुर मिल लही, नारायण ओट नानक दास गही। गुण महला पंजवा, जा कौ राख राखनहार, तिसका अंग करे निरंकार। रहाओ मात गर्व में अगन ना जो है, काम क्रोध लोमो ना पो है, साध संग जपै निरंकार, निंद कै मोय लागे शार। राम कवच दास का सना हो, दूत दुष्ट तिसको हत नाहे, जो जो गर्व करे सो जाए, गरीब दास की प्रभ शरणाए, जो जो शरण पया हर राय, सो दास रखिया अपने कंठ लाए। जे को बहुत करे अहंकार, ओ खिन मैं रुलता खाकू नाल, हैपी साचा हो बनहार, उस दास दा जाई बलिहार। अपने दास रखे कृपा तार, नानक प्रभ प्राण आधार। गोंड महला पंजवा, अचरज कथा महानूप, प्रात्मा पार ब्रह्म का रूप। रहाओ ना हो बूढ़ा ना हो बाला, ना इस दुख नहीं जमजाला, ना हो बिनसे ना हो जाए, आज जुगादी रहा सुमाए, ना इस पुसन नहीं है सीत, ना इस दुश्मन ना इस मीत, ना इस अर्ख नहीं है सोग, सब किश इसका एहो करने जोग, ना इस बाप नहीं है समाया, एहो परम्पर होता आया, पाप उनका इसलिए अपना लागे, कटकट अंतर सदी जागे, तीन गुणा एक सकतो पाया, महामाया ता की है छाया, अशाला शेदा पे दयाल, दीन दयाल सदा कृपाल, ता की गतमित कशु ना पाए, नानक ता कह बल बल जाए। गोंड महला पंजवा, संतन कै बलहार है जाओ, संतन कै संग राम गुण गाओ, संत प्रसाद किलवख सब गए, संत शरण वड़ पागी पए, राम जपत कछ विघ ना लागे, राम जपत कछ विघ ना व्यापै, गुर प्रसाद अपना प्रभ जापै। रहाओ पार ब्रह्म जब होए दयाल, साधु जन की करै लवाल, काम क्रोध इस तंते जाए, राम रतन वसै मन आए, सफल जन्म ताका प्रवाण, पार ब्रह्म निकट कर जान, पाए भगत प्रभ कीर्तन लागे, जन्म जन्म का सोया जागे, चरण कमल जन का आधार, गुण गोविंद रहो सच व्यापार, दास जना की मनसा पूर, नानक सुख पावे जन तहूर। राग

केस जले जैसे कास का पूला, कहो कबीर तभी नर जागे, जम का डंड मूंड में लागे, गोंड आकाश गगन पाताल गगन है, चौदस गगन रहाए ले, आनंद मूल सदा परखोत्म कट बिनसै गगन न जाए ले, मोहे बैराग पयो एहो जियो आए कहां गयो रहाओ, पंच तत् मिल काया कीनी तत् कहां ते कीन रे, कर्म बद तुम जियो कहता हो कर मैं किन जियो दीन रे, हर मैं तन है तन मैं हर है सर्ब निरंतर सोए रे, कह कबीर राम नाम ना छोड़ो सहजे होए सो होए रे, राग गोंड।

हरे महावत तुझ जारो काट, इसे तुरावो कालो साट। हस्त ना तोरै तरह त्यान, वा कर दे बसे भगवान। क्या अपराध संत है कीना, बांध पोट कुंचर कौ दीना। कुंचर पोट लै लै नमस्कार, बूझी नहीं काजी अंधियार। तीन बार पतिया पर लीना, मन कठोर अजहू ना पतीना। कह कबीर हमरा गोबिंद, चौथे पद मैं जन की जिंद। गोंड नायो मानस नायो देओ, नायो जति कहा वैसे ओ। ना हो जोगी ना अवधूता, ना समाय न काहू पूता। या मंदिर मैं कौन बसाई, ताका अंत न को उपाई रहाओ। ना हो गृही ना हो दासी, ना हो राजना पीख मगासी। ना इस पिंड ना

अस्मेत जग ने तुला पुरख दाने प्राग इशनाने तौ ना पुजे हर कीर्त नामा अपने रामै भज रे मन आलसिया रहाओ। गया पिंड भरता बनारस अस बसता मुख बेद चतर पड़ता सगल धर्म अशता गुर ज्ञान इंद्री दृढ़ता खट कर्म सहित रहता सेवा सख्त संबादं मन छोड़ छोड़ सगल भेदं सिमर सिमर गोबिंदं भज नामा तरस पव सिंदं गोंड नाद प्रमे जैसे मिर गाए प्राण तजे वाको ध्यान न जाए ऐसे रामा ऐसे हेराओ राम छोड़ चित अंत ना फेराओ रहाओ। ज्यो मीना हेरै पशुआरा सोना गढ़ते हरै सोनारा ज्यों बिखई हेरै परनारी कौडा डारत हरै जुआरी जय जय देखो तै तै रामा हर के चरण नित त्यावै नामा गोंड।

सिमरन द्रौपद सुत उदरी गौतम सती सला निस्तरी केसी कंस मथन जिनकिया जी दान काली कौदिया प्रणवै नामा ऐसो हरी जास जबद पै अपदा तरी गोंड पैरो पूत सीतला तावै खर बाहन ओ शारो डावै हाँ तो

बर्द चढ़े डौरू टमकावे, महामाई की पूजा करै नरसै नर होए अवतरै। तू कहत ही अद भवानी, मूत की बरिया कहां छपानी। गुरमत राम नाम गहो मीता, प्रणवै नामा यो कह गीता।

मारिया था। पांडे तुमरा रामचंद सो भी आवत देखा था। रावण सेती सरबर होई कर की जो गवाई थी। हिंदू अन्ना तुर्कू काना दोहा ते ज्ञानी सियाना। हिंदू पूजे देहोरा मुसलमान मसीत नामे सोई सेव्या। जय देहोरा नाम सीत। रागोंड बाणी रविदास जियो की कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। मुकंद मुकंद जपो संसार बिन मुकंद तन होए अवहार। सोई मुकंद मुक्त का दाता सोई मुकंद हमरा पित माता। जीवत मुकंदे मरत मुकंदे ताके सेव कौसदा आनंदे रहाओ। मुकंद मुकंद हमारे प्राणं जप मुकंद मस्तक निशानं। सेव मुकंद करे बैरागी सोई मुकंद दुर्बल तन लादी। एक मुकंद करे उपकार हमरा कहां करे संसार।

बस अब तृष्णा चुकी जप मुकंद सेवा ताहू की गौंड जे हो 68 तीर्थ नावै जे हो द्वादश शिला पूजावै जे हो कूप तटा देवावै करै निंद सबिर था जावै साध का निंद

करने दो कमने नहीं गुना। जे हो अनक प्रसाद करावै भूमदान शोभा मंडप पावै। अपना बिगार बिराना सांडै करै निंद बोजो नी हांडै। निंदा कहाँ करो संसारा निंदक का प्रगट पहारा। निंदक सोध साध बिचारिया कहो रविदास पापी नरक सिधारिया। जोड़ राम कली।

अकाल मूर्त अजूनी सह पंगुर प्रसाद। कोई पढ़ता सहसा किरता, कोई कड़े पड़े पुराना, कोई नाम जपै जप माली, लागै तसै त्याना। अब ही कभी किशु ना जाना, तेरा एको नाम पछाना। ना जाना हरे मेरी कवन गते, हम मूर्ख ज्ञान शरण प्रभ तेरी, कर कृपा राखो मेरी लाज पते रहाओ।

मरण लिखाए मंडल में आए जीवन साजै माई। एक चले हम देखे स्वामी पाहे बलंती आई। ना किसी का मीत ना किसी का भाई, ना किसे बाप ना माई। प्रणवत नानक जे तू देवे अंते हुए सखाई। राम कली महला पहला, सर्ब जोत तेरी पसर रही। जै जै देखा तै नर हरी, जीवन तलब निवार स्वामी। अंध कुप माया मन गाड़िया, क्यों कर उतरो पार स्वामी रहाओ। जह पीतर कट पीतर बसया, बाहर काहे नाही। तिन की सार करे नित साहेब, सदा चिंत मन माही। आपे नेड़ा आपे दूर, आपे सर्ब रहा भरपूर। सतगुर मिले अंधेरा जाए, जै देखा तै रया समाए। अंतर से सा बाहर माया, नैनी लग सबाणी। प्रणवत नानक दासन दासा, परता पैगा प्राणी। राम कली महला पहला, जित दर वसे कमन दर कहिए। दरा पीतर दर कमन लह, जिस दर कारण फिरा उदासी। सो दर कोई आए कह, किन बिद सागर तरिए। जीव त्याने मरिए रहाओ, दुख दरवाजा रोहो रखवाला। आसा अंदेसा दोए पट जड़े, माया जल खाई पानी कर बांधया। सत कै आसन पुरख रह, किंते न मायंत न जानिया। तुम सर नाही अवर हरे, ऊंचा नहीं कहना मन में रहना। आपे जाने आप करे, जब आसा अंदेसा तब ही। क्यों कर एक कह, आसा पीतर रह निराशा। तव नानक एक मिले, इन बिद सागर तरिए। जीवत आयो मरिए रहाओ दूजा। राम कली महला पहला, सुरत शब्द सा

गोरख सो जन गोए उठाली करते बार ना लागे रहाओ। पानी प्राण पवन बंद राखे चंद सूरज मुख दिए मरण जीवन कौ धरती दीनी एते गुण विसरे। सिद्ध साधक यार योगी जंगम पीर पुरुष बहु तेरे जेतन मिला ता कीर्त आखा ता मन सेव करे। कागद लून रह कृत संगे पानी कमल रह ऐसे भगत मिले जन नानक तिन जम क्या करे। राम कली महला पहला सुन मा शिंदरा नानक बोले वसगत पंच करे नहीं डोले। ऐसी जुगत जो कौ पाले आप तरह सगले कुल तारे। सो अवधूत ऐसी मत पावे अहनिस सुन समाज समावे रहाओ। भिखिया पाए भगत पै चले होवे सो तृप्त संतोख अमुले। ध्यान रूप होए आसन पावे सच नाम ताड़ी चितलावे। नानक बोले अमृत बाणी सुन मा शिंदरा औदू निशानी। आसा महे निरास वलाए निहचो नानक करते पाए। प्रणवत नानक अगमुख सुनाए गुर चेले की संद मिलाए। दीखिया दारू भोजन खाए छे दर्शन की सोजी पाए। आराम कली महला पहला हम डोलत बेड़ी पाप भरी है पवन लगे मत जाई। सनमुख सिद्ध भेटन को आए निहचो दे वड़ियाई। गुर तार तारण हारिया देह भगत पूर्ण अविनाशी हाँ तुझको बलिहारिया रहाओ। सिद्ध साधक योगी अर जंगम एक सिद्ध जिनी त्याया। परसत पैर सिजते स्वामी अखर जिनको आया। जप तप संजम कर्म ना जाना नाम जपी प्रभ तेरा। गुर परमेसर नानक पेटे ओ साचे शब्द नवेरा। राम कली महला पहला सुरती सुरत्र लाइया एत तन कर तुल्हा लंगे जेत। अंतर पाहित सह तू रख एनस दीवा बल अथक। ऐसा दीवा नीर तराए जित दीवे सब सो जी पाए रहाओ। हच्छी

राम कली महला पहला, सागर में बूंद बूंद में सागर, कवन बुझे बिद जाने, उत्पो चलते आप कर चीने, आपे तत् पछाने, ऐसा ज्ञान विचारे कोई, तिस्ते मुक्त परमगत होई रहाओ, दिन में रहन रैन में दिनियर उसन सीत बिद सोई, ताकि गत मित यवर ना जाने, गुरबिन समझ ना होई, पुरख में नार नार में पुरखा, बुझो ब्रह्म ज्ञानी, तुन में ध्यान ध्यान में जानिया, गुरमुख अकथ कहानी, मन में जोत जोत में मनुआ, पंच मिले गुर पाई, नानक तिन कै सत बलिहारी, जिन एक शब्द लिवलाई, राम कली महला।

सो हर जनो हर प्रभु भावै, अहनिस भगत करे दिन राती, ला छोड़ हर के गुण गावै रहाओ। धुन वाजे अनहद कोरा, मन मान्या हर रस मोरा, गुर पूरै सच समाया, गुर आदि पुरख हर पाया, सब नाद बेद गुरबाणी, मन राता सारंग पाणी, तह तीर्थ वर्त तप सारे, गुर मिलिया हर निस्तारे, जय आप गया पौ भागा, गुर चरणी सेवक लागा, गुर सतगुर भरम चुकाया, कहो नानक शब्द मिलाया, आराम कली महला पहला, शादन भोजन मांगत पागै, खुदया दुष्ट जलै दुख आगै, गुरमत नहीं लीनी दुरमत पत खोई, गुरमत भगत पावै जन कोई, जोगी जुगत सहज कर वासै, एक दृष्ट एको कर देखिया, भीखिया पाए सब तृप्ता सह रहाओ। पंच बैल गड़िया देह तारी, राम कला निभै पत सारी, तर टूटी गाडो सिर पार, लकड़ी बिखर जरी मंज पार, गुर का शब्द विचार जोगी, दुख सुख सम करना सोग बियोगी, भुगत नाम गुर शब्द विचारी, अस्त्र कंध जपै निरंकारी, सहज जगोटा बंधन ते छूटा, काम क्रोध गुर शब्दी लूटा, मन मैं मुंदरा हर गुर सरना, नानक राम भगत जन तरना। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राम कली महला तीजा, कर पहला सत युग सच कह सब कोई, कर कर भगत गुरमुख होई, सत युग धर्म पैर है चार, गुरमुख बूझै को बीचार, जुग चारे नाम वड्याई होई, जे नाम लागै सो मुक्त होवै, गुरबिन नाम ना पावै कोई रहाओ। त्रेता एक कलकीनी दूर, पाखंड वर्त्या हर जान दूर, गुरमुख बूझै सोजी होई, अंतर नाम वसै सुख होई, द्वापर दूजै दुबदा होए, परम भुलाने जाणै दोए, द्वापर धर्म दोए पैर रखाए, गुरमुख होवै ता नाम दृढ़ाए, कल युग धर्म कला एक रहाए, एक पैर चलै माया मोह वधाए, माया मोह अत गुबार, सतगुर पेटै नाम उधार, सब युग मैं साचा एको सोई, सब मैं सच दूजा नहीं कोई, साची कीरत सच सुख होई, गुरमुख नाम वखाणै कोई, सब युग मैं नाम उत्तम होई, गुरमुख विरला बूझै कोई, हर नाम ते आए भगत जन सोई, नानक जुग जुग नाम वड्याई होई, राम कली महला चौथा, कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जे वडभाग होवै वडभागी, ता हर हर नाम ते आवै, नाम जपत नामे सुख पावै, हर नामे नाम समावै, गुरमुख भगत करो सद प्राणी, हृदय प्रगास होवै लिव लागै, गुरमत हर हर नाम समाणी रहाओ। हीरा रतन जवे हर माणक, बहु सागर भरपूर किया, जिस वड भाग होवै वड मस्तक, तिन गुरमत कड काढ लिया, रतन जवेहर लाल हर नामा, गुर काढ तली दिखलाया, भागहीन मनमुख नहीं लिया, तृण ओलै लाग छपाया, मस्तक भाग होवै तुर लिखिया, तां सतगुर सेवा लाए, नानक रतन जवेहर पावै, तन तन गुरमत हर पाए, राम कली महला चौथा, राम जना मिल पया आनंदा, हर निकी कथा सुनाए, दुरमत मैल गई सब निकल, सतसंगत मिल बुद्ध पाए, राम जान गुरमत राम बोलाए, जो जो सुनै कह सो मुक्ता, राम जपत सोहाए रहाओ। जेवड भाग होवै मुख मस्तक, हर राम जना पेटाए, दर्शन संत देहो कर कृपा, सब दालत दुख लह जाए, हर के लोग राम जन निके, पागहीन ना सुखाए,
ज्यों ज्यों राम कहे जन उच्चे नर निंदक डंस लगाए। त्रिग त्रिग नर निंदक जिन जन नहीं पाए, हर के सखा सखाए से हर के चोर। वे मुख मुख काले जिन गुर की पैज ना पाए, दया दया कर राखो हर जियो हम दीन तेरी शरण आए। हम बारक तुम पिता परम मेरे, जन नानक बख्श मिलाए। राम कली महला चौथा, हर के सखा साध जानी के तनी ऊपर हाथ बतावे। गुरमुख साध से प्रभ पाए, कर कृपा आप मिलावे। राम मोको हर जन मेल मन पावे, अम्यो अम्यो हर रस है मीठा। मिल संत जना मुख पावे रहाओ, हर के लोग राम जानी उत्तम। मिली उत्तम पदवी पावे, हम होवत चेरी दास दासन की। मेरा ठाकर खुशी करावे, सेवक जन सेवै सेवट।

मेरे एक खैन प्राण ना रहे बिन प्रीतम बिन देखे मरे मेरी माया। तन तन वड़ भाग गुरसरनी आए हर गुरमिल दर्शन पाया। मैं अवर न कोई सूझै बूझै मन हर जप जपो जपाया। नामहीन फिरै से नकटे तन कस कस नक वड़ाया। मोको जग जीवन जीवा लै स्वामी हृदय अंतर नाम वसाया। नानक गुरु गुरु है पूरा मिल सतगुर नाम ते आया। आराम कली महला चौथा सतगुर दाता वड्डा वड पुरख है। जित मिले हर उर तारे जी दान गुर पूरे दिया। हर अमृत नाम समारे राम गुर हर हर नाम कंठ तारे। गुरमुख कथा सुनी मन पाई तन तन वड भाग हमारे रहाओ। कोट कोट ते तीस ते आवे ता का अंत ना पावे पारे। हृदय काम काम नी मांगे रिद मांगे हाथ पसारे। हर जस जप जप वड्डा वडेरा गुरमुख रखो उर तारे। जेवड़ भाग होवे ता जपिए हर पौजल पार उतारे। हर जन निकट निकट हर जन है हर राखै कंठ जन तारे। नानक पिता माता है हर प्रभ हम बारक हर प्रतपारे। राग राम कली महला पंजवा कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद। कृपा करहो दीन के दाते मेरा गुण अवगुण ना बिचारो कोई। माटी का क्या तोपै स्वामी मानस की गाते ही। मेरे मन सतगुर सेव सुख होई। जो इच्छा हो सोई फल पावो फिर दुख ना व्यापै कोई रहाओ। काचे पांडे साज निवाजे अंतर ज्योत समाई। जैसा लिखत लिखिया तुर करता है हम तैसी कृत कमाई। मन तन थाप किया सब अपना ए हो आवन जाना। जिन दिया सोचित न आवै मोहे अंध लपटाना। जिन किया सोई प्रभ जाने हर काम है लिया पारा। भगत करी हर के गुण गावा नानक दास तुम्हारा। राम कली महला पंजवा पवो चरना तल ऊपर आवो। ऐसी सेव कमावो आपस ते ऊपर सब जानो तो दरगह सुख पावो। संतो ऐसी कथो कहानी सुर पवित्र नरदे पवित्रा। खिन बोलो गुरमुख बाणी रहाओ। परपंच छोड़ सहज कर बैसो झूठा कहो ना कोई। सतगुर मिलो नवै निध पावो इनबे तत् बिलोई। परम चुकावो गुरमुख लिव लावो आत्म चीनो पाई। निकट कर जाणो सदा प्रभ हाजर किस्यों कहो बुराई। सतगुर मिले आए मार्ग मुक्ता सहजे मिले स्वामी। तन तन से जन जिन्नी कल मैं हर पाया जन नानक सत कुरबानी। राम कली महला पंजवा आवत हरखना जावत दुखा नह व्यापै मन रोगनी। सदा आनंद गुर पूरा पाया ता उतरी सगल बेयोगनी। एह बिद है मन जोगनी मोह सोग रोग लोग ना व्यापै तै हर हर हर रस भोगनी रहाओ। स्वर्ग पवित्रा मृत पवित्रा पयाल पवित्र अलोगनी। आज्ञाकारी सदा सुख पुंचै जतकत पेखो हर गुनी। नह शिव शक्ति जल नहीं पवना तह आकार नहीं मेदनी। सतगुर जोग का तहां निवासा जह अवगत नाथ अगम तनी। तन मन हर का तन सब हर का हर के गुण हो क्या गनी। कहो नानक हम तुम गुर खोई है अंबे अंब मिलोगनी। राम कली महला पंजवा त्रै गुण रहत रह निरारी। साधक सिद्ध ना जाने रतन कोठड़ी अमृत संपूर्ण सतगुर कै खजाने।
ਅਚਰ ਜਗਿਸ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਈ, ਬਸਤਾ ਗੋਚਰ ਭਾਈ ਰਹਾਓ। ਮੋਲ ਨਾਹੀ ਕਛ ਕਰਨਾ ਜੋਗਾ, ਕਿਆ ਕੋ ਕਹਿ ਸੁਣਾਵੈ। ਕਥਨ ਕਹਿਣ ਕੋ ਸੋਝੀ ਨਾਹੀ, ਜੋ ਭੇਖੈ ਤਿਸ ਬਣ ਆਵੈ। ਸੋਈ ਜਾਣੈ ਕਰਨੈ ਹਾਰਾ, ਕੀਤਾ ਕਿਆ ਬੇਚਾਰਾ। ਆਪਣੀ ਗਤ ਮਿਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ, ਹਰ ਆਪੇ ਪੂਰ ਭੰਡਾਰਾ। ਐਸਾ ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਨ ਚਾਖਿਆ, ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਹੇ ਆ ਗਾਈ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਮੇਰੀ ਆਸਾ ਪੂਰੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਸਰਨ ਆਈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਅੰਗੀਕਾਰ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੈ। ਬੈਰੀ ਸਗਲੇ ਸਾਧੇ, ਜਿਨ ਬੈਰੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਗ ਲੂਟਿਆ, ਤੇ ਬੈਰੀ ਲੈ ਬਾਧੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰਾ, ਅਨਕ ਰਾਜ ਭੋਗ ਰਸ ਮਾਣੀ, ਨਾਉ ਜਪੀ ਪਰਵਾਸਾ ਤੇਰਾ ਰਹਾਓ। ਚੀਤਨਾ ਆਵਸ ਦੂਜੀ ਬਾਤਾ, ਸ੍ਰੀ ਉਪਰ ਰਖਵਾਰਾ। ਬੇਪਰਵਾਹ ਰਹਿਤ ਹੈ ਸਵਾਮੀ, ਇਕ ਨਾਮ ਕਹਿ ਆਧਾਰਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਮਿਲਿਓ ਸੁਖਦਾਈ, ਊਨ ਨ ਕਾਈ ਬਾਤਾ। ਤਤ ਸਾਰ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ, ਛੋੜ ਨਕਤ ਹੂੰ ਜਾਤਾ। ਵਰਨ

पंच बचित्र करे संतोखा सात सुरा लै चल बाजा मान तान ताई ताना पाओ न बिंगा कल। फेरी फेर ना होवे कभी एक शब्द बंद पाल नारदी नरहर जान हदूरे कुंगर खड़ग त्याग विसूरे सहजानंद दिखावे पावे एहो नृत्यकारी जन्म ना आवे जे को अपने ठाकर पावे कोट मद एहो कीर्तन गावे साध संगत की जावो टेक कहो नानक तिस कीर्तन एक राम कली।

कोई कह तुर्क, कोई कह हिंदू, कोई बंश है पिस्त, कोई सुरग हिंदू, कहो नानक जन हुक्म पछाता, प्रभ साहेब का तन भेद जाता। राम कली महला पंजवा, पवन मैं पवन।

जप नाथ दिन रह नाई तेरी खिंथा दो दिहाई रहाओ। गहरी विभूत लाए बैठा ताड़ी मेरी तेरी मुंद्रा तारी। मांगे टूका तृप्त ना आवे नाथ छोड़ जा।

जां कै अंतर हर हर स्वाद कहन न जाई नानक बिस्माद राम कली महला पंजवा पेटत संग पार ब्रह्म चित आया संगत करत संतोख मन पाया संतै चरण माथा मेरो पौत अनक बार संतै डंडौत एहो मन।

संत हमारी निर्मल रास, संत हमारा राखिया पड़दा, संत प्रसाद मोए कबू ना करदा, संत संग दिया कृपाल, संत सहाई पय दयाल, सुरत मत।

हर की कथा सुनत पवित जेवा भगत पाई गत मत सो प्रवान जिस हृदय वसाई नानक ते जानी उत्तम पाई राम कली महला पंजवां गहो कर।

तब आपस ऊपर रखे गुमान। जब उसको कोई मन पर हरे तब यो सेवक सेवा करे। मुख बेरावे अंत ठगावे एक ठावर ओ कई ना समावे। उन मोहे बहुते ब्रह्मांड राम जनी की नी खंड खंड। जो मांगे सो भूखा रह इस संग राचे सो कछु ना लह। ऐसे त्याग सत्संगत करे वडभागी नानक हो तरे। राम कली महला पंजवा आत्म राम सर्व मैं पेख। पूर्ण पूर रहा प्रभ एक रतन मोल हृदय मैं जान। अपनी वस्तु आप पछान पी अमृत संतन प्रसाद। वड़े भाग होवे तो पाइए बिन जेवा क्या जाने स्वाद। रहाओ अठ दस वेद सुने कह डोरा। कोट प्रकाश ना दिसे अंधेरा। पशु प्रीत का संग रचे जिसने बुझावे सो कित बिद बुझे। जानन हार रहया प्रभ जान ओत पोत भगतन संगान। बिगस बिगस अपना प्रभ गावे नानक तिन जम नेण न आवे। राम कली महला पंजवा दीनो नाम कियो पवित। हर तन रास निरास ए बित। काटी बंद हर सेवा लाए हर हर भगत राम गुण गाए। बाजे अनहद बाजा रसक रसक गुण गाए।

पौ मन बसै, अमृत नाम रसना नित जपै, कोट जन्म के काटे फाहे, पाया लाभ सच्चा तन लाहे। तोट न आवै अखुट भंडार, नानक भगत सोहै हर द्वार, राम कली महला पंजवा, रतन जिवे हर नाम, सत संतोख ज्ञान, सुख सहज दया का पोता, हर भगता हवाले होता, मेरे राम को भंडार, खात खर्च कष्ट तोट न आवै, अंत नहीं हर पारावार रहाओ। कीर्तन निर्मोलक हीरा, आनंद गुणी गहीरा, अनहद बाणी पूंजी, संतन हथ राखी कुंजी, सुन समाध गुफा तय आसन, केवल ब्रह्म पूर्ण तय बासन, भगत भगत संग प्रभ गोष्ठ करत, तय हरख ना सोग ना जन्म ना मरत, कर कृपा जिस आप देवाया, साध संग तिन हर तन पाया, दयाल पुरख नानक अरदास, हर मेरी वर्तन हर मेरी रास। राम कली महला पंजवा, मेहमा ना जाने बेद, ब्रह्मे नहीं जाने भेद, अवतार ना जाने अंत, परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत, अपनी गाते आप जाने, सुन सुन अवर वखाने रहाओ, संकरा नहीं जाने पेव, खोज तहारे देव, देविया नहीं जाने मर्म, सभी ऊपर अलख पार ब्रह्म, अपना रंग करता केलो, आप बिछोर आपे मेल, एक परमे एक भक्ति लाए, अपना किया आप जनाए, संतन की सुन साची साखी, सो बोले जो पेखे आखी, नहीं लेप तिस पुन्ना पाप, नानक का प्रभ आपे आप, राम कली महला पंजवा, किशु काज न कियो जान, सुरत मत नाही किश ज्ञान, जाप ताप सील नहीं धर्म, किशु ना जानो कैसा कर्म, ठाकुर प्रीतम प्रभ मेरे, तुझ बिन दूजा अवर ना कोई, भूले चूके प्रभ तेरे रहाओ, रिद ना बुद्ध ना सिद्ध प्रगास, बिखे ब्याद के गाव में बास, करण हार मेरे प्रभ एक, नाम तेरे की मन में टेक, सुन सुन जीवो मन एहो विश्राम, पाप खंडन प्रभ तेरो नाम, तू अगंत जी का दाता, जिसे जनाम है तिन तू जाता, जो उपायो तिस तेरी आस, सगला राधे प्रभ गुणतास, नानक दास तेरे कुर्बान, बेअंत साहिब मेरा मेहरबान। राम कली महला पंजवा, राखन हर दयाल, कोट पव खंडे निमख ख्याल, सगल अराधे जंत, मिलिए प्रभ गुर मिलमंत, जीवन को दाता मेरा प्रभ, पूर्ण परमेश्वर स्वामी, घट घट राता मेरा प्रभ रहाओ, ताकि गही मन ओट, बंधन ते होई छोट, हृदय जप परमानंद, मन माहे पै आनंद, तारण तरण हर शरण, जीवन रूप हर चरण, संतन के प्राण आधार, ऊचे ते ऊचे पार, सुमत सार।

आए बूढ़ तलोहो साध संग तरह नानक छा प्राप्त करै। रामकली महला पंजवा मन माहे जा भगवंत गुरपुर एहो दीनो मंत मिटे सगल पैतरास पूर्ण होई आस सफल सेवा गुरदेवा कीमत किश कहण ना जाई साचे साचा लाखा पेवा रहाओ। कर्ण कराम ने आप तिसको सदा मन जाप तिसकी सेवा करनी तो सच सहि सुख पावे मीत। साहिब मेरा अत भारा खिन मैं था प्यो था पनहारा तिस बिन अवर ना कोई जनका राखा सोई। कर कृपा अरदास सुनी जय अपने सेवक को दर्शन दी जय नानक जापी जब जाप सब ते ऊजा का प्रताप। राम कली महला पंजवा बिरथा परवासा लोक ठाकर प्रभ तेरी टेक अवर छूटी सब आस अचिंत ठाकर भेटे गुणतास। एको नाम त्याय मन मेरे कार्ज तेरा होवे पूरा हर हर हर गुण गाए मन मेरे रहाओ। तुम ही कारण करण चरण कमल हर शरण मन तन हर ओही ते आया आनंद हर रूप दिखाया। तिस ही की ओर सदीव जाके कीने है जीव सिमरत हर करत निदान राखण हार निदान। सर्व की रेण हो बीजै आ मिटाए मलीजै अंतिम त्याई नाम सफल नानक हो काम। राम कली महला पंजवा कारण करण करीम सर्व प्रतपाल रहीम अल्लै लाख्या पार खुद खुदाए वड बेसुमार। ओ नमो भगवंत गुसाई खालक रव रया सर्व ठाई रहाओ। जगनाथ जग जीवन माधो पौ पंजन रिद माया राधो रिखी केस गोपाल गोविंद पूर्ण सर्वत्र मुकंद।

तरी ना जाई दुत्तर माया, काम ना आवै सो कार कमावै, आप भी जापे ही खावै, राखण को दूसर नहीं कोय, तौ निस्तारै जो कृपा होए। पातत पुनीत प्रभ तेरो नाम, अपने दास कौ की जयदान, कर कृपा प्रभ गत कर मेरी, शरण गही नानक प्रभ तेरी। राम कली महला पंजवा, एह लोके सुख पाया, नहीं पेटत धर्म राया, हर दरगह शोभावंत, फुन गर्भ नाही बसंत, जानी संत की मित्राई, कर कृपा दीनो हर नामा, पूर्व संजोग मिलाई रहाओ, गुर के चरण चित लागा, तन तन संजोग सुभागा, संत की तूर लागी मेरे माथे, किल विख तो सगले मेरे लाथे, साध की सच टहल कमानी, तब होए मन शुद्ध परानी, जन का सफल दर्श जीठा, नाम प्रभु का कटकट बूठा, मिटाने सब कल कलेस, जिसते उपजे तुस्मै प्रवेश, प्रगटे अनूप गोविंद, प्रपूरे नानक बख्शेंद। राम कली महला पंजवा, गौ कौ चारे सारदूल, कौडी का लख हुआ मूल, बकरी कौ हस्ती प्रतपाले, अपना प्रभन नर निहाले, कृपा निदान प्रीतम प्रभ मेरे, वर्ण ना साकौ बहु गुण तेरे रहाओ, दीस्त मास ना खाए बिलाई, महाकसाब छुरी सट पाई, करण हार प्रभ हृदय बूठा, फाथी मछली का जल है टूटा, सूके काष्ट हरे चलूल, ऊंचे थल फूले कमल्यानूप, अग्निवारी सतगुर देव, सेव के अपनी लायो सेव, अकिर्त कणा का करे उधार, प्रभ मेरा है सदा दयार, संत जना का सदा सहाई, चरण कमल नानक सरनाई। राम कली महला पंजवा, पंच सिंह राखे प्रभ मार, दस बिगयाड़ी लई निवार, तीन अवर्त की चूकी केर, साध संग चूके पै फेर, सिमर सिमर जीवा गोबिंद, कर कृपा राख्यो दास अपना, सदा सदा साचा बख्शेंद रहाओ, दाज गए तरण पाप समेर, जप जप नाम पूजे प्रपैर, आनंद रूप प्रगट्यो सब थान, प्रेम भगत जोरी सुखमान, सागर तरयो बाचर खोज, खेद ना पायो नैफुन रोज, सिंध समायो कटके माहे, करण हार कौ किश अचरज नाहे, जौ छूटाओ तौ जाए पयाल, जौ काढ़ियो तौ नजर निहाल, पाप पुन हमरे वस नाहे, रसक रसक नानक गुण गाहे। राम कली महला पंजवा,

चक्कर पेलो, हर चरण कमलो सरनाए मना, राम नाम जप संग सहाई, गुरमुख पावे साई तना, रहाओ उन्ने काजन होवत पूरे, काम क्रोध मसद ही चूरे, करे बेकार जिया रे कह ताई, गाफल संगना तसुआ जाई, तरत तोह अनक शर जान, कौडी कौडी कौ खाक सिर शान, जिन दिया तसेरा चेतै मूल, मिथ्या लोभना उतरै सूल, पार ब्रह्म जपहे दयाल, इहु मन होवा सादरवाल, हस्त कमल लड़ लीनो लाए, नानक साचै साज समाए, राम कली महला पंजवां, राजा राम की सरनाए, निरपो पय गोविंद गुण गावत, साध संग दुख जाए रहाओ, जां कै राम बसे मन माही, सो जन दुत्तर पेखत नाही, सगले का सुवारे अपने, हर हर नाम रसन नित जपने, जिसकै मस्तक हाथ गुर धरै, सो दासां देसा काहे करै, जन्म मरण की चूकी कान, पूरे गुरु उपर कुर्बान, गुर परमेसर भेट निहाल, सो दर्शन पाए जिस होए दयाल, पार ब्रह्म जिस कृपा करै, साध संग सो पवजल तरै, अमृत पीवाओ साध प्यारे, मुखी उजर साचै दरबारे, अंध करो तज सगल बेकार, नानक हर जप उतरो पार, राम कली महला पंजवा, ईंदन ते बै संतर भागै, माटी कौ जल दै दिस त्यागै, ऊपर चरण तलै आकाश, कटमै सिंध की उपरगास, ऐसा समर्थ हर जियो आप, निमखना बिसरै जी, भगतन कै आठ पै

सगले साज करत जगदीश है, ठगन हार अनठगदा ठग है, बिन वखर फिर उठ लग है। संत सभा मिल करो बखियान, सिमरत शास्त्र वेद पुराण, ब्रह्म विचार विचारे कोए, नानक ताकी परम गत होए। राम कली महला पंजवा, जो तिस पावै सो थिया, सदा सदा हर की शरण आई, प्रभिन नाही आन बिया। रहाओ पुत्र कलत्र लखमी दिसै, इनमें किछु ना संग लिया, बिखै ठगौरी खाए भुलाना, माया मंदिर त्याग गया। निंदा कर कर बहुत विगुता, गर्भ जोन में किरत पया, पुरब कमाने छोड़ै नाही, जम दूत करा स्यो महा पया। बोले झूठ कमावे अवरा, त्रिसना बुझे बहुत हया, असाध रोग उपजया संत दुखन, देह बिनासी महा खया। जिन्हें निवाजे तिन्ही साजे, आपे कीने संत जया, नानक दास कंठ लाए राखे, कर कृपा पार ब्रह्मया। राम कली महला पंजवा, ऐसा पूरा गुरदेव सहाई, जाका सिमरन बिरथा ना जाई। रहाओ दर्शन पेखत होए निहाल, जाकी तूर काटे जमजाल, चरण कमल बसे मेरे मन के, कार्ज सवारे सगले तन के, जाके मस्तक रखे हाथ, प्रभ मेरो अनाथ को नाथ, पतो धारण कृपा निधान, सदा सदा जाइए कुर्बान। निर्मल मंत दे जिस दान, तजै विकार बिनस अभमान, एक तिहाइय साध कै संग, पाप बिनासे नाम कै रंग। गुर परमेसर सगल निवास, घट घट रव रया गुणतास, दर्श देहे तारो प्रभ्यास, नित नानक चितवै सच अरदास। राग राम कली महला पंजवा, घर दूजा दुपदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। गावो राम के गुण गीत, नाम जपत परम सुख पाइए, आवा गौण मिटै मेरे मीत। रहाओ गुण गावत होवत प्रगास, चरण कमल में होए निवास, संत संगत मैं होए उधार, नानक भव जल उतरस पार। राम कली महला पंजवा, गुरपूरा मेरा गुरपूरा, राम नाम जब सदा सुहेले, सगल बिना से रोग कूरा। रहाओ एक अरादो साचा सोए, जाकी शरण सदा सुख होए, नींद सुहेली नाम की लागी भूख, हर सिमरत बिन सह सब दुख। सहज आनंद करो मेरे भाई, गुरपूरै सब चिंत मिटाई, आठ पहर प्रभ का जप जाप, नानक राखा हो आयाप। राग राम कली महला पंजवा, पड़ताल करती जा एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। नर नर है नमस्कारं, जलन थलन बस गगन, एक

बिरद पायो अजहू नहीं समझ कौन कमाते उर जाना। मानस जन्म दियो जे ठाकर सो तै क्यों बिसरायो। मुक्त हो तो नर जा कै समरै निमखना ता को गायो। माया को मद कहां करत है संग न कहूं जाई। नानक कहे तो चेत चिंता मन होए है अंत सहाई। हराम कली महला पहला अष्टपदियां एक ओंकार। सतगुर प्रसाद सोई चंद चढ़े से तारे सोई दियर तप्त रहै। सा धरती सो पौन चुलारे जुग जी खेले थाव कैसे जीवन तलब निवार होवे।

आराम कली महला पहला हठ निग्रो कर काया छीजै वरद तपन कर मनि पीजै राम नाम सर अवरना पूजै गुर सेव मना हर जन संग कीजै जम जन दार जोहे नहीं सकै सरपन डस ना सकै हर करस पीजै रहाओ वाद पड़े रागी जग पीजै त्रैगुण बिखिया जन्म मरी जै राम नाम बिन दुख सही जै चार सौ पवन सिंहासन

की जय। राम कली महला पहला, अंतर उत्पुज अवर ना कोई, जो कही ऐसो प्रवते होई, जुगे जुगंतर साहिब साहिब सोई, उत्पुत परलो अवर ना कोई। ऐसा मेरा ठाकर गहर गंभीर, जिन जपया तिन्ही सुख पाया, हर कै नाम ना लगे जंपीर। रहाओ नाम रतन हीरा निर्मोल, साचा साहेब अमरिया तोल, जेवा सूची साचा बोल, करदर साचा नाही रोल, एक बन में बैसे डूगरिया स्थान, नाम विसार पचाया मान, नाम बिना क्या ज्ञान ध्यान, गुरमुख पावे दरगे मान, हठ हंकार करे नहीं पावे, पाठ पढ़े ले लोक सुनावे, तीर्थ परमस ब्याद ना जावे, नाम बिना कैसे सुख पावे, जतन करे बिंद किवे ना रहाई, मनुआ डोले नर के पाई, जंपर बांधे लह सजाई, बिन नावे जियो जल बल जाई, सिद्ध साधक केते मुन देवा, हठ निग्रह ना तृप्तावे पेवा, शब्द विचार गह गुरसेवा, मन तन निर्मल अवमान्या पेवा, कर्म मिलाए पावे सच नाम, तुम शरणागत रहो।

झूठ ना पावस पाखंड कीना, बिन गुर शब्द नहीं कर बार, नानक गुरमुख तत् विचार। आराम कली महला पहला, ज्यों आया त्यों जावै बौरे, ज्यों जन्मे त्यों मरण पया। ज्यों रस भोग किए तेता दुख लागै, नाम विसार पव जल पाया। तन तन देख तो गर्भ गया, कनक कम निसों हेत वधाए, हे की नाम विसार है भरम गया रहाओ। जत सत संजम सील ना रखिया, प्रेत पिंजर में काष्ट पाया। पुन दान इस ना ना संयम, साध संगत बिन बाज जाया। लालच लागे नाम विसारियो, आवत जावत जन्म गया। जा जमत आए केस गहे मार, सुरत नहीं मुख काल गया। अहनिस निंदा तात पराई, हृदय नाम ना सर्व दया। बिन गुर शब्द ना गद पत पावे, राम नाम बिन नरक गया। खिर मैं वेस करे नटुआ ज्यों, मोह पाप मैं गलत गया। एत उत माया देख पसारी, मोह माया कै मगन पया। करे बेकार विथार कनेरे, सुरत शब्द बिन परम पया। हम मैं रोग महा दुख लागा, गुरमत ले वो रोग गया। सुख संपत को आवत देख, सागत मानो अभिमान पाया। जिसका हो तान तान सो फिर ले वै, अंतर सहसा दुख पाया। अंतकाल के साथ ना चल, जो दिस है सब तिस है मया। आद पुरख परंपर सो प्रभ, हर नाम हृदय लै पार पया। मुए कौ रोवै किसै सुनावै, पैसा गिर असराल पया। देख कुटुंब माया गृह मंदर, साकत जंजाल पराल पया। जाए आए ता तने पठाए, चाले तने बुलाए लया। जो किश करना सो कर रहया, बख्शन हारै बख्श लया। जिने हो चाखिया राम रसायण, तिन की संगत खोज पया। रिद सिद्ध बुद्ध ज्ञान गुरु ते पाया, मुक्त पदार्थ शरण पया। दुख सुख गुरमुख सम कर जाना, हरक सोग ते बिरगत पया। आप मार

मनसा मार मन सहि समाना, बिन रसना उस्तत कराई, लोयन देख रहे बिस्मादी, चेता दिष्ट लगाई। अदिष्ट सदा रहे निरालम, ज्योति ज्योत मिलाई, हाँ गुरसा लाही सदा अपना, जिन साची बूझ बुझाई। नानक एक है बेनंती, नाम गत पत पाई, राम कली महला तीजा, हर की पूजा दुलंब है संतो, कहना कछु न जाई, संतो गुरमुख पूरा पाई, नामो पूज कराई रहाओ। हर बिन सब किश मैला संतो, क्या हो पूज चढ़ाई, हर साचे पावे सा पूजा होवे, पाणा मन वसाई। पूजा करे सब लोग संतो, मन मुक्थाए ना पाई, शब्द मरे मन निर्मल संतो, एह पूजा थाए पाई। पवित्र पावन से जन साचे, एक शब्द लिवलाई, बिन नामे होर पूजना होवी, परम भुली लोकाई। गुरमुख आप पछाणे संतो, राम नाम लिवलाई, आपे निर्मल पूज कराए, गुर शब्दी थाए पाई। पूजा करे पर विद नहीं जाने, दूजे पाए मल लाई, गुरमुख होवे सो पूजा जाने, पाणा मन वसाई। पहाने ते सब सुख पावे संतो, अंते नाम सखाई, अपना आपना पछाणे संतो, कूड़ करे वड्याई, पाखंड कीने जम नहीं छोड़े, लै जासी पत गवाई। जिन अंतर शब्द आप पछाणे, गत मित तिन ही पाई। एहो मनुआ सुन समाद लगावे, ज्योति ज्योत मिलाई, सुन सुन गुरमुख नाम वखाणे, सतसंगत मिलाई। गुरमुख गावे आप गवावे, दर साचे शोभा पाई, साची बाणी सच वखाणे, सच नाम लिवलाई। पह भंजन अत पाप निखंजन, मेरा प्रभ अंत सिखाई। सब किछ आपे आप वरतै, नानक नाम वड्याई, राम कली महला तीजा। हम कुचल कुचील अत अभिमानी, मिल सबदे मैल उतारी, संतो गुरमुख नाम निस्तारी। सच्चा नाम वस्या कट अंतर, करतै आप सवारी रहाओ। पारस परसे फिर पारस होए, हर जीव अपनी कृपा तारी। एक पेख करे फिर अभिमानी, तिन जुए बाजी हारी। एक आंदन भगत करे दिन राती, राम नाम उर तारी। आंदन राते सहजे माते, सहजे हम मैं मारी। पै बिन भगत ना होई कभी, पै पाए भगत सवारी। माया मोह शब्द जलाया, ज्ञान तत् बिचारी। आपे आप कराए करता, आपे बख्श भंडारी। तिस क्या गुणा का अंत ना पाया, हों गावा शब्द विचारी। हर जियो जपी, हर जियो सालाही, विचों आप निवारी। नाम पदार्थ गुरते पाया, खुट सचे भंडारी। अपने भगता नो आपे तुठा, अपनी कृपा कर कल तारी। तिन साचे नाम की सदा भुख लागी, गावन शब्द विचारी। जियो पिंड सब किश है तिसका, आखण बिख विचारी। शब्द लगे से जन निस्तरे, पौजल पार उतारी। बिन हर साचे को पार ना पावे, बूझे को विचारी। जो तुर लिखिया सोई पाया, मिल हर शब्द सवा।

अवर न करना जाई, आपे साजे सृष्टि उपाए, सिर सिर धंधा लाई, तिसै श्री वो ता सुख पावो, सतगुर मेल मिलाई। अपना आप यो पाए, अलख न लखना जाई, आपे मारजी वाले आपे, तिसनो तिल ना तुमाई। एक दाते एक मंगते कीते, आपे भगत कराई, सेवड़ भागी जिनी एको जाता, सच्चे रहे समाई। आप स्वरूप सियाणा आपे, कीमत कहन न जाई, आपे दुख सुख पाए अंतर, आपे परम पुलाई। वड्डा दाता गुरमुख जाता, निगुरी अंध फिरै लोकाई, जिनी चाखिया तिना साध आया, सतगुर बूझ बुझाई। एक ना नामो आप पुलाए, एक ना गुरमुख दे बुझाई, सदा सदा सा लाहो संतो, तिस दी वड्डी वड्याई, तिस बिन अवर ना कोई राजा, करत पावस बरत बनाई। न्याओ तिसै का है सद साचा, विरले हुक्म मनाई, तिसनो प्राणी सदा त्यावो, जिन गुरमुख बणत बनाई। सतगुर भेटै सो जन सीजै, जिस हिरदै नाम वसाई, सच्चा आप सदा है साचा, बाणी शब्द सुनाई। नानक सुन वेख रया विस्माद, मेरा प्रभ रवया सर्बथाई। रामकली महला पंजवा, अष्टपदियां एक ओंकार, सतगुर प्रसाद किन्ही किया परवृत पसारा, किन्ही किया पूजा विस्तारा, किन्ही निवल भयंगम सादे, मोहे दीन हर हर यारा दे। तेरा भरोसा प्यारे, आना जाना वेसा रहाओ, किन्ही गृह तज वनखंड पाया, किन्ही मोन अवधूत सदाया, कोई कहतो अनन भगवती, मोहे दीन हर हर ओट लीती। किन्ही कहया हाँ तीर्थवासी, कोई अन्न तज पया उदासी, किन्ही पवन सब धरती करया, मोहे दीन हर हर दर परया। किन्ही कहया मैं कुलै वड्याई, किन्ही कहया बा बहु पाई, कोई कह मैं तनै पसारा, मोहे दीन हर हर आधारा। किन्ही कुगर नृत कराई, किन्हू वर्तने माला पाई, किन्ही तिलक गोपी चंदन लाया, मोहे दीन हर हर हर त्याया। किन्ही सिद्ध बहु चेट कलाए, किन्ही पेख बहु थाट बनाए, किन्ही तंत मंत बहु खेवा, मोहे दीन हर हर हर सेवा। कोई चतर कहावै पंडित, को खट कर्म सहत स्यो मंडित, कोई करै आचार सुकरणी, मोहे दीन हर हर हर सरणी। सगले कर्म धर्म जुग सोदे, बिन नामै ओ मन ना प्रबोधे, कहो नानक जो साध संग पाया, बूझी तृष्णा महा सीत लाया। राम कली महला पंजवा, इस पानी ते जंतू करया, माटी काले देहुरा करया, उगत जोत लै सुरत परीखिया, मात गर्भ मैं जंतू राखिया, राखण हार समार जना, सगले छोड़ विचार मना रहाओ। जिन दिए तुद बाब महतारी, जिन दिए प्रात पुतहारी,

अनुसार ज्यों पावक संग सीत को नास, ऐसे प्रायत संत संग बिनास। ज्यों साबन कापर उज्जल होत, नाम जबत सब ब्रह्म पौ खोत। ज्यों चकवी सूरज की आस, ज्यों चात्रक बूंद की प्यास। ज्यों कुरंक नाद करन समाने, त्यों हर नाम हर जन मने सुखाने। तुमरी कृपा ते लागी प्रीत, दयाल पै ता आए चीत। दया तारी तिन तारनहार, बंधन ते होई छुटकार। सब थान दे

काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बिदारणा। नाम जपत मन निर्मल होवे सूखे सुख गुदारना। भगत शरण जो आवे प्राणी तिस इहा उहा ना हारना। सुख दुख इस मन की बिरथा तुम ही आगे सारना। तू दाता सबना जिया का अपन किया पालना। अनक बार कोट जन ऊपर नानक वन्ये वारना। राम कली महला पंजवा अष्टपदी एको ओंकार सतगुर प्रसाद। दर्शन पेटत पाप सब नासै हर स्यों दे मिलाई। मेरा गुर परमेसर सुखदाई पार ब्रह्म का नाम दृढ़ाए अंते होए सखाई। रहाओ सगल दुख का डेरा पन्ना संत तूर मुखलाई। पतत पुनीत किए खन पीतर अज्ञाना देर वंजाई। कारण कारण समरथ स्वामी नानक ते शरण आई। बंधन तोड़ चरण कमल दृढ़ाए एक शब्द लिवलाई। अंधकूप बिखिया ते काढ़ियो सात शब्द बने आई। जन्म मरण का सहसा चूका बाहुड़ का तो ना ताई। नाम रसायन एहो मन राता अमृत पी त्रिपताई। संत संग मिल कीर्तन गाया निचल वस्या जाई। पूरे गुर पूरी मत दीनी हर बिन यान ना पाई। नाम निधान पाया वड भागी नानक नरक ना जाई। काल सियाणप उकतना मेरी पूरे गुरु कमाई। जप तप संजम सोच है सोई आपे करे कराई। पुत्र कलत्र महा बिखिया मैं गुरसाच लाए तराई। अपने जीतें आप संभाले आप लिए लड़ लाई। साज धर्म का बेड़ा बांधया पवजल पार पवाई। बेसमार बेअंत स्वामी नानक बल बल जाई। अकाल मूर्त अजूनी संपाओ काले अंधकार दीपाई। अंतर जामी जियन का दाता देख तृप्त त्यागाई। एक अंकार निरंजन निरपाओ सब जल थल रया समाई। भगत दान भगता कौ दीना हर नानक जाचै माई। राम कली महला तीजा राम कली महला पंजवा सलोक। सिखो शब्द प्यारे ओ जन्म मरण की टेक। मुख उज्जल सदा सुखी नानक सिमरत एक। मंत्रण राता राम प्यारे हर प्रेम भगत बन आई संतो। सतगुर खेप निबाही संतो हर नाम लहा दास कौ दिया सगली तृष्ण उलाही संतो। रहाओ खोजत खोजत लाल एक पाया हर कीमत कहन ना जाई संतो। चरण कमल स्यों लागो ध्याना साचे दर्श समाई संतो। गुण गावत गावत पय निहाला हर सिमरत तृप्त आगाई संतो। आत्म राम रविया सब अंतर कत आवै कत जाई संतो। आदि जुगादी हैपी होसी सब जिया का सुखदाई संतो। आप बेअंत अंत नहीं पाई है पूर रया सब ठाई संतो। मीत साजन माल जो बनसोत हर नानक बाप मेरी माई संतो। राम कली महला पंजवा मान बच कर्म राम नाम चितारी। कुमन केर महात बिखड़ी गुरमुख नानक पार उतारी। रहाओ अंतर सूखा बाहर सूखा हर जप मलन पए दुष्टारी। जिसते लागे इतने निवारे प्रभ जीव अपनी कृपा तारी। उधरे संत परे हर सरणी पच बिन से महा अहंकारी। साधु संगत एहो फल पाया एक केवल नाम आधारी। ना कोई सूर ना कोई हीणा सब प्रगति जो तुम्हारी। तुम समराथ्या काथा गोचर रव्या एक मुरारी। कीमत का

राम कली सद एक ओंकार सतगुर प्रसाद जगदाता सोए भगत वछलते होलोए जियो गुर शब्द समावे अवर ना जाने कोए जियो अवरो ना जाने शब्द गुर कै एक नाम ते आवे प्रसाद नानक गुरु अंगद परम पदवी पावे आया हकारा चलन वारा हर राम नाम समाया जग अमरिया टालिया तोल ठाकर भगत ते हर पाया हर पाणा गुर पाया गुर जावे हर प्रपाह जियो सतगुर करे हर पह बेनती मेरी पैज रखो अरदास जियो पैज रखो हर जना केरी हर देहो नाम निरंजनो अंत चलदिया होए बेली जमदूत काल निखंजनो सतगुरु की बेनती पाई हर प्रभ सुनी अरदास जियो हर तार कृपा सतगुर मिलाया तन तन कह साबाह जियो मेरे सिख सुनो पुत पाई हो मेरा हर पाणा आओ मैं पास जियो हर पाणा गुर पाया मेरा हर प्रभ करे साबास जियो भगत सतगुर पुरख सोई जिस हर प्रभ पाणा पावे आनंद अनहद वजह वाजे हर आप गल मिलावे तुसी पुत पाई परवार मेरा मन वेखो कर निर्जाह जियो तुर लिखिया प्रवाणा फिरै नाही गुर जाए हर प्रपाह जियो सतगुर पाणै अपने बह परवार सदाया मत मैं पिछे कोई रोग सी सो मैं मूल ना पाया मित पैजै मित बिकसै जिस मित की पैज पावे तुसी विचार देखो पुत पाई हर सतगुरु पैन आवे सतगुरु परतख होंदै बहराज आप टिकाया सब सिख बंदप पुत पाई रामदास पैरी पाया अंते सतगुर बोलिया मैं पिछे कीर्तन करियो निर्वाण जियो केसो गोपाल पंड सद्यो हर हर कथा पढ़े पुराण जियो हर कथा पढ़िए हर नाम सुनिए बेबाण हर रंग गुर पावे पिंड पत्तल किरिया दीवा फुल हर सर पावे हर पाया सतगुर बोलिया हर मिलिया पुरख सुजान जियो रामदास सोडी तिलक दिया गुर शब्द सच निशान जियो सतगुर पुरख जे बोलिया गुर सिखा मन लई रजाए जियो मोहरी पुत सनमुख होया रामदास पैरी पाए जियो सब पवे पैरी सतगुरु केरी जिथे गुरु आप रखिया कोई कर बखीली निवै नाही फिर सतगुरु आण निवाया हर गुरह पाणा दी वड्याई तुर लिखिया लेख रजाए जियो कहे सुंदर सुनो संतो सब जगत पैरी पाए जियो रामकली महला पंजवां शंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद साजनड़ा मेरा साजनड़ा निकट खलोए अड़ा मेरा साजनड़ा जानी अड़ा हर जानी अड़ा नैन अलोए अड़ा हर जानी अड़ा नैन अलोया कटकट सोया अत अमृत प्रे गूड़ा नाल होवंदा लह ना सकंदा स्वाओ न जाने मूड़ा माया मदमाता होची बाता मिलन न जाई परम तड़ा कहो नानक गुरबिन नहीं सूजै हर साजन सब कै निकट खड़ा गोबिंदा मेरे गोबिंदा प्राण आधारा मेरे गोबिंदा कृपाला मेरे कृपाला दान दा तारा मेरे कृपाला दान दा तारा प्रापारा कट कट अंतर सोहनिया एक दासी तारी सबल पसारी जी जंत लै मोहनिया जिसनो राखै सो सच पाखै गुर का शब्द

महागर्भ मुठिया जलबाज मछली तड़फड़ावे संग माया रुठिया। कर पाप जोनी पै पीत होई दे सासन जाम जियो बिनवंत नानक ओढ़ तेरी राख पूर्ण काम जियो। सलोक सरदा लागी संग प्रीत मैं एक तिल रहन ना जाए मन तन अंतर रव रहे नानक सह सुभाए। कर गैलीनी सजन जन्म जन्म के मीत चरण दासी कर लई नानक प्रभित चीत। शंत रुत बरस सुहेलिया सावन भादवे आनंद जियो कण उन्नम बुठे जल थल पूरिया मकरंद जियो। प्रभ पूर रहया सर्ब ठाई हर नाम नवनित गृह परे सिमर स्वामी अंतर जामी कुल समूहा सब तरे। प्रेरंग जागे ने शिदर लागे किरपाल सद बख्शेंद जियो बिनवंत नानक हर कंत पाया सदा मन पावंद जियो। सलोक आस प्यासी मैं फिराऊं कब पेखा गोपाल है कोई साजन संत जानो नानक प्रभ मिलनहार। बिन मिल बे सांत ना उपजै तिल पल रहन ना जाए हर साधे शरणागति नानक आस पुजाए। शंत रुत सर्द अडंबरो असू कतके हर प्याह जियो खोजंती दर्शन फिरत कब मिलिए गुणताह जियो। बिनकंत प्यारे ने सूख सारे हार कंगण त्रिग बना सुंदर सुजान चतर बेती सास बिन जैसे तना। ईत ओत दह दिस्या लोकन मन मिलन की प्रभ प्यास जियो बिनवंत नानक तार कृपा मिलो प्रभ गुणताह जियो। सलोक जलन बुझी शीतल पय मन तन उपजी सांत नानक प्रभ पूर्ण मिले दुतिया बिनसी प्रांत। साध पठाए आप हार हम तुमते नाही दूर नानक भ्रम पै मिट गए रमन राम भरपूर। शंत रुत सिसियर शीतल हर प्रगटे मंगर पोहे जियो जलन बुझी दर्श पाया बिन से माया त्रोह जियो। सब काम पूरे मिल हजूरे हर चरण सेवक सेवया हार डोर सिंगार सब रस गुण गाओ लाखा पेवया। पाओ भगत गोविंद बांशत जमना साकै जोहे जियो बिनवंत नानक प्रभ आप मेली तहना प्रेम बिश हो जियो। सलोक हर तन पाया सोहागणी डोलत नाही चीत संत संजोगी नानका गृह प्रगटे प्रभ मीत। नाद बिनोद आनंद कोड प्रे प्रीतम संग बने मन बाइथ फल पाया हर नानक नाम पने।

ओंकार शब्द उदरे ओंकार गुरमुख तरे ओ नम अखर सुनो विचार ओ नम अखर त्रिपवन सार सुन पांडे क्या लिखो जंजाला लिख राम नाम गुरमुख गोपाला रहाओ सस्य सब जग सहज उपाया तीन पवन एक ज्योति गुरमुख वस प्राप्त हो वै चुन लै मानक मोती समझै सूझै पढ़ पढ़ बूझै अंत निरंतर साचा गुरमुख देखै सास माले बिन साचे जग काचा तदै धर्म धरे धर्मापुर गुणकारी मन तीरा तदै तूल पड़ै मुख मस्तक कंचन भय मनूरा तन तरनी तरिया पाजोनी तोल बोल सच पूरा करते की मित करता जाने कह जाने गुरसूरा ज्ञान गवाया दूजा पाया गर्भ गले बिख खाया गुरस गीत बाद नहीं पावे सुनिए गहर गंभीर गवाया गुर सच कहया अमृत लहया मंतन साज सुखाया आपे गुरमुख आपे देवे आपे अमृत पी आया एको एक कहे सब कोई हम मैं गर्भ व्यापै अंतर बाहर एक पछाण इं कर महर सियापै प्रभ नेड़ै हर दूर न जान हो एको सृष्ट सवाई एक अंकार अवर नहीं दूजा नानक एक समाई इस करते कहो क्यों गह राखो अफरियो तुल्यो ना जाई माया के देवाने प्राणी झूठ गौरी पाई लब लोभ मोहताज विगूते इब तब फिर पछताई एक सिरे वै ता गत मित पावै आवन जान रहाई एक आचार रंग एक रूप पौन पानी अग्नि अस्वरूप एको पवर पवै तिहो लोए एको बूझै सूझै पत होए ज्ञान ध्यान ले समसर रह गुरमुख एक विरला कोल है जिसनो दे कृपा ते सुख पाए गुरु द्वारे आग सुनाए ऊरम तूरम जो त्यो जाला तीन पवन में गुरु गोपाला ऊग व्या असरूप दिखावै कर कृपा अपने कर आवै ऊन बरसै निजर तारा उत्तम शब्द सवारण हारा इस एके का जाने पे ओ आपे करता आपे दे उगवै सूर असर संघार है उचो देख शब्द विचार है ऊपर आद अंत तिहो लोए आपे करे कथै सुने सोए ओह विधाता मन तन दे ओह विधाता मन मुख सोए प्रभ जग जीवन अवर ना कोए नानक नाम रते पत होए राजन राम रवै हितकार रण में लूजै मनुआ मार राध अनंत रह रंग राता तीन पवन जुग चारे जाता जिन जाता सो तिसी जेहा अत निरमायल सिज सेहा रैसी राम हृदय पाए अंतर शब्द साच लिव लाए रोस ना कीजै अमृत पीजै रहन नहीं संसारे राजे राय रंक नहीं रहना।

चेतन नित नीत चिंतत ही दिशा सब कोए, चेता एक तही सुभोए चित वसै राच्य हर नाए, मुक्त भया पत स्यों कर जाए। छीजै देह खुलै एक गंड, छे अन देखो जगहंड, तू पिशाब जे सम कर जाना, बंधन काट मुक्त कर आना। छाया छूछी जगत पुलाना, लिखिया किरत तुरे परवाना, छीजै जोबन जरुआ सिरकाल, काया छीजै पही सिवाल। जापै आप प्रभु तेहो लोए, जुग जुग दाता अवर ना कोए। ज्यो पावै त्यों राखै राख, जस जाचौ देवै पत साख। जागत जागरहा तुद पावां, जा तू मेलै तां तुजै समावां। जय जयकार जपो जगदीश, गुरमत मिलिए बीसा कीस। चख बोलन क्या जग स्यों वाद, चूर मरै देखै प्रमाद। जन्म मुए नहीं जीवन आसा, आए चले पहे आस निरासा।

जिन नाम दिया तिस सेव सा तिस बलहार जाओ, जो उसारे सो ढासी तिस बिन अवर ना कोए, गुर प्रसादी तिस संभला ता तन दुख ना होए, हणा को मेरा

सो सहो नजर करे, आपे पीसे आपे कसे आपे ही लाए लए। एहो परम प्याला खसम का जै पावे तै दे पौड़ी, वेकी सृष्टि उपाइयन सब हुक्म आवै जाए समाही। आपे वेख विकसदा दूजा को नाही, जो पावे त्यों रख तू गुरशब्द बुझाही। सब ना तेरा जोर है ज्यो पावे त्वै चलाही, तुद जेवड़ मैं नाहे को किस आख सुनाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई।

पूला सब तीर्थ गहै ओहो तपा कैसे परम गत लहै। गुरप्रसादी को सच कमावै नानक सो तपा मोख अंतर पावै। महला तीजा सो तपा जे हो तप काले सतगुर नो मिलै शब्द संभाले। सतगुर की सेवा एहो तप परवान नानक सो तपा दरगै पावै मान। पौड़ी रात दिन उपायन संसार की वर्तन गुरमति कट चानना अनेर बिनासन। हुक्मे ही सब साजियन रविया सब वाण त्रिण सब किश आपे आप है गुरमुख सदा हर पाण। सब दे ही सोजी पई सच्चे आप बुझाई।

अभ्यागत है ना आखियां ना जे पर कर भोजन करे ना उदरे कारण अपने बहले पे करे ना। अभ्यागत से ही नानका जे आत्म गौण करे ना पाल लहन सौ अपना निज कर रहन करे ना। पौड़ी अंबर तरत विछोड़िया ना विच सच्चा असराओ कर दर सबो सच है जिस विच सच्चा नाओ सब सच्चा हुक्म वरतदा गुरमुख सच समाओ। सच्चा आप तख्त सच्चा बह सच्चा करे न्याओ सब सचो सच वरतदा गुरमुख लख लखाई वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला।

रैन आयर मह सब किश है, करमी पल्ले पाए, नानक नौ निद पाई है, जे चले तसैर जाए। महला तीजा, सहजे सतगुर ना सेवियो, विच होमै जन्म विनाश, रसना हरस ना चखियो, कमला होयो परगास। बिख खादी मन मुख मुआ, माया मोहे विनाश, एक सहर के नाम विण त्रिग जीवन त्रिगवास। जा आपे नदर करे प्रभ सच्चा, ता होवै दासन दास, ता अंदन सेवा करे सतगुरु की, कबै न छोड़ै पास। ज्यों जल में कमल अलिपतो वरतै, त्यों विचे ग्रह उदास। जन नानक करे कराया सबको, ज्यों पावै तिव हर गुणतास। पौड़ी छत्ती जोग वारसा, आपे गणत कीनी, आपे सिरट सब साजियानो, आप मत दीनी। सिमरत सास्त साजियानो, पाप पुन गणत गणीनी, जिस बुझाए सो बुझसी, सच्चे शब्द पतीनी। सब आपे आप वरतदा, आपे बख्स मिलाई, वाह वाह सच्चे पातशाह, तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा।

ज्यो बै संतर तात शुद्ध होए त्यों हर का पौ दुरमत मैल गवाए। नानक तेजन सोहने जो रते हर रंग लाए महला तीजा। आराम कली राम मन वसिया ता बनिया सिंगार। गुर कै शब्द कमल बिकसिया ता सौंपिया भगत भंडार। परम गया ता जागया चूका अग्ञान आधार। तिसनो रूप अत्यगला जिस हर नाल प्यार। सदा रवै पिर अपना शोभावंती नार। मन मुख सिंगार न जाननी जसन जन्म सभार। बिन हर भगती सिंगार करै नित जमे होए खुआर। संसार विच शोभ ना पाए नी अगे जे करे सो जाने करतार। नानक सच्चा एक है दोह विच है संसार। चंगे मंदे आप लाया न सो करन जे आप कराए करतार। महला तीजा बिन सतगुर सेवे सांत ना आवई दूजी नाही जाए। जे बहु तेरा लोची है बिन कर्मा पाया ना जाए। अंतर लोभ विकार है दूजे पाए खुवाए। तन जमन मरण न चुकई हम मैं विच दुख पाए। जिन्नी सतगुर स्यो चितलाया सो खाली कोई ना है। तन जम की तलब ना हो वई ना होए दुख सहाए। नानक गुरमुखी उबरे सच्चे शब्द समाहे। पौड़ी आप अलिप्त सदा रह होर तंदै सब तावै। आप नि चलिया चल है होर आवै जावै। सदा सदा हर त्याई गुरमुख सुख पावै। निज कर वासा पाई सच सिफत समावै। सच्चा गहर गंभीर है गुर शब्द बुझाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। श्लोक महला।

मनो अहन से अंतर रहते आनो ते बैरागी सत समान बोले परथर सत स्वरूप परम तंत में रेख न रूप। महला पहला। क्यों मरे मंदा क्यों जीवे जुगत कन पड़ाए क्या खाजे भुगत आस्त नास्त को नाओ कौन सो अखर जित रह आओ। धूप छाव जे सम

निरंकार जो रह समाए, काहे पीखिया मंगण जाए। पौड़ी हर मंदिर सोई आखिया, जिथों हर जाता मानस देह गुरबचनी पाया। सब आत्म राम पछाता, बाहर मूल ना खोजी है कर माहे विधाता। मन मुख हर मंदिर की सार ना जाननी, तिन्नी जन्म गवाता। सब मैं एक वर्तदा गुर शब्दी पाया जाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला तीजा, मूर्ख होवै सो सुने मूर्ख का कहना। मूर्ख के क्या लखण है क्या मूर्ख का करना। मूर्ख ओहो जे मुग्ध है अहंकारे मरना। एतक माने सदा दुख दुखी मैं रहना। अत प्यारा पवै खूहे क्यों संयम करना। गुरमुख होए सो करे विचार ओस अलिप्तो रहना। हर नाम जपै आप उदरे ओस पिछे डुबदे पी तरना। नानक जो तिस पावै सो करे जो दे सो सहना। महला पहला नानक या खैरे मना, सुनिए सिख सही। लेखा रब मंगसिया बैठा कड वही। तलबा पवसन या किया बाकी जना रही। अजराइल फरेस्ता होसी आए तई, आवन जान न सुजई। पीड़ी गली फही कूड़ ने खुट्टे नानका, ओड़क सच रही। पौड़ी हर का सब शरीर है, हर रवर या सब आपै। हर की कीमत ना पवै किश कहण ना जापै। गुर प्रसादी साला ही है हर भगती रापै। सब मंत्र हरिया होया अहंकार गवापै। सब किश हर का खेल है, गुरमुख किसे बुझाई। वाह वाह सच्चे पातशाह तू सच्ची नाई। सलोक महला पहला, सहंसर दान दे इंद्र रोवाया। परशुराम रोवै घर आया, अजय सो रोवै पीखिया खाए। ऐसी दरगह मिले सजाए, रोवै राम निकाला पया। सीता लखमण विछड़ गया, रोवै दैसर लंक गवाए। जिन सीता आंदी डौरू वाए, रोवै पांडव पए मजूर। जिनकै स्वामी रहत है दूर, रोवै जन्मे जा खोए गया। एकी कारण पापी पया, रोवै शेख मसाइक पीर। अंतकाल मत लागे पीड़, रोवै राजे कन पड़ाए। कर कर मांगे पीखिया जाए, रोवै किरपन संचय तन जाए। पंडित रोवै ज्ञान गवाए, बाली रोवै नाहे पतार। नानक दुखिया सब संसार, मन्ने नाओ सोई जन जाए। औरी कर्म ना लेखै लाए, महला दूजा। जप तप सब किश मन्ने ऐ, अवरकारा सब बाद। नानक मन्या मन्नी बुझिए गुर प्रसाद। पौड़ी काया हंस तुर मेल, करतै लिख पाया। सब मैं गुप्त वर्तदा गुरमुख प्रगटाया। गुण गावै गुण उच्चरै, गुण महे समाया। सच्ची बाणी सच है सच मेल मिलाया। सब किश आप

रामकली की वार महला पंजवां एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सलोक महला पंजवां जैसा सतगुर सुनी दा तैसो ही मैं डीठ विछड़िया मेले प्रभु हर दरगह का बसीठ। हर नामो मंत्र दरड़ाएं दा कटे हो मैं रोग नानक सतगुर तिना मिलाया जिन्ना तुरे पया संजोग। महला पंजवां एक सज्जन सब सज्जना एक वैरी सब वाद गुरपुर देखा लिया विणना मैं सब बाद। साकत दुर्जन परमया जो लगे दूजे साध जन नानक है प्रभु जिया गुर सतगुर कै प्रसाद। पौड़ी थटन हारे थाट आपे ही थटिया आपे पूरा साहो आपे ही खटिया आपे करपा सार आपे रंग रटिया कुदरत कीमना पाए अलख ब्रह्मटिया। अगम अथाह बेअंत पर प्रटिया आपे वड पात साहो आप वजी रटिया। कोई न जाने कीम केवड मटिया सच्चा साहब आप गुरमुख प्रगटिया। सलोक महला पंजवां सुन सज्जन प्रीतम मेरे आ मैं सतगुर देहो देखाल हौ तिस देवा मन अपना नित हृदय रखा समाल। एकस सतगुर बाहरा त्रिक जीवन संसार जन नानक सतगुर तिना मिलायोन जिन सद ही वरतै नाल। महला पंजवां मेरा अंतर लोचा मिलन की क्यों पावा प्रभ तो है कोई ऐसा सज्जन लोड लहो जो मिले प्रीतम मोहे। गुरपुरै मिलाया जत देखा तत सोए जन नानक सो प्रभ सेवया तिस जेवड़ियावर ना कोए। पौड़ी देवन हार दा तार कित मुख सालाही है जिस रखे कृपा तार रिजक समाही है। कोय न किस ही वस सब ना एक तार पाले बालक वांग देके आप कर करदा अनंत विनोद किशु ना जानी है। सर्व तार समरथ हौ तिस कुर्बानी है। गाइए रात दिनंत गावन जोगया जो गुर की पैरी पाहे तिन्नी हर रस भोगया। सलोक महला पंजवां भीड़ो मोकलाई कीतियान सब रखे कुटुंबै नाल कार्ज आप सवारियान सो प्रभ सदा संभाल। प्रभ मात पिता कंठ लाएंदा लहुड़े बालक पाल दयाल होए सब जी जंतर हर नानक नदर निहाल। महला पंजवां विण तुद होर जे मंगना सिर दुखा कै दुख देह नाम संतोखिया उतरै मन की भुख। गुरवण तिण हरिया कीतिया नानक क्या मनुख। पौड़ी सो ऐसा दातार मनो ना विसरै कड़ी ना मोहत चसा तिस बिन ना सरै। अंतर बाहर संग क्या को लुक करै जिस पत रखै आप सो पवजल तरै। भगत ज्ञानी तपा जिस कृपा करै सो पूरा प्रधान जिसनो बल तरै। जिसै जराए आप सोई अजर जरै तिस ही मिलिया सच मंत्र गुरमंत्र है। सलोक महला पंजवां तन सो राग सुरंगड़े आलापत सब तिख जाए तन सो जंत सुहावड़े जो गुरमुख जप दे नाम। जिन्नी एक मन एक आराध्या तिन सदबलिहारै जाओ तिन की धूड़ हम बांश दे करमी पल्ले पाए। जो रत्ते रंग गोविंद कै हौ सदबल।

व्यापया दुर्मत कबुद्ध कमूड़ा मन लागा तस्मोहा ठगै सेती ठगरा ले आया साथ पे इको जेहा। सतगुर सराफ नदरी वेख दो कड्डै ता उगड़े आया लोहा बहु तेरी थाई रलाए रलाए दिता उगड़िया पड़दा अगे आए खलोहा सतगुर की जे सरणी आवै फिर मनूरो कंचन होहा। सतगुर निर्वैर पुत्र सत्र समाने औगण कटे करे सुध देहा नानक जिस तुर मस्तक होवै लिखिया ते सतगुर नाल सनेहा अमृत बाणी सतगुर पूरे की जिस कृपाल होवै तिस हृदय वसेहा आवन जाना तिसका कटी है सदा सदा सुख होहा पौड़ी जो तुद पाणा जंत सो तुद बुझई जो तुद पाणा जंत सो दर गै सिजई जिसनो तेरी नदर हम मैं तिस गई जिसनो तू संतुष्ट कल मल तिस खई जिसकै स्वामी वल निरपौ सो पई जिसनो तू कृपाल सच्चा सो थई जिसनो तेरी मया ना पोहै अगनई तिसनो सदा दयाल जिन गुरते मत लई श्लोक महला पंजवां कर कृपा कृपाल आपे बख्श लै सदा सदा जप

कबीर तरती साध की तस्कर बैसे गाहे, तरती पार ना ब्यापई उनको लाहू लाहे। महला पंजवा कबीर चावल कारणे तुहको मोहली लाए, संग कुसंगी बैसते ता पूछे धर्म राए। पौड़ी आपे ही वड परवार आपे कातिया, अपनी कीमत आप आपे ही जातिया। सब किश आपे आपो पन्या, अपना कीता आप वरन्या। तन सो तेरा थान जिथे तू उठा, तन सो तेरे भगत जिनी सच तू डिठा। जिसनों तेरी दया सलाहे सोए तुद, जिस गुर भेटे नानक निर्मल सोई सुध। श्लोक महला पंजवा फरीदा भूम रंगावली मंज वसूला बाग, जो जन पीर जो नर पीर निवाजिया तिना अंच ना लाग। महला पंजवा फरीदा उम्र सुहावड़ी संग सुवनड़ी दे, विरले कई पाइयन जिन्ना प्यारे ने। पौड़ी जप तप संजम दया धर्म, जिस देहे सो पाए जिस बुझाए अग्नि आप सो नाम ते आए। अंतर जामी अगम पुरख एक दृष्ट दिखाए, साध संगत कै आसरै प्रभ सिउ रंग लाए। औगण काट मुखी उजला हर नाम तराए, जन मरण पौ कटे ओन फिर जो ना पाए। अंध कूप ते काढ़ियान लाड़े आप फड़ाए, नानक बख्श में लाया न रखे गल लाए। श्लोक महला पंजवा मोहब्बत जिस खुदाए दी रत्ता रंग चलूल, नानक विरले पाई है तिस जन की मना मूल। महला पंजवा अंदर विद्या सच नाए, बाहर पी सच डिठोम, नानक रव्या हब थाए वन तरण तर पवन रोम। पौड़ी आपे की तो रचन आपे ही रतिया, आपे होयो एक आपे बहु पतिया। आपे सबना मांझ आपे बहरा, आपे जाने दूर आपे ही जहरा। आपे हो वै गुप्त आपे प्रगटी है, कीमत किसे ना पाए तेरी थटी है। गहर गंभीर अथाहो अपार या गणत तू, नानक वरतै एक इको एक तू। सुध राम कली की वार राय बलवंड, तथा सतै डूम आखी एको अंकार सतगुर प्रसाद। नाव करता कादर करे क्यों बोल होवे जो खीम दे, दे गुना सत भैन भराव है पारंगत दान पड़ीम दे। नानक राज चलाया सच कोट सतानी नीम दे, लहने तरे उन छत सिर कर सिफति अमृत पीम दे। मत गुरे आत्म देव दी खड़ग जोर भरा कोई जी दे, गुर चेले रह रास की नानक सलामत थीम दे। सह टिका दे तो सजीव दे, लहने दी फेर आई है नानका दोही खटी है। जोत ओहा जुगत साए सह काया फेर पलटी है, चुल्ले सो छत निरंजनी मल तख्त बैठा गुर हटी है। करै जे गुर फुरमाया सिल जोग अलूनी चट्टी है। लंगर चले गुर शब्द हर तोटना आवी खटी है, खर्चे दे तकसम दी आप खेंदी खैर दबटी है। होवे सिफत कसम दी नूर अरसों कुरसों चट्टी है। तुद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कट्टी है। सच जे गुर फरमाया क्यों ओ एदू बोलो हटी है। पुत्री कौल ना पालियो कर पीरो कन मुरटी है, दिल खोटा या की फिरन बन पारो चाय छटी है। जिने आखी सोई करे जिन कीती तिने थटी है, कौन हारे किन वटी है। जिन कीती सो मनना को साल जे वाहे साली, धर्म राय है देवता लै गल्ला करे दलाली। सतगुरे आखे सच्चा करे सा बात होवे दरहाली, गुरे अंगद दी दोही फिरी
ਸਚ ਕਰਤਾ ਬੰਦ ਬਹਾਲੀ, ਨਾਨਕ ਕਾਇਆ ਪਲਟ ਕਰ, ਮਲ ਤਖਤ ਬੈਠਾ ਸੈ ਡਾਲੀ, ਦਰ ਸੇਵੇ ਉਮਤ ਖੜੀ, ਮਸਕੱਲੈ ਹੋਏ ਜੰਗਾਲੀ, ਦਰ ਦਰ ਵੇਸ ਸਮਦੈ, ਨਾਏ ਸੱਚੈ ਬਾਣੀ ਲਾਲੀ, ਬਲਵੰਡ ਖੀਵੀ ਨੇਕ ਜਾਨੋ, ਜਿਸ ਬਹੁਤੀ ਸ਼ਾਹ ਪਤਰਾਲੀ, ਲੰਗਰ ਦੌਲਤ ਵੰਡੀ ਐ, ਰਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੀਰ ਕੇ ਹਾਲੀ, ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ, ਮਨ ਮੁਕਤੀ ਏ ਪਰਾਲੀ, ਪਏ ਕਬੂਲ ਸਮ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਕਾਲ ਮਰਦੀ ਘਾਲੀ, ਮਾਤਾ ਖੀਵੀ ਸਹੁ ਸੋਏ, ਜਿਨ ਗੋਏ ਉਠਾਲੀ, ਹੋ ਰਿਓ ਗੰਗ ਵਹਾਈ ਐ, ਦੁਨਿਆਈ ਆਖੈ ਕੇ ਕਿਉਂ, ਨਾਨਕ ਈਸਰ ਜਗਨਾਥ, ਉੱਚ ਹੱਦੀ ਵੈਣ ਵਰੇ ਕਿਉਂ, ਮਾਧਾਣਾ ਪਰਬਤ ਕਰ ਨੇਤਰ ਬਾਸਰ, ਮਾਧਾਣਾ ਪਰਬਤ ਕਰ ਨੇਤਰ ਬਾਸਕ, ਸ਼ਬਦ ਰਿੜਕਿਓਨ, ਚੌਦਹ ਰਤਨ ਨਿਕਾਲਿਓਨ, ਕਰ ਆਵਾ ਗਾਉਣ ਚਿਲਕਿਓਨ, ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਵੇਖਾਲੀਆਨ, ਜਿਨ ਐਵਡ ਪਿੰਡ ਠਿਣਕਿਓਨ, ਲਹਿਣੇ ਧਰਿਓਨ ਛਤਰ ਸਿਰ, ਅਸਮਾਨ ਕਿਆੜਾ ਛਿਕਿਓਨ।

की किंगरी बजाई। पंच तत् लै हृदय रखो रह निराल मताड़ी, कहत कबीर सुनो रे संतो धर्म दया कर बाड़ी। कवन काज सिरजे जग पीतर, जन्म कवन फल पाया, भव निध तरन तारण चिंता मन, एक निमख नायो मन लाया। गोविंद हम ऐसे अपराधी, जिन प्रभ जीओ पिंड था दिया, जिसकी भाव भगत ने साधी रहाओ। पारतानो पारतानो पारती निंदा, पर अपवाद ना छूटे, आवागमन होत है फुन फुन, एहो प्रसंग ना टूटे। जे कर कथा होत हर संतन, एक निमख ना कीनो मैं फेरा, लंपट चोर दूत मतवारे, तिन संसदा बसेरा। काम क्रोध माया मद मत्सर, ए संपै मोह माही, दया धर्म यार गुर की सेवा, ए सुपनंतर नाही। दीन दयाल कृपाल दमोदर, भगत वछर पैहारी, कहत कबीर पीर जन राखो, हर सेवा करो तुम्हारी। जिह सिमरन होए मुक्त द्वार, जाहे बैकुंठ नहीं संसार, निरपौ कै कर बजावै तूर, अनहद बजै सदा भरपूर। ऐसा सिमरन कर मन माहे, बिन सिमरन मुक्त कत नाहे।

जे सिमरन करै तू केल, दीपक बान धरियो बिन तेल, सो दीपक अमरक संसार, काम क्रोध बेकाडी ले मार। जे सिमरन तेरी गत होए, सो सिमरन रख कंठ पर होए, सो सिमरन कर नहीं राख उतार, गुरप्रसादी उतरै पार। जेह सिमरन नाही तोहे कान, मंदर सोवै पटंबर तान। से सुखाली बिकसै जियो, सो सिमरन तू आंदन पियो। जे सिमरन तेरी जाए बलाए, जे सिमरन तुझ पोहै नाम आए। सिमर सिमर हर हर मन गाइयै, एहो सिमरन सतगुर ते पाइयै। सदा सदा सिमर दिन रात, उठत बैठत सास ग्रास। जाग सोए सिमरन रस भोग, हर सिमरन पाइयै संजोग। जे सिमरन नाही तुझ पार, सो सिमरन राम नाम आधार। कहे कबीर जाका नहीं अंत, तिसके आगे तंत न मंत। राम कली कर दूजा, बाणी कबीर जी की एक ओंकार। सतगुर प्रसाद बंद च बंधन पाया, मुक्तै गुर अनल बुझाया। जब नख सिख एहो मन चीना, तब अंतर मज्जन कीना। पवन पत ओन मनो रहन खरा, नहीं मृत ना जन्म जरा रहाओ। उल्टी ले सख्त सहारंग, पैसी ले गगन मझारंग। बेदी अले चक्र पयंगा, पेटी अले राय नसंगा। चूकी अले मोह मयासा, सस कीनो सूर गिरासा। जब कुंभक भरपुर लीना, तह बाजे अनहद बीणा। भगतै भग शब्द सुनाया, सुनतै सुन मन बसाया। कर करता उतर सपारंग, कह कबीरा सारंग। चंद सूरज दोय जो स्वरूप, ज्योति अंतर ब्रह्म अनूप। कर रे ज्ञानी ब्रह्म विचार, ज्योति अंतर तरिया पसार। रहाओ हीरा देख, हीरे करो आदेश। कह कबीर निरंजना लेख, दुनिया होशियार बेदार। जागत मुसीयत हौरे पाई, निगम होशियार पहरुआ। देखत जम ले जाई रहाओ। नीम्ब पयो आंब, आंब पयो नीम्बा। केला पाका चार, नाली एर फल से बरपाका। मूर्ख मुग्ध गवार। हर पयो खांड, रेत में बिखरियो। हस्ती चुन्यो ना जाई, कह कमीर कुल जात पात ताज। चीटी होए चुन खाई, बाणी नाम देव जियो की। राम कली कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद। आनी ले कागद, काटी ले गुडी। आकाश मदे भरमी अले, पंच जना स्यो बात बतौआ। चीत सो डोरी राखी अले, मन राम नामा बेदी अले। जैसे कनक कला चित मांडी अले। रहाओ आनी ले कुंभ, भराई ले उदक। राजकुमार पुरंदरीए, हस्त बिनोद विचार करती है। चीत सो गागर राखी अले, मंदिर एक द्वार दस जाके। गऊ चरावन छाडी अले, पांच कोस पर गऊ चरावत। चीत सो बछरा राखी अले, कहत नाम देव सुनो तिलोचन। बालक पालन पौडी अले, अंतर बाहर काज विरोधी। चीत सो बारक राखी अले, वेद पुराण शास्त्र अनंता। गीत कवत ना गावो गो, अखंड मंडल निरंकार। मैं अनहद वेद मजाओ गो, बैरागी राम गावो गो। शब्दातीता नहद राता, या कुल कहकर जाओ गो। रहाओ एड़ा पिंगला और सुख मना, पौने बंद रहाओ गो। चंद सूरज दो समकर राखो, ब्रह्म ज्योत मिल जाओ गो। तीर्थ देखना जल में पैसो, जी जंत ना सतावो गो। आठ साठ तीर्थ गुरु दिखाए, कठी पीतर नाओ गो। पंच सहाई जन की शोभा, पलो पलो ना कहावो गो। नामा कह चित हर स्यों राता, सुन समाध समाओ गो। माए ना होती बाप ना होता, कर्म ना होती काया। हम नहीं होते तुम नहीं होते, कमन कहां ते आया।
राम कोय न किसी केरा, जैसे तरवर पंख बसेरा रहाओ। चांद ना होता सूर ना होता, पानी पवन मिलाया। शास्त्र ना होता वेद ना होता, कर्म कहां ते आया। खेचर पूचर तुलसी माला, गुर प्रसादी पाया। नामा प्रणवै परम तत है, सतगुरु होए लिखाया। राम कली कर दूजा, बनारसी तप करै। उल्ट तीर्थ मरै, अग्न दह काया कल्प की जय। असमेध जग की जय, सोना गर्भ दान दी जय। राम नाम सर तऊ न पूजै, छोड़ छोड़ रे पाखंडी। मन कपट ना की जय, हर का नाम नित नित ली जय। रहाओ गंगा जौ गोदावर जाइए, कुंभ जौ केदार नाइए। गोमती सहस गौ दान की जय। कोट जौ तीर्थ करै, तन जौ हिवाले गारै। राम नाम सर तऊ न पूजै, अस दान गज दान। सहजा नारी भूम दान, ऐसो दान नित नित की जय। आत्म जाओ।

निर्मल निर्वाण पद चीन लीजै। जथ रथ राय नंद राजा मेरा राम चंद, प्रणवै नामा तत रस अमृत पीजै। राम कली बाणी रविदास जी की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पढ़िए गुनिए नाम सब सुनिए, अनपौ पाओ न दर्शै। लोहा कंचन हिरन होए कैसे, जौ पारसै नाम परसै। देव संसय गांठ ना छूटे, काम क्रोध माया मद मत्सर, इन पंचों मिल लूटे रहाओ। हम बड कब कुलीन हम पंडित, हम जोगी सन्यासी, ज्ञानी गुनी सूर हम दाते। एह बुद्ध कबै ना नासी, कहो रविदास समय सबै नहीं समझस। भूल परे जैसे बौरे, मोहे आधार नाम नारायण, जीवन प्राण तन मोरे। राम कली बाणी बेणी जियो की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। एड़ा पिंगला और सुख मना, तीन बसै कठाई, बेणी संगम तह पिराग, मन मज्जन करे तिथाई। संतो तहां निरंजन राम है, गुरगम चीने बिरला कोए, तहां निरंजन रमैया होए रहाओ। देव स्थाने क्या निशानी, तह बाजे सबदा नाहद बाणी, तह चंदना सूरज पौन ना पानी, साखी जागी गुरमुख जानी। उपजै ज्ञान दुरमत शीजै, अमृत रस गगन अंतर पीजै। एस कला जो जाने पेओ, पेटे तास परम गुरदेओ। दसम द्वारा अगम अपारा, परम पुरख की घाटी, ऊपर हाट हाट पर आला, आले पीतर थाती। जागत रहै सो कवो ना सोवै, तीन तलोक समाध पलोवै। बीज मंत्र लै हृदय रहै, मनुआ उल्ट सुन महंग है। जागत रहै ना यलिया भाखै, पांचो इंद्री बस कर राखै। गुर की साखी राखै चीत, मन तन अर्पै कृष्ण प्रीत। कर पल्लव साखा बिचारे, अपना जन्म ना जुवै हारे। असर नदी का बंदै मूल, पच्छम फेर चढ़ावै सूर। अजर जरै सो निजर चरै, जगंग नास्यो गोष्ट करै। चौमुख दीवा जो द्वार, पलुवंत मूल बिचकार। सर्व कलाले आपे रहै, मन मान करत नामै गुहै। मस्तक पद्म द्वालै मणि, माहे निरंजन त्रिपवन धनी। पंचे शब्द निर्मायल बाजे, टुलके चवर संख कान गाजे। दल मल दैतो गुरमुख ज्ञान, बेणी जाचै तेरा नाम। राग नट नारायण।

मेरे मानो जप अहनस नाम हरे, कोट कोट दोख भव कीने, सब पर हर पास धरे रहाओ। हर हर नाम जप आराध्य सेवक पाए खरे, किल विख दोख गए सब निकर, ज्यो पानी मैल हरे। खिन खिन नर नारायण गावे, मुख बोले नर नर हरे। पंच दोख या साध नगर में, एक खिन पल दूर करे। वडभागी हर नाम ते आवे, हर के भगत हरे। तिनकी संगत देह प्रभ जाचौ, मैं मूड मुग्ध निस्तरे। कृपा कृपा धार जग जीवन, रख ले वो शरण परे। नानक जन तुमरी शरण आई, हर राखो लाज हरे। नट महला चौथा, राम जप जन रामे नाम रले। राम नाम जपयो गुर बचनी, हर तारी हर कृपले रहाओ। हर हर अगमया गोचर स्वामी, जन जप मिलो सलल सलले। हर के संत मिल राम रस पाया, हम जन के बल बलले। परखोत्म हर नाम जन गायो, सब दालद दुख दलले। विच देही दोख असाध पंच तातु, हर किए खिन परले। हर के संत मन प्रीत लगाई, जो देखे सस कमले। उनवे कान कान कान हर गरजे, मन बिकसे मोर मुरले। हमरे स्वामी लोच हम लाई, हम जीवे देख हर मिले। जन नानक हर अमल हर लाए, हर मेलो अंद भले। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम सखे। गुर प्रसादी हर नाम ते आयो, हम सतगुर चरण पखे रहाओ। उत्तम जगन्नाथ जगदीशरो, हम पापी शरण रखे। तुम वड पुरख दीन दुख भंजनो, हर दियो नाम मुखे। हर गुनी ऊच नीच हम गाए, गुर सतगुर संग सखे। जो चंदन संग बसे निम बिरखा, गुण चंदन के बसखे। हमरे अवगन बिखिया बिखे के, बहु बार बार निमखे। अवगन आरे पाथर पारे, हर तारे संग जनखे। जिनको तुम्हार रखो स्वामी, सब तिनके पाप क्रिखे। जन नानक के दयाल प्रभ स्वामी, तुम दुष्ट तारे हरणखे। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर राम रंगे। हर हर कृपा करी जगदीशर, हर त्यायो जन पग लगे रहाओ। जन्म जन्म के पूल चूक, हम अब आए प्रभ शरणगे। तुम शरणागत प्रतपालक स्वामी, हम राखो वड पापगे। तुमरी संगत हर को ना उधरियो, प्रभ किए पतत पवगे। गुण गावत शीपा दुष्टारियो, प्रभ राखी पैज जनगे। जो तुमरे गुण गावे स्वामी, हाँ बल बल बल तिनगे। पवन पवन पवित्र सब किए, जह तूर परी जन पगे। तुमरे गुण प्रभ कह ना सके हम, तुम वड वड पुरख वडगे। जन नानक कहो दया प्रभ धारो, हम सेवै तुम जन पगे। नट महला चौथा, मेरे मन जप हर हर नाम मने। जगन्नाथ कृपा प्रभ धारी, मत गुरमत नाम बने रहाओ। हर जन हर जस हर हर गायो, उपदेश गुरु गुर सुने। किलबिख नाम किलबिख पाप नाम हर काटे, जब खेत किरसान लुने। तुमरी उपमा तुम ही प्रभ जानो, हम कह ना सके हर गुने। जैसे तुम तैसे प्रभ तुम ही, गुण जानो प्रभ अपने। माया फास बंद बहु बंदे, हर जप्यो खुल खुलने। ज्यो जल कुंचर तंदुए बंदियो, हर चेत्यो मोख मुखने। स्वामी पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम खोजो जुग जुगने। तुमरी था पाई नहीं पावे, जन नानक के प्रभ वडने। नट महला चौथा, मेरे मानो कल कीर्त हर प्रवणे। हर हर दयाल दया प्रभ धारी, लग सतगुर हर जपने रहाओ। हर तुम वड अगम गोचर स्वामी, सब त्यावै हर रुणने। जिनको तुमरे वड कटाख है, ते गुरमुख हर सिमरने।
ਇਹੋ ਪਰਪੰਚ ਕੀਆ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਸਭ ਜਗ ਜੀਵਨ ਜੁਗਣੇ ਜਿਉ ਸਲ ਲੈ ਸਲ ਉਠੈ ਬਉ ਲਹਿਰੀ ਮਿਲ ਸਲ ਲੈ ਸਲ ਸਮਣੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੀਆ ਸੋ ਤੁਮਹੀ ਜਾਨੋ ਹਮ ਨੈ ਜਾਹੀ ਹਰ ਗਹਿਣੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਕੌਰ ਦੇ ਉਸਤ ਧਾਰੋ ਹਮ ਕਰੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਿਮਰਣੇ ਤੁਮ ਜਲ ਨਿਧਾਰ ਮਾਨ ਸਰੋਵਰ ਜੋ ਸੇਵੈ ਸਭ ਫਲਣੇ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਬਾਂਛੈ ਹਰ ਦੇਵੋ ਕਰ ਕਿਰਪਣੇ ਨਟ ਨਾਰਾਇਣ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਪੜਤਾਲ ਏਕੋ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮੇਰੇ ਮਨ ਸੇਵ ਸਫਲ ਹਰ ਕਾਲ ਲੇ ਗੁਰਪਗਰੇ ਨਰਵਾਲ ਸਭ ਦਾਲਦ ਪਾਈ ਦੁਖ ਦਾਲ ਹਰ ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਰਹਾਉ ਹਰ ਕਾ ਗ੍ਰਹਿਓ ਰਿਆਪ ਸਵਾਰਿਓ ਹਰ ਰੰਗ ਰੰਗ ਮਹਿਲ ਬੇਅੰਤ ਲਾਲ ਲਾਲ ਹਰ ਲਾਲ ਹਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਆਪ ਗ੍ਰਹਿ ਆਇਓ ਹਮ ਹਰ ਕੀ ਗੁਰ ਕੀ ਹੈ ਬਸੀਠੀ ਹਮ ਹਰ ਦੇਖੇ ਭਈ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਹਰ ਆਵਤੇ ਕੀ ਖਬਰ ਗੁਰ ਪਾਈ ਮਨ ਤਨ ਆਨੰਦੋ ਆਨੰਦ ਭਏ ਹਰ ਆਵਤੇ ਸੁਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਲ ਹਰ ਲਾਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲੇ ਭਏ ਗਲਤਾਨ ਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਿਹਾਲ ਨਟ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਮਨ ਮੇਰਾ ਸੰਤ ਸੰਗਤ ਸੁਭਵੰਤੀ ਸੁਨੈ ਕਥ ਕਥਾ ਸੁਖਵੰਤੀ ਸਭ ਕਿਲਵਿਖ ਪਾਪ ਲਹੰਤੀ ਹਰ ਹੋ ਹੋ ਹੋ ਲਿਖਤ ਲਿਖੰਤੀ ਰਹਾਉ ਹਰ ਕੀਰਤ ਕਲਯੁਗ ਵਿੱਚ ਯੂਤਮ ਮਤ ਗੁਰਮਤ ਕਥਾ ਭਜੰਤੀ ਜਿਨ ਜਨ ਸੁਣੀ